अगनशोरी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:37 और 11 सेकंड और एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी में। भोर सुहानी की वो खूबसूरत महफिल है जिसमें बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं और जिंदगी की बातों के साथ। दोस्तों कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव हमेशा होता रहता है और ये यूं ही होता रहेगा। इसी तरीके से इस रंग बदलती दुनिया में लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है और कभी कभी हालात भी हमारे खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलनी चाहिए, वो है हमारे दिल की अच्छाई, हमारा भरोसा और आगे बढ़ने का हौसला, ये हमेशा कायम रहना चाहिए। जिंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है, कभी सपनों की अहमियत, कभी अपनों की अहमियत, तो कभी खुद को संभालने का हुनर। अगर दुनिया बदल रही है तो हम भी सीखें टूटना नहीं बल्कि और मजबूत होना। यकीन माने हर बदलता मौसम अपने साथ नई शुरुआत लेकर आता है, बस जरूरत है दिल में उम्मीद बनाए रखने की, क्योंकि इस बदलती दुनिया में जो मुस्कुराना नहीं छोड़ते उनके लिए रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

जिंदगी हमारी बेहद खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है और जिंदगी में मुस्कुराते रहना चाहिए। और जिंदगी में मुस्कुराने के लिए कोई बहुत बड़ी खुशी जरूरी नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चीजों के जरिए भी आप जिंदगी को खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ बनाकर आगे बढ़ सकते हैं और जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। कहते हैं जिंदगी हर किसी को आसान रास्ते नहीं देती, कभी हंसी के पीछे दर्द होता है तो कभी खामोशी के पीछे हजार बातें। लेकिन असली ताकत शायद यही है कि हालात कैसे भी हों, चेहरे की मुस्कान कम ना होनी चाहिए। लोग क्या कहते हैं ये हमेशा मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हम अपने दिल को कितना मजबूत रखते हैं। जिंदगी एक रंगमंच की तरह है जहां हर दिन एक नया किरदार निभाना पड़ता है, लेकिन सबसे खूबसूरत किरदार वही है जो मुश्किलों में भी उम्मीद को जिंदा रखे। अगर कभी दुनिया समझ ना पाए तो भी खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा अपनी एक अनकही कहानी लेकर चलता है और शायद खुश रहना ही जिंदगी को सबसे खूबसूरती से जीने का तरीका है। और इसीलिए भले ही इंसान आपके बारे में कुछ भी कहे, कैसा भी आप पर तंज करे, लेकिन उन सब के पीछे आपकी अपनी एक ताकत होनी चाहिए जो हमेशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। और जब आप मुस्कुराएंगे तब भी आपके आस पड़ोस में भी लोग मुस्कुराते रहेंगे।

कहता है जोकर सारा जमाना। फिल्म मेरा नाम जोकर का ये नगमा था मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। और इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत भोर सुहानी से। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आप कहीं भी मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि 6:10 पर सुनीता रहेंगी आपके साथ लेकर अर्पण। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वंदे मातरम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि तदनुसार 23 मई 2026 सुबह के 5:53 और 46 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:57 और 36 सेकंड। आइए अब हम आपको ये बताते हुए आगे बढ़ें कि आज की सभा में आप कौन कौन से कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण, जिसे लेकर हाजिर रहेंगे आपके बीच सुनीता चौहान। और 6:44 पर आप सुनेंगे श्री राम चरित मानस गान, जिसमें आज आप सुनेंगे बाल कांड भाग 69। और इसके लेकर आपके साथ रहेंगी सुनीता एक बार फिर से। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार, और 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात, जिसे आपके लिए लेकर रहेंगे आपके बीच सुनीता चौहान। 7:30 का वक्त होगा आज सवेरे कार्यक्रम का, और 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे न्यूज इन इंग्लिश मॉर्निंग न्यूज, और 8:30 पर उर्दू में समाचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न

0: पक्षों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. The newly recruited

100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड, 6:11 और 57 सेकंड। ये समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। मैं हूँ सुनीता, नमस्कार

दलाई लामा कहते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान न पहुंचाएं।

आदाब समीन, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268 मीटर यानी 1116 किलो हर्ट्ज के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन आज शनिवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ महीने की 2 तारीख मुताबिक 23 मई 2026 ईस्वी। सुबह के 6:33 हुए हैं। आज की नशरियात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: इस आकाशवाणी श्रीनगर मिडवे वाला वो एफएम 71.5 मेगाहर्ट्ज़ पे समय पेश खिदमत प्रोग्राम शुरू का है।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम जो पेश सुबुगाही प्रोग्राम का आगाज करो हस्बे मामूल तिलावत कलाम पाक तमाम के तर्जुमे से।
2: औज़ु

0: समय न्यूज सुबुगाही यह आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत खबरों का बुलेटिन नाश होगा।
1: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढ़ीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अंतमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्रसंघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानाम् आतंकवादिनाम् आतंकिसंघटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषद् प्रतिबंध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकिसंघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं,

0: पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकातानगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्री रूबियो राष्ट्रिय राजधान्यां विदेश मन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे पूर्वीय उत्तर प्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। अद्य दिल्ली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्यां आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्रप्रदेशे तेलंगानायां पश्चिम मध्य प्रदेशे पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्यां अधिकतमं तापमानं 45°C यावत् न्यूनतम तापमानं 27°C यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडावार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया।

0: दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुन लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued after talks between the two leaders in New Delhi yesterday, both sides urged strong and coordinated action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist organizations, including those listed under the 1267 UN Security Council Sanctions Committee. As maritime nations with deep-rooted naval traditions, India and Cyprus also agreed to expand cooperation in the maritime domain. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a 4-day visit to India.

0: हुआ, कहाँ से लाया?
1: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
0: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
1: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो। पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
0: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
1: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में। 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
2: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
3: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल की जानिब से तालीमी साल 2026-2027 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले का ऐलान किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बराए पोस्ट ग्रेजुएशन 2026 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोग्रामों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि दाखिले के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। मजीद तफसीलात के लिए www.cukashmir.ac.in पर जाएं या दफ्तरी औकात में 9469847277 पर राबिता कायम करें।

0: गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, पयाम सुबह लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है कि आज की सुबह की ये ठंडी ठंडी हवा, परिंदों की चहचहाट और फिजा की ये ताजगी आपके दिलो दिमाग को एक नई तवानाई अता कर रही होगी। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और मेरे साथ हैं आज जहूर अहमद
1: जी। मेरी तरफ से भी पुरखलूस सलाम कबूल फरमाइए। वाकई सुबह का ये हुस्न वक्त इंसान को जिंदगी के करीब लाता है, जब फजा की एक खामोश सी ताजगी होती है और हवा की नरम चौकी जैसे ये पैगाम देती है कि हर नया दिन अपने साथ उम्मीदें लेकर आता है।
0: बिल्कुल जहूर, और हर सनीचर की तरह आज भी हम बात करेंगे अवामी मसाइल पर, वो मसाइल जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े हैं और जिनके बारे में शऊर और आगही हम सब के लिए बेहद जरूरी है।
1: जी हाँ, इसके अलावा आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग आलमी मसले पर और इसके असरात जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी को मुतासिर कर रहा है,
0: और साथ ही बात होगी ट्रैफिक कवानीन की कि कैसे थोड़ी सी एहतियात और जिम्मेदारी हमारी और दूसरों की जिंदगी को महफूज बना सकती है, क्योंकि लाहौर एक महजब माशरा नज्म जब से ही पहचाना जाता है।
1: और आज हम एक वली कामिल की हयात और इनकी तालीमात का भी जिक्र करेंगे जिन्होंने मोहब्बत, इंसानियत और रूहानियत का पैगाम आम किया है। साथ ही तारीख के आईने में भी झांकेंगे और जानेंगे कि आज के दिन माजी के अवराग में क्या अहमियत रखता है।
0: और जहूर आपको भी पता होगा और हमारे सुनने वालों को भी पता होगा कि आज द इंटरनेशनल डे टू एंड द ओबेसिटी फिस्टुला है। इस हवाले से एक डॉक्टर साहबा के साथ मुख्तसर गुफ्तगू होगी, ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे सुनने वालों के लिए। तो इस खूबसूरत सुबह को अच्छी बातों, मजबूत सोच और दिलकश नगमों के साथ अपने नाम करते हैं, क्या ख्याल है आपका?
1: जी, हम सुबह की ताजगी भी है और हवा की लताफत भी, तो आइए सुनते हैं।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजमा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशिद सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियां
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी के जरिए।

0: प्रोग्राम है पयाम सुबह, जिसे आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 KHz और FM 103.5 MHz पर। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी, मेरे साथ हैं जहूर अहमद। और आपको बता दें कि हमारे कंट्रोल रूम में हमारे इंजीनियर साहिबान हैं अल्ताफ अहमद शाह, शफीक अहमद मीर, और हमारे मुआविन हैं अब्दुल क्यूम और मोहम्मद अमीन। इस पूरे ट्रांसमिशन की निगरानी फरमा रही हैं हमारी ऑफिसर, हमारी इसकी निगरान समीना शाह साहिबा। तो जहूर अश पन बोजन वाले कोरमुत वादे से इस करो कैंसन खास टॉपिक पेट चूंकि जन सोन थीम आज आसान यह आसान अवामी मसलन मुतलिक। तो अवामी मसल ये सारी खुद बोर्ड तो संगीन मसल वन दरपेश सह ग्लोबल
1: वार्मिंग।
0: तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ये जमीन दर्जा मुसलसल मुसलसल मुसलसल बढ़ान तो यह पूरे दुनिया खतर
1: खतरा साबित।
0: तो पत् क्या ग ये ये साथ इस वना ग्लोबल वार्मिंग से बढ़े ये आजकल वुछान
1: अहन अम सी ज्यादा बोर्ड चीज मौसमी तब्दीली सो कंटिन्यूसली रोजान
0: गराबर
1: अगर रूद पे तो पे गुतलिस टाइम या पे गुतुल
0: सही
1: शीन पे तो पे गुतुल अगर ने पे तो पे खास टाइम शीन झाड़ान आसान पेवान क्या तथा टाइम पे नीन पेर मे वो वंदस पे कंटिन्यूसली ड्राई कंडीशन दोन त्रेन रेतन ड्राई
0: बिल्कुल बेचान यह सही है। अगर मौसम बहारुक आता मे गर्मी बढ़ान
1: अहन
0: अगर रेत काल मौसम आता मे एब्रप्टली तर वो तो त्रेन दिन गर्म आज वो सुबह ये बहुत ट्रांसमिशन ड्यूटी करने खुद ओबर हालांकि निक रूद फिर पे तर लज मे दोपे क्या बेड जैकेट लगे
1: इथे पे सर अगर वो ये शीन मसल ज्यादा पे रशियास मे वह ज्यादा शीन
0: बिल्कुल सही
1: या डोट सान इलाक वुछान तम सित पे डोट पे पत्म हतस वत दोन हत वो
0: अल्लाह
1: सारी असरा ग्लोबल वार्मिंग
0: बिल्कुल। तो तुझे इस मुख्तलिफ जंगलात नार लगान
1: अहन
0: हॉलीवुडस
1: मीतिस कल तूत नार लोग तीस कल पे गो ना कंट्रोल तमन सारी असरा आसान ग्लोबल वार्मिंग या सहलाब
0: कंटिन्यूसली
1: तम सहलाब तम इलाक सहलाब आज तान गुमत
0: मुसलसल सुनामी
1: रोजान अहन कंटिन्यूसली
0: अगर अब हम सामीन इसकी वजूहत ढूंढने की कोशिश करेंगे तो माहरीन पता है क्या कहते हैं? माहरीन कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह फिजा में नुकसानदेह गैसों का बढ़ना है। ये जो गैसेस बढ़ती हैं
1: कार्बन डाइऑक्साइड
0: जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों से निकलने वाली गैसें, जंगलात की कटाई जो हम करते हैं ना बहुत ज्यादा और ईंधन का ज्यादा इस्तेमाल इस मसले को बढ़ा रहे हैं। यही वजह जे वनस प्रेस गरस मे यही कोशिश करान हुकूमत कोशिश करान ज्यादा को ज्यादा ईंधन काम करें तो तुम वो जन आफ्ताब लाइट सो
1: इस्तेमाल कर
0: सोलर
1: तवे अत पे ये ध्यान दिन कि करो सोलर एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेन अस पत् वन ग्लेशियर्स तम हेन वन वार कम गो तम सो सतह समंदर सो हेन बढ़ने कन कन जाए गई समंदर आब वह ज्यादा कम यम जन जानवर तथा रोजान तम खुद गई जिंदगी गुजारन सठा मुश्किल यानि कि प्रेथ अंद इंसान ये मुश्किल यम सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग सहरहाल तो वह कथ तम जन बड़ जरूरी अजक प्रोग्राम मप करो अ मरमोन कलम पेश वहाब खार सबन तो अत बस मुतलिक वन बी कह बम जन भजन लाल सोपू रिजन पंडित भजन लाल सोपू रिजन बन तम आई स्टूडियो नबर ऑडिटोरियम मज रिकॉर्ड कर तिहुन अक अलग इफेक्ट अक तिहुन अक असल तासुर अक तम सात ऐसन सिंथेसाइजर ज्यादा इस्तेमाल करान के कशरिस गजलस मज या लाइट म्यूजिकस
1: मज
0: यूस बोत बुझियो अत मज बुझियो तुम सिंथेसाइजर अक इफेक्ट अक जबरदस्त तो मे पूर उम्मीद ये बोत बुझित यह सुषमा दत्ता तो उषा खर्जी गोमुत वहाब खर सबन कलम पंडित भजन सोपू रिजन अमी तर्ज बनोत बेहतरीन तर्ज मे पूर उम्मीद तुम पसंद तो सान बोजन
1: करो सर पेश

0: मेनी अदर केसेस लाइक गायनोकोलॉजिकल रीजन जो
1: जी
0: अलग
1: जी
0: होते
1: जी
0: हैं
1: जी जी जी
0: दैट एट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द फिस्टुला।
1: बचाव के लिए हामिला खवातीन को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
0: हाँ, नंबर वन यही है, आपको हॉस्पिटलाइज्ड डिलीवरीज करनी, यानी हमारी
1: ओके
0: डिलीवरी शुड बी 100% हॉस्पिटलाइज्ड। ठीक
1: ओके
0: है।
1: ओके
0: नंबर सेकेंड, जो हम पार्टोग्राफ इंट्रोड्यूस किया है हमने, जो हमें मॉनिटर करता है कि यानी पार्टोग्राफ पे क्या होता है, दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम लगाते हैं कि लेबर कहाँ कब स्टार्ट हुआ, कहाँ तक चलना है, कब हमें एक्शन लेनी है, कब हमें
1: सही।
0: अलर्ट रहना है,
1: हाँ
0: एंड अलर्ट लाइन क्रॉस होगी तो कब वी हैव टू टेक द एक्शन। एक्शन कैन
1: बिल्कुल
0: बी इन द फॉर्म ऑफ सिजेरियन सेक्शन अगर डिलीवर नहीं हो रही है,
1: सही सही, वो तो
0: नंबर
1: डॉक्टर
0: वन।
1: साहब ही कह सकती है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर। नंबर सेकेंड, और क्या होता है जब हमारी ओबेसिटी लेबर में चली जाती है, देन वी कैन हैव एंटीबायोटिक्स, देन वी डू हैव कैथेटर इन
1: हाँ
0: प्लेस हम रखते हैं ताकि वी गिव रेस्ट टू द ब्लैडर। तो अगर ब्लैडर में कोई डैमेज हो चुका होता है इन दैट केसेस, तो वो वी कैन हैव कैथेटर फॉर 7 days, 14 days एज पर नीड जो हमको लगे, तो उसे रेस्ट मिलता है ब्लैडर को और वो हील हो जाता है। अगर छोटा मोटा फिस्टूला होगा तो वो हील हो जाता है।
1: सही बात।
0: तो अनफॉर्चुनेट थिंग इस चीज के लिए क्या है, फिस्टूला के वंस इट इज डन, या तो इमिजिएटली रेपियर हो या रेपियर का पता नहीं चलता, देन वी हैव टू वेट फॉर 3 months,
1: ओके
0: यानी वो 3 months कयामत के होते हैं पेशेंट पे
1: ओके
0: बेचारी
1: ओके
0: को।
1: इंतजार करना पड़ेगा उसको।
0: हाँ,
1: जी
0: थ्रू आउट दैट पीरियड उसको क्या होता है, कॉन्स्टेंट यूरिन लीकेज होता है, यूजुअली वो एक इश्यू बन जाता है उनको। बट
1: अच्छा, मुकम्मल
0: अदरवाइज
1: इलाज मुमकिन है इसका क्या?
0: हाँ, सर्जिकल ट्रीटमेंट इज देयर, 80-90% सक्सेस रेट है उसमें। हाँ, इसमें यही है कि वी हैव टू वेट फॉर 3 months, यानी आपको पूरा क्या होता है कि जब फिस्टुला हो चुका था, जो एडिमा होता है, जो इन्फेक्शन होता है, वो सबसाइड होना चाहिए ताकि जब हम रेपियर करें उस टाइम इट्स नॉट गिव वे। दैट इज
1: जी
0: वाई इसमें 3 months का पीरियड रखा जाता है टू रेपियर दिस फिस्टुला। हाँ, ग्राफ्ट होते हैं, सर्जरीज होती है, बाय दिस वी कैन रेपियर इट।
1: तो डॉक्टर साहब, चूंकि आज इसका आलमी दिन है, इस
0: जी
1: बीमारी के खात्मे के लिए हुकूमत और तिबी इदारे क्या इकदाम कर रहे हैं और आज के दिन की कितनी अहमियत है?
0: आज के दिन से मैं आपको यही कहूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि यानी वी हैव टू ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स अवेलेबल एट द पेरिफेरीज, एट द पीएचसीज,
1: ओके
0: इजंट इट,
1: यस यस
0: ताकि ये
1: यस
0: चीज ना हो। यानी आई कैन सी दिस इज क्रिमिनल इन दिस एरा कि वी हैव फिस्टुला बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या
1: ओके
0: बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ये वाली सिचुएशन होनी ही नहीं चाहिए।
1: राइट राइट राइट
0: ठीक है, बट स्टिल वी हैव सो मेनी, यानी कुछ इलाके वैसे हैं जहां से हमें वी डू रिसीव पेशेंट्स। मैंने कहा ना पहले बहुत होता था, यानी मैं पीजी में देखती हूँ वी यूज्ड टू रिसीव अ लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, लेकिन अब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हुई है। बट स्टिल पेरिफेरीज पे लाइक आपको बानीहाल से ऊपर जो पेशेंट्स आते हैं या हिली एरिया से जो आते हैं, तो वो फुल फ्लेज्ड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में होते हैं या होम डिलीवरी जहाँ पे कुछ ट्राइब्स में अभी भी कॉन्सेप्ट है कि होम डिलीवरी जहाँ पे होती है। डेफिनेटली एक तो अवेयरनेस की जरूरत है, हॉस्पिटलाइज डिलीवरीज की जरूरत है, एंड वही है कि पार्टोग्राफ या टाइम पे पिक होना चाहिए ये चीज,
1: बिल्कुल
0: दैट इज
1: सही।
0: वेरी इंपॉर्टेंट।
1: तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ बात की, आप कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया
0: थैंक,
1: आपका।
0: आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी
1: अपने
0: मच।
1: तमाम सुनने वालों को ये बता दें कि आपके साथ बात कर रही थी डॉक्टर तंजीला नजीर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गायनी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।
0: अस्सलाम वालेकुम सर।

0: जी हाँ सामिन, आप सुन रहे हैं लाइव नशरियात पैम सुबह आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: तो जहूर से ऊपर हसन वन दोन अठ बजने तो वक्त चु ख्याल पे थोन खबरन हुंद वक्त हेतन वाजुन ब्रोज खंड गई बोजो अशर खबरन हुंद बुलेटिन।

रात 9:30 बजे प्रोग्राम पेश होगा पेशरफ्त। मेहमान है एंटरप्रेन्योर अबान हबीब मलिक। प्रोग्राम का मौजू है ड्रोन डेवलपमेंट इन कश्मीर। मेजबान हैं सलीम कलो। शब 10 बजे कश्मीरी नगमों का फरमाइशी प्रोग्राम पेश होगा तुहंस फरमाइश। मेजबान रशीद निजामी और परवीन अली। स्पॉन्सर प्रोग्राम सेहत बदन ब्रॉडकास्ट होगा 8:45 पर। मकामी अखबारात की सुर्खियां पेश होंगी 9:00 बजे। शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश न्यूज रील समाप्त करें 9:30 बजे। तहरीर शबीर अहमद रातर, रावी बसारत कुल।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में

0: नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के साथ

0: शारीरिक जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
3: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्य दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
4: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका N. राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण

0: से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विशा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विशा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अपने तमाम सुनने वालों को बता दें कि आप इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं पयामे सुबह आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और मेरे साथ हैं जहूर अहमद। तो जहूर, आइए अब तारीख के आईने में झांकने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन की क्या अहमियत है तारीख के हवाले से।
3: जी, 23 मई 1934 को अमेरिका के मशहूर डाकू बोनी पार्कर और क्लैड चेस्टनट को एक खसूसी पुलिस ऑपरेशन में मार दिया गया।
2: और जहूर, इनकी कहानी को बाद में कई फिल्मों और कई किताबों के लिए इस्तेमाल किया।
3: 23 मई 1995 को दुनिया के मशहूर प्रोग्रामिंग जबान जावा को पहली मरतबा मुतारिफ किया गया।
2: जी,
3: जिसने कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में इनकलाब बरपा किया।
2: बिल्कुल। और 23 मई को यानी आज के दिन को वर्ल्ड टर्टल डे के तौर पर भी मनाया जाता है। आज के दिन टर्टल के तहफ्फुज़ की बात होती है और आगाही दी जाती है कि टर्टल को कैसे महफूज रखा जाए।
3: जी, 1947 को इसी दिन ब्रिटिश कैबिनेट ने इंडियन पार्टीशन यानी इंडिया और पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास किया है।
2: बिल्कुल, ये थे कुछ वाकयात जो आज के दिन रोनुमा हुए हैं। और अब कुछ ऐसी शख्सियत का जिक्र जो आज के दिन पैदा हुए हैं।
3: जी, इसमें रियान कॉगनर अमेरिका के मशहूर फिल्म साज है। 23 मई को ऑकलैंड कैलिफोर्निया में 1986 में पैदा हुए हैं।
2: बिल्कुल। और जब हम रियान कॉगनर की बात करते हैं, इन्होंने सिनर्स, फ्रूटवेल स्टेशन, ब्लैक पार्टनर, ग्रीड और रॉन्ग

0: डांसर जैसी फिल्मों की डायरेक्शन दी है।
1: जी, इधर ब्रिटिश कॉमेडियन रिचर्ड अयॉर्ड, एक्टर, डायरेक्टर और राइटर, 23 मई 1977 को लंदन में पैदा हुए हैं
0: जी। और इन्होंने सबमरीन, द डबल, आर्टिक मॉन्कीज एट अपोलो जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं।
1: अपने मुल्क की बात करें तो राज गायत्री देवी जयपुर की महारानी 23 मई 1919 को लंदन में पैदा हुई है।
0: जी जी जी, आप जयपुर की साबिक महारानी और एक मशहूर भारतीय सियासतदान थीं। आप अपनी दिलकश खूबसूरती, फैशन की हिस और ख्वातीन की फलाह बहबूद के लिए की गई खिदमात की वजह से आलमी सतह पर जानी जाती हैं।
1: जी रशीद, भारत की मारूफ अदाकारा सुगंधा मिश्रा 23 मई 1988 को जालंधर, पंजाब में पैदा हुई है।
0: बिल्कुल, ये मारूफ भारतीय अदाकारा हैं, गुलकारा हैं, टीवी प्रेजेंटर हैं, कॉमेडियन हैं। हाँ। इनको आपने द कपिल शर्मा शो में मुख्तलिफ किरदारों में देखा होगा।
1: देखा हुआ।
0: तो जहूर साहब, यहाँ पे हम रुकते हैं और मूसीकी का मजा लेते हैं, मूसीकी का आनंद लेते हैं, उसके बाद उन शख्सियात का जिक्र जो आज के दिन वफात पा गई। पहले आप सबके लिए ये नगमा।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरोना में तकसीम करेंगे। आरबीआई ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की इजाफी रिकॉर्ड रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाजत दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले 4 रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक्वामे मुत्तहिदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले के तहत आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में 9 तकर्रशुदा 51,000 से ज्यादा नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकर्रनामे तकसीम करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रोजगार मेला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को दी जा रही तरजीह की अक्कासी करता है और इस विजन को हकीकत में बदल रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: रोजगार मेला वजीर आजम मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को तरजीह देने की जानिब एक अहम कदम है जो नौजवानों को बामाना मौके फराहम करने और मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा कर रहा है।

0: यह फैसला आरबीआई के डायरेक्टर्स के मरकजी बोर्ड की 623वीं मीटिंग में लिया गया, जिसकी सदारत कल मुंबई में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि उसने मजमुई आमदनी में पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी 2025-26 के दौरान 26.42% इजाफा हुआ है, जबकि अखराजात में जिनमें इम्कानी खतरात शामिल नहीं हैं 27.60 का इजाफा हुआ है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने 4 रोज़ा भारत दौरे पर आज कोलकाता पहुंच गए हैं। ये भारत का उनका पहला दौरा होगा जो वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और भारत बहरुल काहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तआवुन को वसअत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है। भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर ने हवाई अड्डे पर जनाब रूबियो का इस्तकबाल किया। अमरीकी वजारत खारजा ने कहा है कि कोलकाता में अपने क्याम के दौरान जनाब रूबियो मदर हाउस, सेंट टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी और शहर के चिल्ड्रन होम का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोर ने बताया कि जनाब रूबियो दिन में नई दिल्ली का सफ़र करेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सफीर के मुताबिक ये दौरा बुनियादी तौर पर दिफाई शराकत दारियों, जदीद टेक्नोलॉजीज़, तजारती ताल्लुकात और क्वाड फ्रेमवर्क के तहत इश्तराक जैसे अहम स्ट्रेटेजिक शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और कुब्रुस के दरमियान सेमीकंडक्टर्स, खला और मसनू जहानत जैसे नए और उभरते हुए शोबों में तआवुन की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। राष्ट्रपति भवन में कल कुब्रुस के अपने हमनसब निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके वफ्द को दिए गए इशाइये के बाद सदर जमहूरिया इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तकबिल के मैदानों के तौर पर उभरे हैं।
1: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानसीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: सदर जमहूरिया ने सरहद पार दहशतगर्दी और कसीर जहती इदारों में इस्लाहात जैसे अहम मामलों पर कुब्रुस की हिमायत की सताइश की। सदर जमहूरिया ने कुब्रुस की सालमियत, इत्तेहाद और इलाकाई यकजहती के तहत भारत की गैर मुतजलजल हिमायत का इरादा भी किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदल दिया गया है जो भारत और कुब्रुस के दरमियान बढ़ती सूझबूझ, गहराई और बाहमी एतमाद की अक्कासी करते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय फौज की अफसर मेजर अभिलाषा बराक को जो लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा के क्याम अमन मिशन में खिदमात अंजाम दे रही हैं, अक्वामे मुत्तहदा के 2025 के एक बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। उन्हें यह अवार्ड इस साल की फौजी सिन्फी वकील के तौर पर दिया जा रहा है। मेजर बराक, जो फिलहाल एक भारतीय बटालियन में लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा की उबूरी फोर्स में खवातीन की सरगर्मी वाली टीम की कमांडर UNIFIL के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं, भारतीय फौज के जंगजू हेलीकॉप्टर की पहली खातून पायलट भी हैं। ये अवार्ड हासिल करने वाली मेजर बराक तीसरी भारतीय क़याम अमन फौजी हैं जिन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ है। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को साल 2019 में जनूबी सूडान में अक़वामे मुत्तहदा मिशन के तहत खिदमात अंजाम देने पर इस अवार्ड से नवाजा गया था और मेजर राधिका सेन को साल 2023 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें यह अवार्ड जमहूरिया कोंगो में अक़वामे मुत्तहदा के इस्तेकाम मिशन के तहत उनकी खिदमात पर दिया गया था। भारत तिब्बत सरहद पुलिस ITBP ने माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाली अभी तक की पहली ऐसी बैनुल अक़वामी कोहे पैमा मुहिम मुकम्मल कर ली है जो सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल है। ये कामयाबी इस फौज की कोहे पैमाई के मैदान में तारीखी संगे मील है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ITBP की एक 14 रकनी कोह पैमा टीम ने, जो 11 खवातीन, 3 तकनीकी माहरीन और मददगार अमले पर मुश्तमिल है, इस माह की 21 तारीख को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सर कर ली। इस मुहिम को 19 अप्रैल को ITBP के सदर दफ्तर से रवाना किया गया था। अपनी हिमालय साफ करो और ग्लेशियर को महफूज करो मुहिम के तहत टीम ने माहौलियाती बेदारी की सरगर्मियां अंजाम दी और एवरेस्ट खित्ते से नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकट्ठा किया। مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ٹیم کو ماؤنٹ ایوریسٹ پر قومی جھنڈا

0: जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 255 रन बनाए। आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर क्रिस्टोविड लराइस के दरमियान हुई बातचीत पर तवज्जो मरकूज की है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस ने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है और सरमायाकारी को दोगुना करने का हदफ मुकर्रर किया है। रोजाना प्रताप और इंकलाब ने वजारत खारजा के हवाले से खबर दी है कि क्वाड ममालिक के वजारत खारजा की मीटिंग 26 तारीख को मुनक़िद होगी, जिसमें शिरकत के लिए अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वजारत खारजा भारत आएंगे। इस मौके पर भारत बहरुलकाहिल खत्ते और बाहमी मफादात के बैन अलावी मसायल पर गौर वखौज किया जाएगा। राज्यसभा की 26 सीटों पर इंतखाबात 18 जून को होंगे। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने खसूसी तौर पर शाया किया है। इस बात का ऐलान इंतखाबी कमीशन ने कल किया।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरारनामे तकसीम करेंगे। RBI ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड इजाफी रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाज़त दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले 4 रोजा दौरे पर कोलकाता पहुँच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फ़ौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक़वामे मुत्तहिदा की फ़ौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा ख़त्म हुआ।
2: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव अलावा FM 17.5 MHz पेट।

0: समय ना आप जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं पयाम सुबह लायो नशरियात आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। मैं हूं आपका मेजबान जहूर अहमद और मेरे साथ हैं रशीद निजामी।
1: तो सामिन इकराम इस वक्त हमारे साथ लाइव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर मैट डिपार्टमेंट कश्मीर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। मुख्तार साहब खैर मकदम
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: मुख्तार साहब, ये जो मौसम आजकल बड़ा अजीब है, थोड़ी सी धूप होती है उसके बाद बादल, उसके बाद बारिश, उसके बाद हवाएं, ये कब तक चलेंगी? अब ईद आने वाली है।
2: ऑलरेडी जैसे फोरकास्ट था, मौसम जो है थोड़ा खराब ही रहेगा, खासकर 20 मई से लेकर लगभग अभी 24-25 मई तक तो बारिशें हो रही है, खासकर लेट आफ्टरनून इवनिंग आवर्स में और इसी तरह लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में।
1: जी,
2: ये सिलसिला अभी टिल 25 तक रहेगा, 24-25 के बीच में भी एक फिबल WD है।
1: अच्छा,
2: और फिर उसके बाद जो है मौसम ड्राई है, 26-27-28 इवनिंग तक ड्राई रहने के चांसेस है। 28-29 के बीच में भी एक फिबल WD है, तो उसके बाद फिर लगभग 2-3 जून तक ठीक रहने के चांस है। तो ओवरऑल ऐसे ही वेदर पैटर्न रहने के चांसेस है, बीच बीच में थोड़ा सा हॉट एंड ड्राई वेदर।
1: अच्छा, इसमें यानी आप कहते हैं कि ईद के रोज मौसम खुश्क होगा, ठीक होगा 27-28 तारीख को, और लोग कुर्बानी आराम से कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, फ्रॉम 26 ऑनवर्ड्स मौसम ड्राई है टिल 28 इवनिंग तक, उस बीच थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ने के चांसेस है और वेदर जो है जनरली ड्राई रहने के इम्कान।
1: और ये जो हमारे काश्तकार भाई हैं, उनसे क्या कोई एडवाइजरी है उनके लिए?
2: अभी खासकर जो स्प्रे का काम है वो कल से रिज्यूम कर सकते हैं, और बाकी जो ऑपरेशन है खासकर ट्रांसप्लांटिंग का या बाकी फील्ड पे पेशेंट या कहीं पेफ्रेस पॉइंट का, तो वो चीजें कंटिन्यू रख सकते हैं, वो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा ये करंट वेदर की।
1: आखिरी सवाल, ज्यादा तेज हवाएं चलने का अंदेशा तो नहीं है?
2: अभी तो सबसाइड हुआ है, अभी कमिंग डेज में थोड़ा चल सकता है, खासकर अभी 24-25 के बीच में और आने वाले दिनों में खासकर 28-29 के बीच।
1: चलिए मुख्तार साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमें मौसम से आगाह करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ये थे डायरेक्टर मेट मुख्तार अहमद शाह साहब, हम इनको अक्सर तकलीफ देते हैं और ये मौसम के हवाले से बात करते हैं। बेशक जोर से मौसम सनान पानी से मौसम इसका ग्लोबल वार्मिंग

0: सेवा की सरबराही में लोक भवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू और श्रीनगर शहरों में ट्रैफिक की गुंजानियत को कम करने और गाड़ियों की बिलाखलल आवाजाही को यकीनी बनाने से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया। बुलंदपाया वली कामिल और कश्मीर में बानी इस्लाम हजरत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाही अलैह का 661वां उर्स मुबारक आज नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वादी की मुख्तलिफ मसाजिद, खानकाहों और दरगाहों में रात भर दरूद व अज़कार और खत्मातुल मौज़मात की रूह परवर मजालिस का अहतमाम किया गया। उर्स के सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब उनकी ज़ियारतगाह वाका खानकाह मौला श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहाँ उलमाए किराम ने अमीर कबीर रहमतुल्लाही अलैह की जिंदगी और उनके कारनामों पर रोशनी डाली। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उर्स शाही हमदान रहमतुल्लाही अलैह के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में वज़ीर आला ने हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाही अलैह की अजीम रूहानी, सकाफती और सामाजिक खिदमात को उजागर करते हुए कहा कि उनकी मोहब्बत, अमन और भाईचारे की तालीमात आज भी इंसानियत के लिए मशाल राह है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने यूटी के कॉलेजों में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कहा है कि वो दाखिले के लिए कॉलेज ऑप्शंस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि उन्हें किसी न किसी कॉलेज में दाखिला मिल सके। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने इस ताल्लुक से कहा,
1: हमने रैंक लिस्ट इशू किया है स्टूडेंट्स का, एक डायनेमिक रैंक लिस्ट बनाया है, आज वो विजिबल है स्टूडेंट्स को। अगर किसी स्टूडेंट ने किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है किसी भी कॉलेज में, तो उसको अपनी रैंक उसमें नजर आएगी। हमने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कम ही प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया, उनको लगा है कि हम किसी दो या तीन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे हमें एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा कि एडमिशन मिलेगा ऑन द बेस ऑफ मेरिट बट ऑन द बेस ऑफ इनटेक ऑल्सो। आज से जो हम रैंक दिखा रहे हैं तो उन स्टूडेंट को समझ आएगा जिनकी रैंक नीचे होगी। इसीलिए मेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक डायरेक्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ख्याल रखें कि वो अपनी चॉइसेस बढ़ा दें अभी से, क्योंकि
0: आखिर में दर्जे हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा हाफिज।
2: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। समाप्त करें शोभा की खबर की पेशकश न्यूज रील।
3: रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश रेडियो न्यूज रील, हफ्ते रफ्ता की खास और अहम खबरों के खुलासे पर मबनी प्रोग्राम रेडियो न्यूज रील।
4: न्यूज रील का ताजा शुमारा लेकर मैं बसारत कुल। हमारे आज के शुमारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात नई कांस्टेबलों को तकरीरनामे पेश। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत ताहाल 897 स्मगलर गिरफ्तार, 49 असासे जब्त। मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए कौम फौज की मरहून मिन्नत नायब वज़ीर आला और जम्मू कश्मीर में सेंसस 2027 के सिलसिले में मकानों का अज खुद इंदराज करने का अमल जारी। अब पेश है मौजूद की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि अमन कानून के खतरात और दहशत पसंदी की नवीयत में तब्दीली आई है और आंखों से नजर न आने वाले ये खतरात मुतवातर चौकस रहने का तकाजा करते हैं। जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात किए गए नए कांस्टेबलों को तकरीरनामे फराहम करने के मौके पर मनोज सिन्हा ने नए रंगरूटों को मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत का दिफा करने के लिए अपने आप को वक्फ करने की तलकीन की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूटी में अमन कानून बनाए रखने, मनुष्यात और जराइम से निमटने और दहशत पसंदी के खिलाफ अपनी बेलोस खिदमात अंजाम दी है।
5: आज आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है, नए प्रकार की सतर्कता निरंतर विजिलेंस की मांग करता है और इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के साथियों से कहना चाहता हूँ कि हमें निरंतर चौकस और चौकन्ना रहना होगा, सतर्कता से आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति पर खड़े होकर पड़ोसी मुल्क से आने वाले आतंक के खतरों का भी मुकाबला करना है। शक्ति, देशभक्ति, कर्तव्य परायणता, शौर्य और समर्पण ये जम्मू कश्मीर पुलिस की मुख्य पहचान रही है।
4: वाजह रहे कि मजमुई तौर पर JKP में 3,200 से ज्यादा कांस्टेबलों को भर्ती किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समाज के सभी तबकों से अपील की है कि वो मुनशियात का कलाकमा करने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करके मुनशियात के पूरे नेटवर्क को नेस्तनाबूद करें ताकि नौजवान

0: ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया जबकि 49 जायदादों को जब्त किया गया।
1: पुलवामा के हर घर, हर स्कूल, हर गली और हर दिल तक नशे के खिलाफ युद्ध का बिगुल खुद लोगों ने पहुंचाया। पिछले एक महीने में हमने केवल आंकड़ों में बदलाव नहीं देखा बल्कि आवाम की रूह को जागते हुए अपनी आंखों से देखने और महसूस करने का काम किया है। बारामूला में जिस तरह नशे के खिलाफ लोग जुटे और आवाज बुलंद कर रहे थे, उन्हें हमने और आप में से अनेक लोगों ने अपनी आंखों से देखा। मैंने कुपवाड़ा में हजारों नौजवानों और माँ बाप को नशे के खिलाफ दृढ़ संकल्पित होते हुए देखा।
0: जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मनुष्यात का नेटवर्क 1989 से दहशत पसंदी के साथ साथ काम कर रहा है और समाज में इसकी जड़ें काफी मजबूत हैं। बड़गाम में असलुक आलो नामी प्रोग्राम में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए नशा मुक्त अभियान ने अब एक तहरीक की शक्ल इख्तियार की है। उन्होंने कहा कि मसाजिद और जियारत गाहों में भी आइमा हजरात इस बिद्दत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस मौके पर मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे घरों में ललित का नाम हर एक औरत से मंसूब किया जाता है। वो नाम जो उस लेडी के लिए लिया जाता है कि वाकई इच्छा ललित, तो उस अवार्ड से नवाजा जाना और वो लेना मेरे लिए बाइस फख्र है और मुझे खुशी हो रही है कि इस तंजीम ने मुझे चुना और मेरे काम की सराहना यहाँ पे हुई।
0: तकरीब से खिताब करते हुए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने सकाफती रिवायात और इखलाकियात को तहफ्फुज़ देकर नौजवान पोत को इनसे रोशनास कराने की जरूरत पर जोर दिया। नए वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए कौम फौज की मरहून मिन्नत है। कमान पोस्ट ओड़ी के दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा,
3: यहाँ आने में अच्छा लगा और जिस तरीके से फौज ने इस कमान पोस्ट को संभाल रखा हुआ है और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे इसको मेंटेन किया हुआ, सबसे बड़ी बात मेंटेन इस जंगल के अंदर इस कमान पोस्ट को मेंटेन किया हुआ है और हमारे उन शहीदों को याद किया हुआ है जिन जिन लोगों की जितनी कुर्बानियां बॉर्डर पे इस पे हुई हैं इस उड़ी को बचाने के लिए, उनका यहाँ पे उन्होंने मेमोरियल्स बनाए हैं, उन लोगों के नाम यहाँ रखे हैं, उनके स्टैचूज लगाए हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का आखिरी यही निशान होगा।
0: वजीर तालीम सकीना ईतू ने कहा है कि दहशत पसंदी के वाकात में मारे जाने वाले अफराद के लवाकिन के दुखों का अगरचे मदावा मुश्किल है, ताहम उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार ऐसे अफराद को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रही है। ये बात उन्होंने अनंतनाग में एक स्कूल का नाम तब्दील करने के सिलसिले में मुनाकिदा तकरीब पर इजहार ख्याल करते हुए कही।
4: जो सरकार ने छोटी सी कोशिश, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जब उस वक्त आए, उन्होंने इस फैमिली, इनके माँ बाप को यकीन दिलाया था कि ये स्कूल जो यहाँ पे नजदीक है, इसको हम आदिल शहीद साहब के नाम पे रखेंगे। और मैं समझती हूँ कि एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसका तो कोई मुतबादिल नहीं है, उसको तो वापस ला नहीं सकते हैं। उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है लोगों को बचाने के लिए, जो हमारे टूरिस्ट भाई आए थे उनको जख्मी हालत में वो लेके गए, बचा के गए, ये एक बहुत बड़ा उनका सेक्रीफाइस है, उसको कोई भूल नहीं सकता।
0: ये बात काबिल जिक्र है कि मजकूरा स्कूल का नाम गुज़श्ता बरस पहलगाम हमले में अर्जा हुए सईद आदिल हुसैन के नाम पर रखा गया है। पूरी जम्मू कश्मीर में 17 मई से सेंसस 2027 का सरकारी तौर पर आगाज हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी सेल्फ इन्यूमरेशन मुकम्मल करके जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की है कि वो इस अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और घरों से मुतालिक तफासिल ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर दर्ज कराएं। दरियासना जम्मू कश्मीर के बेशतर जिलों में सेल्फ इन्यूमरेशन का अमल जारी है जिसमे लोग बढ़ चढ़ कर शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के श्रीनगर दफ्तर में एक शानदार अदबी तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें अदीबों, शायरों, दानिश्वरों और मुहक्किकीन की मौजूदगी में साहिबां और पुरकाश नामी दो किताबों की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। साहिबां के मुसन्निफ प्रोफेसर फारूक फयाज ने इस बारे में बात करते हुए कहा,
5: साहिबान का जो शेरी मजमुआ है इसमें हमने पोस्ट मॉडर्न जो क्रिटिकल एप्लीकेशन है, थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है, उसी के पस منظر میں جس طریقے سے آج کی جو شاعری ہے، آج کا جو شاعری رویہ ہے، شاعری جو محاورہ ہے، اس کو ہم نے ملک اپنی شاعری تخلیقات میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طریقے سے میں لگتا ہوں کہ اگرچہ اس میں ملک پرانا کلام بھی موجود ہے، میں نے جو پہلے بہت سے پہلے لکھا ہے، لیکن اس میں سے جو نیو ہسٹوریسزم کا جو اپروچ ہے، ماڈرن جو کرٹیکل تھیوریز کا اپروچ ہے، تو ان کی

0: रवैये को, उस लहजे को हमने कोशिश की है कि शेरी पहराई में ढालने की, इस साहिबा में।
1: इसी तरह से पुरखाश के मुसन्निफ प्रोफेसर रतन तलाशी ने इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया।
2: पहली किताब है मेरी जो मैंने रिलीज की है, इससे पहले मैंने बहुत सारी किताबें लिखी है लेकिन उनका वो रिलीज फंक्शन उस तरह से नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये अपने वतन में मैंने इसको रिलीज किया, कश्मीर में रिलीज किया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ मिला लोगों का, अपने दोस्त जो अहबाब जो शुभचिंतक जो थे सब आए हैं, खुशी की माहौल में किताब रिलीज हुई। मुझे उम्मीद है कि दिस बुक विल बी वेल रिसीव्ड क्योंकि मैंने ये कश्मीरी पढ़ाया है और इस पढ़ाने के बीच मैंने जो अपने स्टूडेंट के अदब के मसाइल के बारे में जो कुछ भी सीखा है उन मसाइल पर मैंने इस किताब में बात की है।
1: कश्मीर की सकाफती विरासत को तहफ़ फराहम करने के लिए काम करने वाली कश्मीर हिस्ट्री फाउंडेशन के अहतमाम से श्रीनगर में द फर्स्ट ट्रैवलिंग म्यूजियम एंड कल्चरल फेस्टिवल के नाम से 3 रोजा प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। प्रोग्राम के आखिरी रोज मुकर्रीन कश्मीर की वसी तारीख पर मुकाले पड़े। फाउंडेशन की डायरेक्टर सुनंदा नेहरू गुंजू ने प्रोग्राम के दौरान अंजाम दी गई सरगर्मियों के बारे में न्यूज रील को बताया।
3: एक सबसे बड़ा टेक अवे मेरा ये रहा कि लोग बोलते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होनी चाहिए क्योंकि हमारे कल्चर के मुताबिक हमारा एनवायरनमेंट, हमारे क्लास, हमारी हिस्ट्री, म्यूजिक किसी को कुछ पता ही नहीं है। और ये आवाम तक पहुंचाने की और स्पेशली यंग जनरेशन को पहुंचाने की बहुत बड़ी जरूरत है।
1: जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में वाकई तारीखी मार्तन तीर्थ मंदिर में 17 मई से महाकुंभ मेले का आगाज हुआ। इस मेले को बनमास, अधिकतम मास या पुरुषोत्तम मास के नामों से भी जाना जाता है और ये मेला एक माह तक जारी रहेगा। इस मेले में कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद शिरकत कर रही है। मेले के आगाज पर ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा और MLA अनंतनाग ईस्ट रियाज अहमद खान भी मौजूद थे। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए सतीश शर्मा ने कहा,
4: श्री मार्टन तीर्थ ट्रस्ट मटन अनंतनाग, इनका बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सुथरा है। तो कहने का मतलब है आज जरूरत है वसुदेव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, वी आर वन। और हमें सबके भलाई के लिए कामना करनी है। हमारी ताकत इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हमारी एकता, हिंदुस्तान की एकता, जम्मू कश्मीर की एकता की आज जरूरत है। जो विश्व में माहौल है अच्छा नहीं, तो यहाँ से मैसेज हम जम्मू कश्मीर के वासियों का, फॉर ब्रदरहुड, पीस, प्रॉस्पेरिटी।
1: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए दाखिले का ऐलान किया है। IIMC नई दिल्ली की वाइस चांसलर डॉक्टर प्रक्रिया पलीवाल कौर ने कहा है कि इस कोर्स में 30 निशस्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 मई है और इम्तिहान अव्वल जून को लिया जाएगा।
5: IIMC की जानिब से फराहम की गई इत्तला के मुताबिक दाखिले इम्तिहान दिल्ली कैंपस में होगा। शोबे उर्दू सहाफत पिछले एक दहाई से भी ज्यादा वक्त से उर्दू के साथ साथ दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए वर्किंग प्रोफेशनल तैयार कर रहा है। एक अहम बात यहाँ यह है कि डिपार्टमेंट में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है। अगर आपके अंदर भी सहाफत के मैदान में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो देर ना करें और आज ही अपना फॉर्म भर दें। मजीद मालूमात के लिए IIMC की वेबसाइट पर लॉगिन करें। अगर तलबा को कुछ मुश्किलात हों तो इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। नंबर है 9871056315।
1: जम्मू कश्मीर बैंक यूटी के मुख्तलिफ सेक्टरों को फरोग देने, नेज लोगों को आला मयार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। इस बैंक को जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी ढांचे में एक कलीदी अहमियत हासिल है और माली इदारा हर गुजरते दिन के साथ तरक्की की नई मंजिलों को छू रहा है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने न्यूज़रील के साथ बात करते हुए कहा,
6: बैंक का जो कोर एक्टिविटी है वो है डिपॉजिट्स लेना और उन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में लोन्स देना। तो डिपॉजिट्स जो हम लेते हैं उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं डिपॉजिटर्स को, और जो हम लोन देते हैं लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, इंटरेस्ट जो अर्न करते हैं और जो इंटरेस्ट देते हैं उसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, और ये मेन कोर बिजनेस प्रॉफिट ग्रोथ का ये एक हिस्सा होता है।
1: टेली मवासलात का शोबा तरक्की याफ्ता दुनिया में एक अहम किरदार है। इस साल टेली मवासलात और इंफॉर्मेशन सोसाइटी के आलमी दिन के मौके पर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स श्रीनगर में भी एक शानदार तकरीब मुनक़िद हुई जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा मेहमान खसूसी थे। इस बारे में इदारे के चेयरमैन इंजीनियर फिरदौस अहद भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
7: आजकल का दौर जो है ये फुली डिजिटल है। द कंप्यूटर लाइन हैज टेकन अस, आवर ऑफिसेज, आवर होम्स, एवरी सर्विसेज बीइंग नाउ रादर अफेक्टेड एज वेल एज ऑगमेंटेड by these digital

समीन तुशु बोजान लाइव नश्रियात पैम सुबह आकाशवाणी श्रीनगर बैठे मुझ पेश सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो कशीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सूफी सदा ये प्रोग्राम चु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़न दहन बजन ताम नश शब्दान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।
2: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स।

0: जन सहित साजम
1: अल्लाह ताला सुन चु सठा शुक्र जे इस करते दीन मुबीन के नियामत सहित सरफराज तो ये दीन हक वातनाउन इस्ताम आरिफ रब्बानी हजरती शाही हमदान मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह सिंदे जरिए तवे छ कशीर मज इस सारी यमन बनी मुसलमानी नाव सहित याद करान हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह जाय पन्नस आबई वतन हमदानस मज बाह रजब सत हत बाह हिजरी मुताबिक अक्तू अक्तूबर तुरवा शत बाह ईस्वी हमदान उस पथ कल पे शोहरत थवान अच तारीखी जाए तो तहजीबी नवैदरात तो निशान तो रिति मौसम सब उस हमदान सालानियन हुंद मरकज रूदमुत हजरत शाही हमदान रहमतुल्लाह अलैह हिंद बाब सब उस खानदानी अलवीक वारिस तिम इराक पे हमदान आमित सैयद शोहबुद्दीन सठा अलिम बा अमल तो सही गुर जान सब तिम हमदानस मज सठा मशहूर यह वजह चु तिमन उस शाही दरबारस मज ते सठा थोद मुकाम हासिल सोफी हजरातन तो अकाबिर उमतन मज ते उस न तिमन कम दर्जे दपान सैयद शोहबुद्दीन पन्निस फर्जंद मीर सईद अली हमदानियस अथ रटित रूहनी मजलिसन तो सोफी महफिलन मज पानस सत नि हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह मोल सिंह वत्ति सईदजाद तो माज हिंद किनते तो अत नजीबुल तरफीन सईद आसनस पेट उस तिमन काफी फखर यम किन प्रथ विज खुदाय सुंद शुक्र अदा करान शाही हमदान सब त्रय बाब सबन लोकच उम्र मज पन्निस मामस हजरत शेख अलाउद्दौला सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह निश पर्न खतर ये तिमो कुरान शरीफ हिफज कुर तो सैर सफरुक तो तबलीग किस शौकस सत सत गोख शायरी तो खुश कलमी हुंद ते मोहब्बत यमन उस हमेशा पन्निस उस्ताद सुंद यजत तो हमेशा हजरत शेख सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह सिंद शागिर्द आसनस पे फखर महसूस करान हजरत शेख सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह सिंद इंतकाल पत गई बहुकमे गैबी हजरत शाही हमदान रहमतुल्लाह अलैह हजरत शरफुद्दीन महमूद सिंज शागिर्दी मज शामिल तो यमस हुकमस पे गई हजरत शाही हमदान रहमतुल्लाह अलैह सेंट्रल एशिया रूम सिंधु हिंद कश्मीर तुर्किस्तान लद्दाख बलूचिस्तान काशगर चीन तो सरनद्वीप यानी श्रीलंका तो बे बाकियन मुल्कन ते ये तिमो इशात इस्लाम तो तबलीग दीन खतर काम कर वरी बदन कुरुक सफर मगर हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूजूब असुक आ खास नजर कशीर पे
2: हज़रत मौलाना जामी औलियाई किराम मशहूर सवानी हनिगार यम लिखान हज़रत अमीर सिंदिस सवानी मज रुब मसकूर सकरत गर्दीद हज़रत अमीर कोर सैर सयाहत आबाद दुनिया मज त्रे फिर मकसद उस युद्ध इफादा इस्तिफादा इफाजा इस्तिफाजा यानी फ़ायदे वातनाउन फ़ायदे हासिल करूँ फैज दुन और तमजन मुख्तदर शख्सियात नश फैज हासिल कर अच सिलसिलस मज आयम कशीर मज जी कशीर च सपुज मुनवर यहद वरूद सत यज तशरीफ आवरी सत त्रे फिर उनमो वादी गुलपोशस मज तशरीफ तो कशर पे यन बाशंदन पे रियासत पहद छड़ा असरात तमो मजु लाफानी समर आवर हयात बख्श एहसान सुच अवराज फतहय अवराज फतहय यो मुजवज वजायफन हुंद मजमु अमी छत वनान अवराद फतहय फतह मजरामुत फतह वनान दरवाज खोलनस कह चीज खोलनस चूंकि फतहय वनान अत अवराज शरीफस यम लिहाज यह इंसान सिंद मादी तो रूहानी मुश्किलात हल करान यानी यहद सब अल्लाह ताला सिंद बारगाह मज दुआ सपदान कबूल और लूकन ही मुश्किल यम दुनिया मुश्किलात और रूहानी मुश्किलात।

अमला, सोपोर, हंदवोर, करना, त्राल, भवन, शाहबाद, कुलगाम, वची, शुपियन तो इस्लामाबाद वगैरह दौर तो जाय जाय करिक तबलीग मस्जिद तो खानका बनावेक यम वनकस्ते मौजूद छे।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सबिन तुएसु प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम छु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे ताम नश्र सब्दान।
2: सबिन तुएसु बोजान सूफी तरेशी वेचारन पेठ मबनी प्रोग्राम सूफी सदा। आज प्रोग्राम ओस हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह मुतल्लिक। रावी ओस गुलशन बदरनी। प्रोग्राम इस पेश करान मुफ्ती रियाज। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। आप पयाम सुबह का लाइव शो समाप्त कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में रशीद निजामी के साथ मैं जुड़ गया हूं सैयद नवाज शरीफ। हमारे आज के मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। कौन है हमारे मेहमान, उनसे आपका तारुफ कराएंगे रशीद निजामी इस वक्फे के बाद।
3: प्रोग्राम का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर का पैगाम है, आप अपनी खैरात सदकात और जकात जकात सेंटर इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर मुत्सिल ललदत अस्पताल श्रीनगर के अलावा ट्रस्ट के यतीम खानों दारुल एहसान कालपुरा चाडुरा या दारुल मोहसिनात सिंहपुरा पटन में भी जमा करा सकते हैं। रकम की अदायगी ट्रस्ट के बैंक खाता के जरिए भी की जा सकती है। याद रहे, रकम की अदायगी पर इनकम टैक्स छूट मिलती है।
4: तमाम सामईन का एक बार फिर खैर मकदम। जी हाँ, जैसा नवाज शरीफ ने कहा, मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और हमारे जो आज के मेहमान हैं आप हैं मारूफ एडवोकेट और मारूफ समाजी कारकुन जनाब अब्दुल रशीद हाजुरा साहब। हाजुरा साहब खैर मकदम।
5: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हाजुरा साहब, आज भी हमने एक हसास टॉपिक आपके लिए चुना है। हम इस टॉपिक को आज कोशिश करेंगे कि लोगों तक पहुंचाएं और इसमें जो लोभ लुभाव है हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो जन अजुक टॉपिक छु सुछो नशा मुक्त समाज। लोग या नौजवान या जवान नशा क्यों करते हैं, असबाब क्या है?
5: देखिए निजामी साहब, इसमें बहुत सारे वजूहात हैं और बहुत सारे असबाब हैं जिसकी वजह से आजकल के नौजवान, मैं कहूँ आजकल के नौजवान नशे की लत में पड़े हैं। जब हम 30-40 साल पहले देखें, नज़र डालें, तो हमारे समाज में कभी ऐसी कोई मुश्किल नहीं दरपेश थी या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई इशू ही नहीं था। ये हाँ ज़रूर ये था कि उस वक़्त कुछ लोग सिगरेट नोशी में मुबतला थे, उसके शिकार थे, और कुछ लोग गाँव में हुक्का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो इतना हजारस नहीं था वो हुक्का, या वो सिगरेट तो कम ही लोग पीते थे, उसमें उतनी ज्यादा परेशानी नहीं थी। और वो भी अगर बड़े लोग भी सिगरेट पीते थे वो चोरी छुपे पीते थे ताकि बच्चे ना देखें या घर के बड़े बुजुर्ग ना देखें। ये एक मामला था, एक हया था उस वक्त, तो इस तरह से वो कंट्रोल में रहा करता था वो सिगरेट नोशी वगैरह। लेकिन बदकिस्मती से हालात बदल गए, हमारे समाज में कुछ तब्दीलियां आ गई। वो तब्दीली ये है, एक तो है कि हमारे जो वालिदैन हैं जिनका सबसे पहले कंट्रोल होता है घर में और बच्चों पर, वो

0: पास बच्चों को जरूर भेजना, उन अपने बच्चों को अपने जवानों को जरूर कहना कि उनके संगत में रहो, क्योंकि उनका एक खासा तजुर्बा होता है जिंदगी का। वो अपने तजुर्बे से उनको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। उनको इस पर प्राइम जमाने से पानी नाइन बिल्कुल दलील बना,
1: बिल्कुल
0: तुम्हें दलील में जो अक मॉरल पता सा पोत उस अक उस अक सेंस अक सोशिस कबूल करा इस पत्र पर फॉलो करा। ये चीजें है
1: अत नशा मुक्त समाज मुतलिक कर हंजूरा सब सी क तो नवाज सब तम तरन कह सवाल मगर यपरन बेसि मौसीकी हिंस डल थम पूर्व उम्मीद तुह तो पसंद तो सान बोजन वालन तक।

0: विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे तो यहां तो कहा जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।
2: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम व्यू 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन 12 बजने वाले हैं। आइए आकाशवाणी दिल्ली से खबरें सुनते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से

0: Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.1 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय 12:10 और 11 सेकंड हो चुके हैं। आइए कुछ फिल्मी नगमे सुनते हैं। आगाज में किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं मुकद्दर का सिकंदर। फिल्म से ये नगमा।

जसमीन आफ्नो खुदागवा फिल्म से अर्कै अग्निकर र सुरेश वाडेकर की आवाजमा नगमा सुना। आप फिल्मी नगमे से बात कर रहे हैं, आइए आखिर में सुनते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा।

सुमिना आप फिल्म इनक में समाप्त कर रहे थे। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर 12:30 होने वाले हैं। आइए खबरें सुनते हैं, पहले उर्दू और उसके फौरन बाद कश्मीरी।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:23 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ महकमों में तैनात किए गए 51,000 से ज़ायद नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकर्रुर नामे तकसीम किए। ये रोजगार मेला मुल्क में 47 मकामात पर मुनक्कद किया गया। इन रोजगार मेलों के जरिए अब तक मुल्क भर में 12,00,000 तकर्रुर नामे तकसीम किए जा चुके हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने इन नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि भारत के नौजवान विकसित भारत की जानिब सफर को तेज करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले के जरिए नौजवान ताकत को नए मौके फराहम करके उन्हें बाइख्तियार बनाना हुकूमत के अज़्म का आकाश है।
1: मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूँ, लेकिन इस दौरान मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है, दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: वाज़ह रहे कि इस तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 220 नौजवानों को भी तकर्रुरनामे सौंपे गए। जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमद से जारी हैं और मनशियात के ढांचे को खत्म करने, नीज इसलत में फंसे नौजवानों की बाजाबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में मनशियात मुखालिफ तकरीब में शिरकत करके पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। पद यात्रा में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर बायोडायवर्सिटी काउंसिल ने इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की मुनासिबत से दाचीगाम नेशनल पार्क में एक तकरीब मुनक्कद की, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के कुदरती और माहौलियाती विरसे को उजागर किया गया। तकरीब पर जंगलात, माहौलियात और इकोलॉजी की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा मेहमानी खसूसी की हैसियत से मौजूद थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हयातियाती तनाव का तहफ्फुज इंसानियत की बका के लिए नागुजीर है और तरक्याती मनसूबों में माहौलियात के तहफ्फुज को तरजीह दी जानी चाहिए। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजलुल हसीब ने ईद उल अजहा के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। कमिश्नर मौसूफ ने मुतलिका अफसरान को हिदायत दी कि वो ईद उल अजहा के दौरान नमाज ईद के लिए शहर भर की मसाजिद, खानकाहों, ईदगाहों और दीगर अहम मजहबी मकाम के अंदर और आस पास मुनासिब सफाई सुथराई को यकीनी बनाए। मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने शिया अंजुमनों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग मुनक्कद की। उन्होंने मीटिंग में आज़ादारों के लिए बेहतर सहूलियात और जुलूस के इनेकाद के हवाले से तजावीज़ तलब की। शुरका ने मीटिंग में इंतजामात, शहरी सहूलियात से मुतालिक मसाइल को उजागर किया। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम अथर आमिर खान ने होकरसर वेटलैंड की हदबंदी की पेशरफ का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने फील्ड वेरिफिकेशन, बाउंड्री असेसमेंट, जियो रेफरेंसड मैपिंग की मौजूदा सूरतहाल और हर महकमे के पास दस्तियाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। उन्होंने वेटलैंड की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए दुरुस्त साइंसी हदबंदी की अहमियत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रवां महीने की 25 तारीख को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में एक तकरीब पर इस साल के पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। इस बात की जानकारी वजारत दाखला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। इस साल मरकजी सरकार ने 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड पाने वालों में 16 खवातीन शामिल हैं, जबकि 16 अफराद को बाद अज़मर्ग ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। ईद उल अजहा के पेश नजर तमाम सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गर्ज से जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल महीदीन भट्ट ने एक मीटिंग की सदारत की। इस दौरान उन्होंने जिले के खिरम, दरगाह शरीफ, अशमुकाम, सीर हमदान समेत तमाम मसाजिद और ईदगाहों पर आने वाले अकीदतमंदों के लिए तमाम सहूलियात को यकीनी बनाने पर जोर दिया। मेंबर असेंबली त्राल रफीक अहमद नाइक ने हल्का इंतखाब त्राल के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी से खड़ी फसलों और मेवा बागात को हुए नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन को यकीन दिलाया कि वो ये

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मेरे वे 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर अब पेश है प्रोग्राम बज़्म-ए-निस्वां।
5: बज़्म-ए-निस्वां प्रोग्राम बज़्म-ए-निस्वां का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारी तरफ से खलूस बराम सलाम कबूल फरमाइए। उम्मीद है सामिन किराम आप सब खैर आफियत से होंगे और ईद की शॉपिंग और उससे मुंसलिक जितनी भी तैयारियां हैं उसमें तो काफ़ी मशगूल होंगे। और हमारी तरफ से तो हम यही कहेंगे कि हम आपको नेक ख्वाहिशात देंगे कि आप वो सब काम खुश असलूबी से अंजाम दें। सामिन किराम, आज का ये जो दिन है 23 मई बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज ख़वातीन से मुंसलिक एक मर्ज़ या मर्स भी नहीं कहेंगे जो जचगी के बाद एक खातून को लाहक होती है वो है फिस्टूला। तो आज के दिन बैन अल-अक़वामी सतह पे ये एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है टू एंड ओबस्ट्रिक फिस्टूला, जिसे हम आम फहम जबान में प्रसूति फिस्टूला के खात्मे का बैन अल-अक़वामी दिन भी बता सकते हैं। चूँकि ये जो बीमारी है ये एक खातून को, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जचगी के बाद होती है या बच्चे के जब पैदाइश है उसके बाद होती है। तो आज हमने इस प्रोग्राम में मदु किया है माहिर अमराज ख़वातीन डॉक्टर फिरदौस को, जो हमें फिस्टूला के बारे में रोशनास कराएंगी हमारे सामीन कराम को कि ये कैसे होता है और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और इस दिन के हवाले से भी हमें जानकारी देंगे। तो इससे पहले कि ये हमें ये सब जानकारी दें, इनका खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
5: आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहिबा।
6: शुक्रिया, शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मेरी इज्जत अफजाई तो हुई है लेकिन ये भी है कि इस फोरम से मैं कुछ अवेयरनेस ख्वातीन के बारे में बता सकूं। अब चूंकि ये इंटरनेशनल फिस्टूला डे है
5: जी,
6: थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताऊंगी। पस मंजर में ये है कि ये तकलीफ मैं बताऊंगी आपको क्या है, लेकिन ये प्रिवेंशन जो है इसको, इसकी रोकथाम करना इंटरनेशनली बाय द यूनाइटेड नेशन 2013-12 से ये शुरू हो गया, सो दैट इसको हम प्रिवेंट करें, होना नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे ये है क्या
5: जी,
6: दूसरा सवाल आपका होगा ये है क्या। ये एक कॉम्प्लिकेशन हम कह सकते हैं जो डिलीवरी के बाद होती है, लेकिन अगर इसको हमें इससे बचना है तो इसको डिलीवरी से पहले ही सारे इकदाम लेने हैं। इसमें होता क्या है, जब एक हामला औरत नॉर्मल डिलीवरी के लिए या लेबर उसको हो जाता है स्टार्ट, भी पेन्स होती हैं स्टार्ट, तो उसको जो अटेंड करना चाहिए वो एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, एक डॉक्टर या स्किल नर्स, या उस जगह उसकी डिलीवरी होनी चाहिए जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। ऐसा ना हो कि उसको दो दिन लेबर रहेगा और तीसरे दिन उसको रेफर करेंगे एक फार फ्लंग एरिया से। तो ये देखा गया है उन्हीं में ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मैं ऐसे बताऊँगी, जब हम पढ़ते थे, हम पढ़ाते थे और जो भी हमारी टीचिंग रही, हमने बहुत फिस्टूला देखे हैं, उसका कैसे हुआ, क्या हुआ, फिर उसकी सर्जरी कैसे हुई, लेकिन आजकल फिर जब हम पढ़ाने लगे तो बहुत कम आते थे। तो उसका मतलब हुआ जो ख्वातीन का केयर था वो बेटर हो गया प्रेगनेंसी में। ये तो बहुत, क्योंकि अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत शौक रहता है हम ऐसा पेशेंट देखते, पर ऐसा नहीं है कि ये कम, बिल्कुल नहीं है, ये है, ये उन जगहों पे है जहाँ एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और जहाँ पर जैसे मैंने कहा स्किल लेबर ये ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं है या डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ क्या हो जाता है, नॉर्मली आपको पता है हमारे फार फ्लंग एरिया

0: में डिलीवरी स्टार्ट होती है लेबर, तो कभी दो दिन भी लेबर रहता है और वो आराम से कहते हैं आज हो जाएगी कल हो जाएगी डिलीवरी, तो उसी में ये नुकसान हो जाता है। होता क्या है, फिस्टुला जो होता है ये एक समझे आप ट्रैक है, ये दो चीजों के बिटवीन एक ट्रैक बनता है और एक साइड से इसमें होल बन जाता है। अब मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, जो बच्चा दानी होती है उसमें बच्चा है, उसके आगे यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें हम कहेंगे जिसमें पेशाब रहता है, ब्लैडर में पेशाब होता है, तो ब्लैडर आगे होता है, बीच में यूट्रस होता है, पीछे से रेक्टम होता है जो पाखाना हो, जहाँ से बड़ा पेशाब, मतलब आगे से छोटे पेशाब की जगह है, पीछे से बड़े पेशाब के बीच में यूट्रस है। अब जब इसको लेबर हो गया तो मैं आपको प्रैक्टिकली ऐसे बताऊं, हेड नीचे आ रहा है बच्चे का, नॉर्मल प्रोसेस तो वही है, जब हेड नीचे आ रहा है कोई रीजन है जिससे उसको ऑब्स्ट्रक्ट हो गया वहां पर, जब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो जो स्किल्ड बंदा है वो उसको पता लगेगा कि इसकी डिलीवरी नहीं होगी, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको टाइमली रेफरल करेगा। अब जो नहीं होते हैं और जो फार फ्लंग एरियाज में, वो इनको देते रहते हैं ट्रायल उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हो जाता है, अब ये हेड है, हेड को आगे ब्लैडर है, ये उसको पुश करता रहता है, करता रहता है, करता है, इसको प्रेशर डालता रहता है क्योंकि निकल तो सकता नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई है, या अगर एक पोजीशन होती है ऑक्सीपिटल पोस्टर अगर वो हो तो पीछे से रेक्टम को प्रेस करता है। अब जब इस चीज को प्रेस करता है ये हेड, तो इस ब्लैडर की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, इसकी जो वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती है। अब आप ऐसे सोचे, जब हार्ट अटैक होता है
1: जी,
0: उसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, हार्ट की रगे सुकड़ जाती है और हार्ट अटैक आता है, तो इसमें भी ये कॉन्स्टेंटली इसको प्रेशर देता है, फिर किसी तरीके से वो डिलीवर करते हैं, इनको निकालते हैं बेबी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बेबी भी डेड होता है। तो फिर सडनली थर्ड फोर्थ डे पर पेशेंट कहती है मुझे पेशाब निकल जाता है, कंट्रोल नहीं है पेशाब पे, तो उस जगह जहां पर ये प्रेशर होता है वहां पे ब्लड सप्लाई खत्म, वो टिश्यू खत्म हो जाता है, उसका नेक्रोसिस हो जाता है और उसकी वजह से उसमें होल बनता है, तो ये होल कनेक्ट करता है यूट्रस और ब्लैडर के बीच में, तो उसको कॉन्टिन्यूसली यूरिन निकलता रहता है, तो वो फिर सोशल प्रॉब्लम भी बनती है, वो मतलब वो मेडिकल प्रॉब्लम भी बनती है, और फिर उसको ट्रीटमेंट करना है, तो वो तो बहुत एडवांस्ड होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि फिस्टुला हर हालत में प्रिवेंट हो सकता है, अगर हमें टाइमली डिटेक्ट हो गया कि बेबी बहुत बड़ा है, ये डिलीवर नहीं कर सकती है, या वो जहाँ पर उनकी डिलीवरी हो रही होम डिलीवरी इसके लिए फिजिबल नहीं, दाई ये काम नहीं कर सकती है, या जिस एरिया में वो रहती है वहाँ सिर्फ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो उन जगहों पर इनको अर्ली रेफरल करना चाहिए, हॉस्पिटल आए फिर वहां वो मशीन के जरिए बच्चा निकाले या अर्ली निकाले या सिजेरियन करे, तो उस हिसाब से ये फिस्टुला बच सकता है। और कभी कभी ये इतना ज्यादा होता है तो ये पीछे से रेक्टम पर करता है, तो उनको फिर बड़े पेशाब की पाखाना की प्रॉब्लम होती है, तो ये तो एक स्टिग्मा बन जाता है ना, फिर वो बंदा कहीं ना आ सकता है ना जा सकता है, और फिर उसकी सर्जरी भी सक्सेसफुल होनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत टिश्यू साइकेट्राइज हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि पूरे 9 महीने अच्छे से इलाज रखो और ट्रेन बंदों से इलाज रखो, और उन बंदों को भी, वो जो डॉक्टर्स हमारे जूनियर हैं या जो अभी बिगिनर्स हैं, उनको भी ये देखना है कि इस पेशेंट को यहाँ फैसिलिटीज हैं डिलीवरी के लिए कि नहीं, हमें कहीं लास्ट मोमेंट पर इसको शिफ्ट तो नहीं करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें इसको प्रोटेक्ट कर सकते। और इसका दूसरा ये है कि आप देखिए, आप जब यूरिन उसको ड्रिबल हो रहा है, टोटली उसको निकल रहा है यूरिन, तो यूरिन में कुछ चीज़ें होती हैं, ऑक्सलेट्स होती है, यूरिया होता है, वो कंटिन्यूसली उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गिरता है, तो हमने देखा है पेशेंट्स को एक्सकोरिएशन जख्म हो जाते हैं, वो बैठ नहीं पाते हैं, अच्छा उनको स्मेल आती है फिर अजीब सी, क्योंकि ऑल द टाइम यूरिन लीक कर रहा होता है, तो वो सोशली भी वो फिर हो जाते हैं ना, सॉर्ट ऑफ कट ऑफ हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। उससे ये भी होता है कि यूजुअली वेरी हाई क्लास में तो नहीं देखा गया है, जहाँ डेवलपिंग है वहीं पर देखा गया है ये, तो फिर उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो हमने अपने हॉस्पिटल में एक लेडी, अभी 40 ईयर्स बैक, उससे पहले भी जो हमारे सीनियर्स थे, उनने फिर एक फिस्टुला पेशेंट को एम्प्लॉय किया था, तो उसका कोई कुछ था ही नहीं, क्या करती वो, शी वॉज अ सोशल आउटकास्ट हो गई थी, घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो उसको फिर सॉर्ट ऑफ रोजी रोटी के लिए कुछ करना पड़ा। एंड हम छोटे थे अभी स्टूडेंट्स, हम देखते थे शी वुड ऑलवेज स्मेल ऑफ यूरिन, वो सर्जरी मानती नहीं थी फिर, और उन दिनों इतनी सक्सेसफुल होती भी नहीं थी सर्जरी। तो अगर अवेयर हो जाए इसका इंसान और प्रॉपर केयर रखे 9 महीने, प्रॉपर

0: हॉस्पिटल में डिलीवरी कराए, मिस हैंडलिंग नहीं हो, देन इट विल टोटली गो ऑफ, फिर ये रहने का कोई ये है नहीं सवाल
1: इंशाल्लाह। लेकिन जहाँ तक हमारे युवा ने रिपीट, लेकिन जहाँ तक हमारा जो डाटा हमें बताता है, कहते हैं कि थ्रू आउट वर्ल्ड लगभग हर साल लगभग 1 लाख केसेस हमें रिपोर्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है इससे कई ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट भी ना हो, क्योंकि जैसे आपने अभी फरमाया, ये ऐसी जगहों पे होता है जो एक्सेसिबल नहीं होती हैं। तो बस हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो फिस्टूला का जो ये मर्ज लाहक हो जाता है, ये बस ख़त्म ही हो जाए, ताकि जो हमारी ख़वातीन हैं एक तो अपने बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश कर सके और अपने एक पुरसकून ज़िंदगी जी सके। अभी आपने फरमाया कि इसमें सर्जरीज हो सकती हैं या इलाज है, इलाज के बारे में बताएं।
0: इलाज के बारे में है, इसकी सर्जरी जो पहले तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी, जब हम छोटे थे ना, सीखते थे, तो हमें फिस्टूला पेशेंट के साथ हम 3-way कैथेटर, फिर 3 बॉटल्स, 1 से यूरिन निकल, मतलब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था और सक्सेस उतनी नहीं होती थी, उतने एंटीबायोटिक्स नहीं थे, उतना एनेस्थीसिया तो खैर तब भी अच्छा था, उतना पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं होता था, एंटीबायोटिक्स नए नए आ गए। लेकिन अब अगर बहुत ज़्यादा फिस्टूला होगा तो हम यूरोलॉजिस्ट के साथ भी मिलकर, बिकॉज इसमें तो यूजुअली ब्लैडर ही इन्वॉल्व हो जाता है ना, यूरिन लीकिंग। अब अगर रेक्टोवजाइनल, वो तो एक्सट्रीम हो गया कि इतनी हद तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई है कि उसके ब्लैडर और रेक्टम दोनों इन्वॉल्व हो गए हैं, वो ज़रा कम देखने, बट यूरिनरी फिस्टूला ज़्यादा देखते हैं। तो इसमें सर्जरी हो सकती है, लेकिन ऐसा है कि अब अगर पेशेंट को नॉर्मली या 2nd-3rd day पर स्टार्ट होता है, क्योंकि 1-2 दिन में इसमें अभी ही वो क्लॉट बैठा होता है, तो ये जब डिस्टर्ब हो जाता है तो इसको लीकिंग हो जाती है शुरू। इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, या इसमें वो पेशेंट ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे अभी सर्जरी करो, उसी टाइम उसको सर्जरी नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम वो लैक्टेटिंग होती है, अगर उसका बच्चा है उसको दूध पिलाना है, तो लैक्टेशन में जो सारे टिश्यूज होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, वो अपनी जगह पे वापस नहीं आए होते। जब वहाँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो बॉडी को कम से कम 3-6 months लगते हैं अपने शेप में और अपने वापस, तो उस टाइम सर्जरी कभी नहीं। जब भी हम पेशेंट्स को बोलते हैं, हम बोलते हैं ठीक है अब आप प्रिकॉशंस लो, पैड यूज़ करो, लीकिंग के लिए एंटीबायोटिक रखते हैं और जो भी मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट्स उनको बोलते हैं, बट सर्जरी हमेशा उनको हम डिले करते हैं 3-6 months। और ये भी उनको हम कहते हैं कि अगर आप कोशिश करो कि आप बच्चे को दूध ना पिलाओ, बट वो भी नुकसानदेही है। सो दोनों सूरत, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो देन तो फिर वो स्टॉप करना ही है, बिकॉज वो सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर आप लैक्टेशन में करोगे, टिश्यू इतना ट्रॉमेटाइज्ड होता है, उसमें वो स्टिचेस अच्छे से नहीं रहती है। बट उसके बाद जब करते हैं, और हमारे पास अब फाइन मेशेस हैं, एनास्टोमोसिस है, ब्लैडर रिपेयर है, और ब्लैडर रिपेयर में ऐसे ऐसे ये जो थ्रेड्स आए हैं नए नए, तो उनमें हीलिंग बहुत अच्छी से हो जाती है। ऐसा नहीं है, हाँ रेकरेंस है, रेकरेंस हो सकती है। मैंने एक पेशेंट देखा है, उसका मैं ज़्यादा लंबा नहीं बताऊँगी आपको, उस शी प्रेजेंटेड विद अ स्टोन इन द प्राइवेट पार्ट्स, जो बर्थ ये जगह है पैसेज, उसमें बड़ी स्टोन मुझे फील हुई, तो मैंने ऐसे ऐसे, तो शी स्टार्टेड ब्लीडिंग। वो उसको फिस्टूला था और वो जो ऑक्सलेट्स वगैरह निकलते थे वो उसके एक जगह पर कलेक्ट होते थे, उसने स्टोन, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन बनती है, वो तो स्टोन बन गई थी उसकी। शी वॉज फ्रॉम वेरी फार फ्लंग एरिया, आई थिंक कंगन से भी ऊपर कहीं एरिया से, और उसने निग्लेक्ट किया, उसने सोचा ही नहीं था, अब हो गया तो चलता है इतना, बट बाय द टाइम फिर वो रोज सारा यूरिन लीक होने लगा एंड दिस स्टोन स्टार्टेड ऑब्स्ट्रक्टिंग हर, तो फिर उसके बाद वो सर्जरी के लिए आ गई। बट उन एडवांस केसेस में बहुत मुश्किल है कि सक्सेसफुल सर्जरी हो जाए।
1: तो कैसा, जैसे अभी आपने कहा कि कम से कम 3 महीने तक सर्जरी नहीं करनी चाहिए, जैसे ये मर्ज लाहक हो जाए,
0: नहीं अगर डिलीवरी, इमीडिएट डिलीवरी के बाद, अब है ना किसी को ऑब्स्ट्रेटिक फिस्टूला, तो ऑब्स्ट्रेटिक डिलीवरी के टाइम खुदा ना खास्ता कुछ फिस्टूलाज होते हैं जो रेडिएशन से होते हैं, कभी किसी को ऐसी रेडिएशन दी तो उसने बर्न किया, कभी सर्जिकल हो जाता है, गॉड फॉरबिड ऐसे हुआ नहीं है, मगर कोई सर्जरी कर रहे हो और ब्लैडर को निक हो गया, उसमें फिस्टूला बन गया, ये गायनी सर्जरी, तो उसको उधर ही रिपेयर कर सकते हैं, उसका तो रिपेयर कर सकते हैं, बट दैट डजंट, वो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला में नहीं, ऑब्स्टेट्रिक होता है टिपिकली जो डिलीवरी के साथ हो जाए, और उसका मैंने आपको रीजन बोला, प्रेशर की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और एक होल बन जाता है। सर्जरीज आर अवेलेबल, सर्जरी का आपको ये नहीं है। हाँ, जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं है, हाँ

0: स्टैटिस्टिकली हमें यहाँ आते नहीं है इतने, बट ये सिर्फ कश्मीर में नहीं है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, इट इज सी सब सहारन अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पता है टू क्लासेस ऑफ पीपल, तो जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में वेरी वेरी, दैट्स वाई ये कश्मीर को देखकर और इंडिया को देखकर यूनाइटेड नेशंस ने नहीं ये कहा कि हम वी ट्राई टू एंड, वहाँ पे हाई रेट बहुत ज्यादा केसेस है, वहाँ पे आपको पता है पॉवर्टी है एंड अदर थिंग्स, सोशियो इकोनॉमिकली दे आर बिलो, सो वहाँ भी है, सो इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, बट इट इज डिक्रीजिंग नाउ बिकॉज जब से ये ऑब्स्टेट्रिक्स एंटीनेटल केयर और ये प्रेगनेंसी केयर इम्प्रूव हो गया, तब से ये तो ऑलमोस्ट हमें कम ही मिलता है देखने को इन दिस सेटअप, बट हो रहा होगा वो जो रिपोर्ट नहीं करते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आज के दिन के हवाले से प्रोग्राम के आखिर पे आप समिंग क्रांग को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं यही मैसेज दूंगी कि अपने आप को, क्योंकि इसका लोगो ही है, इसका थीम है हर हेल्थ इज हर राइट, एक औरत का हक है अपना अपनी सेहत, ये उसका हक है, हम कहते हैं कि औरत को बच्चा होना है, उसी को होना है, वो सब ये बेयर करेगी, लेकिन एट द सेम टाइम उसको अपना राइट है अपनी सेहत का ख्याल रखना, तो इसलिए वो पहले से ही 9 महीने अच्छे से इलाज करे, अच्छे सेंटर्स पे जाए, अपने डॉक्टर से मशवरा करे कि अगर मुझे डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम होगी मैं, आप मुझे रेफर कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पे सिजेरियन की फैसिलिटीज हैं या नहीं, यहाँ पे बेबीज की, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इनमें इतना बेबीज की बुरी हालत हो गई होती, वो बेबीज अगर जिंदा भी निकलते हैं वो दैट इज अ बर्डन टू द सोसाइटी, तो मैं औरतों से कहूँगी अपनी सेहत का ख्याल रखो एंड खासकर 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में कंटिन्यूसली अपने डॉक्टर जैसे भी वो बोलेंगे आइए, और डिलीवरी एट कहूँगी अच्छे सेंटर पर, ऐसे नहीं कि होम डिलीवरी, मुझे तो नहीं लगता आप होम डिलीवरीज करनी चाहिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप प्रोग्राम में आई और आज के दिन के हवाले से बहुत अच्छी जानकारी आपने सामिन कराम को दी, और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जो हमारे सामिन कराम है, खसूसन हमारी खवातीन सामिन कराम जो हैं, वो आपकी इस दी हुई जानकारी से इस्तेफादा ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम आने के लिए।
0: शुक्रिया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जय हिंद फौजी भाइयों, आज का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं आप सब बखैर और आफियत होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सईद नवाज शरीफ। आज के प्रोग्राम में भी लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खूबसूरत नगमे, साथ ही साथ होंगी आपसे कुछ बातें भी। तो आगाज़ में सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

ये तो सोवा परदेश फिल्म से आपने ये नगमा सुना। और इस फिल्म की बात करें तो ये ऐसी फिल्म जो न सिर्फ इंसान के अंदर अपने मुल्क के तई मोहब्बत में इजाफा करती है बल्कि साथ साथ अपनी तहजीब अपने कल्चर के साथ जुड़े रहने की तलकीन भी करती है। और किस तरह दूसरे मुल्क में रहकर भी इंसान अपनी जड़ों के साथ मजबूती से जुड़े रह सकता है ये भी इस फिल्म में दिखाया गया है। मजीद शाहरुख खान और अमरीश पुरी की कमाल की अदाकारी, जिस अदाकारी की वजह से इस फिल्म के डायलॉग और इस फिल्म के ढेर सारे सीन हमेशा के लिए लोगों के दिलों में घर कर गए हैं।

दोस्तों, विरासत फिल्म से आपने नगमा सुना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। जिंदगी के तई आपकी सोच, दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करना, दोस्ती और मोहब्बत के दरमियान कश्मकश, ये सारी चीजें जब एक फिल्म में दिखाई गई तो सिनेमा हॉल में तालियों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। संजय दत्त का एक अलग थलग अंदाज, सलमान खान की मासूमाना अदाकारी और माधुरी दीक्षित की खूबसूरती, एक फिल्म में जब ये सारी चीजें एक साथ मिले तो लोग इस फिल्म को हमेशा याद रखने पर मजबूर हो गए। मजीद इस फिल्म के नगमों ने चार चांद लगाते हुए इस फिल्म को खास बना दिया। इस फिल्म की बात हो ना हो, इस फिल्म के अदाकारों की बात हो ना हो, लेकिन इस फिल्म में जो मौसीकी है और इस फिल्म के जो नगमे हैं उनकी बात हमेशा होती है और लोग उन नगमों को आज भी गुनगुनाते हैं और बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं वो आपको इस नगमे से अंदाजा हो जाएगा।

ये दोस्तों अब आप सही समझे होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे थे और हम किस फिल्म के म्यूजिक की बात कर रहे थे। और कहीं ना कहीं बहुत कम फिल्में ऐसी आती है जिन फिल्मों का म्यूजिक, जिन फिल्मों के नगमे, चाहे वक्त कितना ही क्यों ना गुजर जाए, लोग हमेशा याद रखते हैं और उन नगमों को गुनगुनाते रहते हैं। और साथ ही साथ बहुत कम फिल्में ऐसी होती है जिनमें कोई सीन ऐसा होता है जिसको लोग याद भी रखते हैं, पसंद भी करते हैं और हमेशा उसके हवाले से बात भी करते रहते हैं। हालांकि उसमें कुछ कभी कभार कोई सीन ऐसा भी होता है जो सही भी नहीं होता है, या फिर जिसको घर पे दोहराने की ज़रूरत नहीं होती है या फिर घर पे नहीं दोहराना चाहिए, लेकिन नौजवान या बच्चे जो है वो उस सीन को उतना पसंद करते हैं कि उसको घर पे भी करने की कोशिश करते हैं। फूल और कांटे फिल्म आपने देखी होगी और उसमें अजय देवगन का वो अंदाज देखा होगा जिसमें उन्होंने दो मोटरसाइकिल पे जो है वो पैर रखकर जो है एक सीन दिया था और वो बड़ा हिट हुआ था और आप लोगों ने बड़ा पसंद किया था। और फिर बाज़ाब्ता तौर पर लोगों को ये तलकीन करनी पड़ी, ये बताना पड़ा कि आप जो है खुद या फिर आपके बच्चे, आपके घर के नौजवान घर पे ये सारी चीज़ें ना करें, ये सीन आप रिपीट करने की कोशिश ना करें। तो फिल्मों में ऐसे भी सीन होते हैं और कभी कभार वही एक सीन, दो सीन जो है एक फिल्म को ख़ास बनाते हैं या फिर यादगार बनाते हैं। तो इस फिल्म की बात हो चली है तो चलिए इस फिल्म से एक नगमा सुनते हैं।

कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडिया व्यू 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 1:50 होने वाले हैं। आइए आकाशवाणी दिल्ली से खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 51,000 से ज्यादा लोगों को तकर्रीनामे सौंपे। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत नौजवानों को आलमी सतह पर रूशनास कराने और मौके पैदा करने के लिए दुनिया के कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बिहार हुकूमत अगले 5 वर्षों के दौरान रियासत में 1,00,000 असातिज़ा को मुलाजमत देगी। CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहान की जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 मई कर दी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। WHO ने कांगो में इबोला की बुंडी बुगियो किस्म के खतरे को बहुत ज्यादा के जुमरे में शामिल कर दिया है।

0: और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों और तंजीमों में मुलाजमत हासिल करने वाले नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्री नामे तकसीम किए। पूरे मुल्क में 47 मकाम पर इस रोजगार मेले का इनेकाद किया गया था। मुलाजमत हासिल करने वाले नौजवान जिनको पूरे मुल्क से चुना गया है वो वजारत रेलवेज, वजारत दाखिला, वजारत सेहत और आला तालीम के महकमे समेत दीगर कई वजारतों और महकमों में शामिल होंगे। रोजगार मेले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के तरक्की के सफर में शामिल होने के लिए बेकरार है। जनाब मोदी ने कहा कि मैं वाकई और मुलाजमत दस्तियाब कराने और मुल्क के नौजवानों को पूरी दुनिया से रोशनास कराने के लिए भारत दुनिया के अलग अलग मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन शराकतदार बन रहा है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: जनाब मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के अज्म के लिए हर भारतीय काम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के लिए मुलाजमत के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएस कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला में 19वां रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में 281 नए मुस्तफिदीन को तकर्री नामे तकसीम किए गए। आरसीएस कपूरथला में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने प्रोग्राम की सदारत करते हुए बताया कि रोजगार मेला एक ताकतवर कौमी सरमाया बन गया है जो बर वक्त और शफाफ मुलाजमत को यकीनी बनाता है।
2: ये हमारा देश भर में रोजगार मेला ये एक पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए। मोर देन 5 लाख यंग इंडियंस हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री 4.0, जॉब रोल्स एज डेटा इंजीनियर्स, मशीन लर्नर्स, लर्निंग इंजीनियर्स, क्लाउड स्पेशलिस्ट एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स। India is preparing our young people to provide leadership in that area.
0: बाद में उन्होंने 93 नए मुलाजमत हासिल करने वालों को तकर्री नामे सौंपे। पटियाला में मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 188 नए उम्मीदवारों को तकर्री नामे सौंपे गए। पेट्रोलियम, कुदरती गैस और सयाहत के मरकजी वजीर ममलिकत सुरेश गोपी ने तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का इफ्तिताह किया। 19वें कौमी रोजगार मेले के हिस्से के तौर पर इसका एहतमाम किया गया था। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू करदा रोजगार मेला भर्ती मुहिम से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है और इसका मकसद युवा शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति का रूप देना है। उन्होंने कहा कि तकर्रुनामे एक मुकद्दस फरीजे का आगाज है। जनाब गोपी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपनी तवानाई कौमी तामीर में इस्तेमाल करें और विकसित भारत के नस्बुलैन को पूरा करें। पार्लियामानी मूर और इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने 2047 तक विकसित भारत को अमली जामा पहनाने का तहैया कर रखा है। उन्होंने ये बात चेन्नई में आईसीएफ रोजगार मेले से खिताब करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क डिजिटाइजेशन, रोजगार के मौके, बुनियादी ढांचे और कारोबार को आसान बनाने के मामलों में तेजी से तरक्की कर रहा है। डॉक्टर मुरुगन ने बताया कि वजीर आजम

जसमीन तेजा फिल्म से आपने नगमा सुना अनुराधा पोडवाल और सुदेश भोसले की आवाजों में। आइए सुनते हैं अगला नगमा।

जैसमीन, आपने इश्क फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में यह खूबसूरत सा नगमा सुना। आपने ट्यूनिंग किया आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमे।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई औचक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई।

0: जय हिंद फौजी भाइयों, आज का दूसरी निशस्त का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आगाज में पेशे खिदमत है ये खूबसूरत सा नगमा।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना

जो दोस्तों कच्चे धागे फिल्म से आपने सुखविंदर सिंह की आवाज में ये नगमा सुना। और सुखविंदर सिंह कौन, जिनके हवाले से कहा जाता है कि जो नगमे कोई नहीं गा सकता था वो नगमे सुखविंदर सिंह गा सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब चलते चलते फिल्म का वो नगमा लाइव

न गई। लिखा गया तो लिखने वाले ने खुद ये सोचा कि इसको कौन गाएगा। उनसे पूछा गया कि इसको कौन गा सकता है, इतना मुश्किल नगमा है। और उन्होंने जो है वापस जवाब दिया था कि मुझे समझ आ गया है कि इसको कौन गा सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ सुखविंदर सिंह गा सकते हैं। तो उनकी एक अलग आवाज़ और एक एक अलग अंदाज उनका, और उस अंदाज में वो किसी भी नगमे को जो है खूबसूरत बना सकते हैं। आपने ट्यून इन किया आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन, और प्रोग्राम जारी है फौजी भाइयों के लिए।

दोस्तों, वह नगमा आपने सुना और उम्मीद करते हैं कि नगमा आपने पसंद किया होगा। और इस नगमे में भी ये कहा गया है कि चाहे हालात कुछ भी हो, चाहे किन भी हालात से गुजरना पड़े, लेकिन ऐसा हो कि मैं आपका हो जाऊं और आप मेरे हो जाए। तो कभी कभार किसी शख्स की जिंदगी में अहमियत इतनी हो जाती है कि बगैर उस शख्स के जिंदगी बेमानी नजर आती है। और यहां भी इंसान की ख्वाहिश बाज़ औक़ात इंसान के दिल और जहन को पूरी तरह काबू कर लेती है। और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कभी कभार इंसान उन हदूद को पार करता है कि इस तरह के खसारे का सामना होता है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाती। अगर आपकी जिंदगी में कभी इस तरह के हालात पेश आते हैं तो ख्याल रखा करें कि आप कहीं उस तरह की राह पे न निकल पाए जिसकी ना कोई मंजिल हो और ना ही उससे वापसी का कोई रास्ता हो। तो कोशिश ये करें कि कोई भी शख्स अगर आपकी जिंदगी में अहम होता है उसको अहमियत जरूर दे, उसकी कद्र जरूर करें, लेकिन किसी वजह से अगर वो शख्स आपकी जिंदगी से निकलता है, दूर हो जाता है, तो जिंदगी में कभी कभार दिक्कतें जरूर आती है, लेकिन हाँ, जिंदगी किसी शख्स के जाने से रुकती नहीं है।

तो फौजी भाइयों, इसी के साथ ही आज की दूसरी निशस्त का प्रोग्राम इख्तिताम पसीर होता है। लेते हैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। जय हिंद।

सभी में आप फौज भाइयों के लिए दूसरी निशस्त का प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम व्यू 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 3:50 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप खबरें समाप्त करेंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं शेख यासीन। पहले हम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ महकमों में तैनात किए गए नौजवानों में 51,000 से ज़ायद तकरीरनामे किए तकसीम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान को मनशियात के खिलाफ एक ताकतवर तहरीक दिया करार। पिछले 43 दिनों के दौरान 797 FIR दर्ज, 894 ड्रग्स स्मगलरों गिरफ्तार, 457 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द, 606 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख। और आज तुज़ को एहतिशाम के साथ मनाया जा रहा है हजरत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह का 661वां उर्स मुबारक। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ महकमों में तैनात किए गए नौजवानों में 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम किए। बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये नौजवान विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अहम रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत तरक्की के एक नए सफर पर गामजन है और पूरी दुनिया भारत के इस सफर में शामिल होने की मुतमनी है। उन्होंने इस मौके पर अपने 5 मुल्कों के गैर मुल्की दौरे की हुसूलियाबियों का जिक्र किया।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: इस रोजगार मेले के सिलसिले में कन्वेंशन सेंटर जम्मू में भी एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें डिजिटल

0: मैनेजर जम्मू विवेक कुमार मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। तकरीब में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जम्मू के चेयरमैन संजय त्यागी ने भी शिरकत की। इस दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 229 नौजवानों में तकरारनामे तकसीम किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 43 रोज पहले जम्मू से शुरू किए गए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान अब जमीनी सतह पर एक ताकतवर तहरीक में तब्दील हो गया है और यूटी की हर गली और हर कोने से ये आवाज आ रही है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी ड्रग्स स्मगलर को न बख्शा जाए। हमारे शोपियां के नुमाइंदे जानिसार अहमद ने खबर दी है कि आज शोपियां में मुनशियात मुखालिफ पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद खिताब करते हुए LG ने कहा कि इंतजामिया के साथ साथ आम लोग भी जम्मू कश्मीर से नार्को टेररिज्म को खत्म करने के लिए पुरजम है। उन्होंने कहा कि मनुष्यात हमारे नौजवान पौध को अंदर ही अंदर खोखला करके उन्हें तरक्की की पटरी से हटा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अभियान शुरू होने से अब तक 797 FIR दर्ज किए गए और 894 ड्रग्स स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 457 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए, 606 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की गई। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमत से जारी हैं और मुनशियात के ढांचे को खत्म करने नीज इस लत में फंसे नौजवानों की बाजाबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मुनशियात से मुतल LG मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारम्भ किया जाएगा।
0: जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस बिद्दत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के ताल्लुक से एक उस्ताद मनजीत सिंह गिल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: मेरी तरफ से बच्चों को यही पैगाम है कि नशा आवर चीजों से दूर रहें और अपने माशरे को बचाएं। नशा एक खतरनाक जहर है जो नौजवान नस्ल के ख्वाब, खानदानों का सुकून और माशरे का मुस्तकबल तबाह कर रहा है। मेरी सब वालदेन, नौजवानों और समाज से पुरजोर अपील है कि इस बदतरीन आदत से दूर रहें, अपने बच्चों की सही रहनुमाई करें क्योंकि यही हमारा मुस्तकबल है। हमारा फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर नशा से पाक, महफूज और रोशन माशरा तामीर करें।
0: जल शक्ति और कबायली उमूर से वजीर जावेद अहमद राना ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट की अमल आवरी का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने इस मौके पर अफसरों को हिदायत दी कि वो इस एक्ट के साथ साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में कबायली तबके में जामे बेदारी पैदा करें। चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक निजामत में बेहतरी लाने और सड़क हादसात को कम करने के लिए इख्तियार की जा रही हिकमत अमली और सिफारिशात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरों पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक निजाम आसान बनाने, नीज हादसात को कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। बुलंदपाया वली कामिल और कश्मीर में बानी इस्लाम हजरत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह का 661वां उर्स मुबारक आज नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनकी ज़ियारतगाह वाका खानकाह मौला श्रीनगर में दुरूद व अज़कार और खतमातुल मुअज़्ज़मात की मजालिस आरास्ता हुई।

0: तालीम को जदीदियत से हमकिनार करने के साथ साथ इसमें जदीद तकाजों के मुताबिक बदलाव लाया जाए। इस तालीम से दुबई में मुकीम एक बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता तालीमदान और सस्टेनेबिलिटी की पैरोकार डॉक्टर हलीमा सादिया ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: जैसे अगर हम बात करें सस्टेनेबल एजुकेशन की, तो एक बच्चा तालीम क्यों हासिल करता है, उसका अगर हम मकसद देखें तो मकसद यही होता है कि उसे फ्यूचर की लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं। अब अगर एक बच्चा पढ़ने लिखने के बावजूद, डिग्री हासिल करने के बावजूद, उसे जो लाइफ की बेसिक नीड्स है अपनी, वही नहीं पूरी करनी आती है, ये सब तालीमात हम अपने स्कूलों में नहीं देते हैं, क्योंकि हमने जोड़ रखा है उसको सिर्फ रोजगार से, और हम सोचते हैं कि एक डिग्री देके, कागज का टुकड़ा देके हम उसको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिठा देंगे, वहां पे वो पास कर जाएगा और कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल जाएगी। तो इस नजरिए को तब्दील करके हमें उसे रियल लाइफ के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है।
0: जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने यूटी के कॉलेजों में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कहा है कि वो दाखिले के लिए कॉलेज ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि उन्हें किसी न किसी कॉलेज में दाखिला मिल सके। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने इस तालुक से कहा,
2: आज से जो हम रैंक दिखा रहे हैं तो उन स्टूडेंट को समझ आएगा जिनकी रैंक नीचे होगी, इसीलिए मेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक डायरेक्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ख्याल रखें कि वो अपनी चॉइसेस बढ़ा दें अभी से, क्योंकि उनकी चॉइसेस ओपन है, या जितने प्रोग्राम चूज करना चाहिए जितने कॉलेज में वो कर सकते हैं, ये चॉइसेस उनको ओपन रहेंगी 27 तक। तो मेरी सब स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि वो इमीडिएटली देखें अपना रैंक, और रैंक से उनको समझ आएगा कि उनको क्या पॉसिबिलिटी इस कॉलेज में एडमिशन मिलने की। हमने उनको अपडेट करने के लिए व्हाट्सएप चैनल एक बनाई है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है उनको पहुंचाएंगे, लेकिन रैंक लिस्ट डेली बेसिस पे आज से अपडेट हो जाएगा।
0: और अब रेल से मुतालिक ये खबर, जम्मू और श्रीनगर के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी जम्मू कश्मीर के सियासी और इक्तिसादी मंजरनामे के लिए कलीदी अहमियत की हामिल साबित हो रही है और लोगों को सफर की बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब हो रही हैं। नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू डिवीजन के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल ने कहा कि पिछले 22 दिनों के दौरान इस रेल के जरिए 1 लाख से जायद मुसाफिर ने सफर किया और जदीद सहूलियात से लैस ये रेलगाड़ी मकबूल आम हो रही है और आम लोग इससे काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 93 पैसे का इजाफा किया गया है, ये पिछले 10 दिनों के दौरान इनकी कीमतों में तीसरा इजाफा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा सपहर 4:20 पर पहाड़ी में नष्ट होगा। खुदा हाफिज।
3: सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
4: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मेरे वे 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है पहाड़ी प्रोग्राम।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर तो अज दा पाड़ी प्रोग्राम किनका में हां तुस्ती मेजबान गजाला मुमताज सामीन तुसा सारेयां को प्रोग्राम भी जी आयां को आखती हां हरकत आओ ते प्रोग्राम दी शान बताओ। सामीन असा सारेयां को एहतियात करना बहुत जरूरी है। अजकल असी दिखते हां कि पानी जड़ा आ पानी बिच काफी ज्यादा आलूदगी है। असां को चाहिदा कि ग्राम बिच शहर बिच असी जिथा भी रहवा असी पानी उबाल का पीवा। अपने बच्चों को खासतौर अपने निक्कियां बच्चों को तो बुजुर्गों को पानी जड़ा है उबाल का देवा। असते अंदर एक ऐसी आदत है कि असी आखते हैं उबाल का पानी जड़ा होंदा वो पीते नहीं गेंदा वो गर्म रहिंदा। अजकल ऐसा भी हो सकता कि गर्मियों का मौसम है पानी असी उबाल सा ते नाले वो पानी फिर असी राती भी उबाल कर रख सकते हैं। सुबह तो नहीं वो ठंडा हो सकता फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। उस नाल असां को कोई भी अजाब ना हो सीगा पीते बिच। इस नाल अस्ती जड़ी सेहत आ सेहत बिल्कुल

0: साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: इस रोजगार मेले के सिलसिले में कन्वेंशन सेंटर जम्मू विच भी एक तकरीब मुनाकद हुई, जिस विच डिविजनल रेलवे मैनेजर जम्मू विवेक कुमार मेहमा ने खसूसी की हैसियत नाल मौजूदा से। तकरीब विच रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जम्मू के चेयरमैन संजय त्यागी सुन भी शिरकत की। इस दौरान जम्मू कश्मीर थी ताल्लुक रखने वाले 229 नौजवानों विच तकरारनामे वंडे गए। जम्मू कश्मीर को मुनाशियात की लानत थ्यों आजाद करने वास्ते 100 तिहाड़ियां ते मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां जारी हैं। मुनाशियात के ढांचे को खत्म करने ते इस लत विच फसे नौजवानों की बाज आबादकारी वास्ते हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मुनाशियात के मुतालिक लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का सुनिया।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर विच नौजवानों को इस बिदथियों दूर रखने वास्ते लाजमी इकदामात दे तालुक नाल एक उस्ताद मनजीत सिंह गिल सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर दे नाल गल करदे होया आख्या।
3: मेरी तरफ से बच्चों को यही पैगाम है कि नशा आवर चीजों से दूर रहें और अपने माशरे को बचाएं। नशा एक खतरनाक जहर है जो नौजवान नस्ल के ख्वाब, खानदानों का सुकून और माशरे का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। मेरी सब वालदेन, नौजवानों और समाज से पुरजोर अपील है कि इस बदतरीन आदत से दूर रहें, अपने बच्चों की सही रहनुमाई करें, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबल है। हमारा फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर नशा से पाक, महफूज और रोशन माशरा तामीर करें।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन आख्या है जी 43 तिहाड़ियां तिहाड़ी पहला जम्मू थ्यों शुरू किए गए 100 तिहाड़ियां ते मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान हुण जमीनी सतह ते एक ताकतवर तहरीक विच तब्दील हो गया है। ते यूटी दी हर गली ते हर कोने थ्यों ये आवाज आ रही है जे जम्मू कश्मीर विच किसी भी ड्रग समगलर को ना बख्शे गए है। अस्ते शोपियां दे नुमाइंदे जान निसार अहमद सुन खबर दिती है जे अज शोपियां विच मुनाशियात मुखालफ पद यात्रा को चंडी दस के विद्या करने थ्यों पिछे खिताब करदे होया लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन आख्या जे इंतजामिया दे नाल नाल आम लोग भी जम्मू कश्मीर थ्यों नार्को टेरोरिज्म को खत्म करने वास्ते पुर अजमन। उन्होंने सुन आख्या जे मुनाशियात अस्ते नौजवान नस्ल को अंदर ही अंदर खोखला करके इन्हों को तरक्की दी पटरी थ्यों हटा रहा है। उन्होंने सुन मजीद आख्या जे अभियान शुरू होने थ्यों अजे तोड़ी 797 FIR दर्ज किए गए, 894 ड्रग समगलरों को गिरफ्तार किए गया है। इस दे अलावा 457 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करके 606 गड्डियों की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की गई है। बुलंद पाया वली कामल ते कश्मीर बिच बानी इस्लाम हज़रत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह दा 661वां उर्स मुबारक अज नियायती अकीदत एहतराम दे नाल मनाई जा रहा है। इस सिलसिले बिच उन्हां दी ज़ियारत गाह वाकिया खानका मौला श्रीनगर बिच दुरूद अज़कार ते खत्मातुल मौज़मात दी मजालिस आरास्ता हुईयां।

0: आप समाप्त कर रहे थे शीना प्रोग्राम पेशकश समीना शाह। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 5 बज रहे हैं। एक वक्फे के बाद आप सुनेंगे आज का गोजरी प्रोग्राम।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी श्रीनगर ते आज को गोजरी प्रोग्राम सुनना सामीन ना थारा मेजबान शौकत अमन बोकड़ा का तरफ ते प्यार खलूस ते ताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस उम्मीद के नाल कि तम खैर सुख नाल वेंका ते अपना मन पसंद गोजरी प्रोग्राम सुन रहे वेंका। प्रोग्राम का शुरू मा नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लिया।

जिया सामी नाम कवाली सुन रहा था। सामी ने कराम तमना दस तो चलूँ कि इसराफ ते फजूल खर्ची जिड़ी है ना या हर त्रया ते मारे वास्ते अच्छी साबित नहीं होती। इसराफ ते फजूल खर्ची बहुत बड़ो गुनाह है और इसराफ ते फजूल खर्ची के नाल इंसान ना हासिल कुछ नहीं होता बल्कि हर त्रया ते नुकसान ते खसारा हुआ है। जब हम फजूल खर्ची करा का ते फजूल खर्च करण के पर अल्लाह तबारक व ताला भी मारे पर राजी नहीं होता ते हम मुख्तलिफ किस्म की अजमाइशों के बीच फंस जा। फजूल खर्च करण पर क्यामत के दिन मारा ते इस गल की पूछ हुआ कि अगर एक इंसान ना अल्लाह तबारक व ताला ने दौलत दीती है ते उसको सही इस्तेमाल उस इंसान ते क्यों नहीं होयो, उस दौलत ना सही राह में क्यों नहीं लायो, उस दौलत ना उस पैसा ना दिखावा वास्ते इस्तेमाल क्यों कियो, उस दौलत ते उस पैसा के नाल उसने अपना गरीब हमसाया ना तकलीफ क्यों दीती, उस दौलत ते उस पैसा के नाल इस इंसान ने किसी गरीब शख्स ना दुख क्यों पहुंचायो, किसी को हक क्यों मारियो। जी सामीन इस सारा काई की आखिर के पर भी और इस दुनिया के बीच भी पकड़ जड़ी है ना वह जरूर हुआ कि इस वास्ते आमना कदे भी फजूल खर्ची जड़ी है वह नहीं करनी और हमेशा इसराफ ते फजूल खर्ची ते बच के रहना है। तमना दस्तो चलो कि आजकल हर ग्रां के बीच तम देखें ब्याह शादी जड़ी है ना वे चले लगी हुई और मारा ब्याह शादी अम्मा हम देख रहे हैं कि हर आए दिन काय ना काय नोई बिदत जड़ी है वाह मारा ब्याह शादी में हो रही है। नवा नवा तरीक़ा के नाल ब्याह शादी हो रहा है, नवा नवा रस्म जड़ा है वे ब्याह शादियों में हो रहा है। लोगों ना दसन वास्ते दिखावा वास्ते तम देखो कितनी फजूल खर्ची हो रही है, किस हद तक मारा ये आजकल का ब्याह हो रहा है, मारो समाज मारो माशरो इस वक्त किन किन बिदात के बीच फंसे हुआ है। हम सारा ने इस चीज़ के बारे सोचना है कितनी फजूल खर्ची आज का वक्त में मारा ब्याह शादी में लगी भी, जिसको असर बिल वास्ता ते बिला वास्ता हर अहम शहरी के ऊपर पै रहे हुए। ऐसे मौजू पर अगर थारे ना गल करा का ते इत्ते सामिनी कराम थारे वास्ते हमने सियारफी ला के रखी हुई है। मोहम्मद इकबाल मलंगामी की आवाज़ है, आ सुन लिया।

रंग तै रूप ये दुनिया का, हुस्न जवानियां का दिनों चार सारा।

ਤੇ ਉੜਿਓ ਹਵਾ ਮਾ ਤਖਤ ਪੈਗੰਬਰੀ ਕੋ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਰੇ ਆ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸਾਰਾ।

जी असमी नाम सियारफी सुन रहा था ते हम गल कर रहा था अपना ब्याह शादियां में मुख्तलफ रस्म जड़ी हैं बिदत जड़ी हैं उनके बारे हम देखा कि आज हर ब्याह में हर तरह की बिदत जड़ी हैं वे अपनाई जा रही हैं हर किस्म की रस्म जड़ी हैं वे अपनाई जा रही हैं। ये रस्म पूरी करण ना आमना कोई फायदा नहीं हो से बल्कि हर तरह से आमना इसको नुकसान हुए को जद एक घर को मालिक दिखावा वास्ते दसन वास्ते या फिर मजबूर होके इन ब्याह शादियों में ज्यादा से ज्यादा खर्च करे को ज्यादा इसराफ करे को और नवा नवा तरीका जो है वे अपनावे को ते एक अमीर शख्स वास्ते यू करना काई बड़ी गाल नहीं होती है लेकिन इसकी जद में एक गरीब शख्स आ जाए आप देखा कि कोई भी माँ बाप जिड़ो है वो अपनी लाडली या अपना लाडला वास्ते कदे भी खासकर इस ब्याह का मौका के पर कदे भी उसना नाराज नहीं करना चाहता और उसकी खुशी वास्ते एक गरीब शख्स कुछ ना कुछ करने के पर तैयार हो जाए जद एक लाडली अपना बाप ना कह कि फलाना ब्याह के बिच आज उतनो दाजगी हुआ है फलाना ब्याह में आज यू कम हुआ है ते जहर जी गल वह इन रख के लगी वे अपना बाप ना अपनी माँ ना अपना भाई ना तवे फिर मजबूर हो के इसकी इस ख्वाहिश ना पूरी करने वास्ते के करें कर्ज पटें जमीन बेचें उधार सुधारियाँ दर लोगों ते आने ते आखिर के पर पूरी जिंदगी पूरी उम्र इन्हें ना यो कर्ज जो अपना सिर ते लड़ो पै और ये मजबूर हो जाएं कि अगर हम ऐसा नहीं कर सा तो हमारे ना लोग ठठा करेंगा हम सारा ना नहीं सद सा तो हमारे ना लोग ठठा करेंगा हम इस तरीका ना डीजे जुड़ो है नहीं बजा सा ते हम कमतर समझा जा का हम फलानी रस्म नहीं कर सा ते आमना लोग को के समझा को ये चीज़ जुड़ी है ना देखा देखी के बिच सारों को जो है और जद

हम इन सारा कायना मद्दे नज़र रख के हर ग्रां के बिच एक कमेटी बना के सा जितना भी जी शहूर मारा लोग हैं मारा नौजवान हैं वेगर मिल के इस चीज़ ने अपनावे का और हर डेरा के बिच अगर यो अमल किया जाएगा जिस भी कार में शादी हुआ लगी हुई वेगर सादगी के ना इस काम ना करें का ते दूजा भी यू ही तरीका अपनावे का। इस वास्ते हम सारा को यो फर्ज बने कि हम ऐसा न करा ये बिदात अपना ब्याह में न करा और इस ना आसान ते आसान करा क्योंकि निकाह ना जितना आसान बनावा का ना ते इसके बिच उतनी मिठास पैदा हुआ की और अल्लाह तबारक व ताला भी इस चीज के बिच राजी हुआ को ते अगे चल के अजदवाजी जिंदगी जड़ी है ना वह भी खुश ते खुशहाल रहेगी। और तम देखें कि जिस शादी ब्याह में इसराफ हो या फिर ऐसा मामला हो ते अगे चल के किसी न किसी मोड़ के पर वे मियाँ बीवी भी किसी हद तक खुश नहीं रहता। इन चीज़ों ते इंसान ना पछताणो पे ऐसा हमला कदी भी नहीं करना चाहिए। सामी निकरा मारी गल कितने लंबी ना हो जाए अगे आमने थारे वास्ते सैफल मलूक ला के रखे हुए आओ सुन लिया।

जी सामिन, इसके नारी महाराज का गोजरी प्रोग्राम का वक्त मुके लगोवा। प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी, ते अपना मेजबान शौकत अमन बोकड़ा ना। अगली मुलाकात तुरी दियो इजाजत। अच्छा जी, रब रख।

0: खदेड़ कर ही दम लेंगे। सोपहिया की मिट्टी से इस वादे के साथ आज हम दशकों की खामोशी भी तोड़ना चाहते हैं। भय और स्टिग्मा की वजह से वर्षों से चुप परिवार अब खुल करके कहने लगे हैं कि आतंकवादी पड़ोसी मुल्क की सब पर चलाए जा रहे जहर के इस कारोबार को कश्मीर घाटी में चलने नहीं दिया जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर ने मनशियात की लानत तो छुटकारा दुआने वास्ते 100 तैड़ों पर मुश्तमल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मी शदमत के नाल जारी ते मनशियात का ढांचा न खत्म करन और इस लत में फंसे नौजवानों की बाजबदकारी वास्ते हर मुमकिन इकदाम किया जा रहे हैं। मनशियात मुतल एल जी मनोज सिन्हा को पैगाम।
0: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर में नौजवानों ने इस बिदत तो दूर रखने वास्ते लाजमी इकदाम का ताल्लुक के नाल एक उस्ताद मनजीत सिंह गिल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हुआ क्यों।
2: मेरी तरफ से बच्चों को यही पैगाम है कि नशा आवर चीजों से दूर रहें और अपने माशरे को बचाएं। नशा एक खतरनाक जहर है जो नौजवान नस्ल के ख्वाब, खानदानों का सुकून और माशरे का मुस्तकबल तबाह कर रहा है। मेरी सब वालदेन, नौजवानों और समाज से पुरजोर अपील है कि इस बदतरीन आदत से दूर रहें, अपने बच्चों की सही रहनुमाई करें क्योंकि यही हमारा मुस्तकबल है। हमारा फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर नशा से पाक, महफूज और रोशन माशरा तामीर करें।
1: जल शक्ति तक कबाली अमूर का वजीर जावेद मंदराना ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स एक्ट की अमल आवरी को जायजा लियो। वजीर मौसूफ ने इस मौके पर अफसर ने हदायत दी कि वे इस एक्ट के नाल नाल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का बारा में कबायली तबका में जामिया बेदारी पैदा करें। चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक निजाम में बेहतरी आन ते सड़क हादसात ना कट करने वास्ते एहतियात की जा रही हिकमत अमली ते सिफारशात को जायजा लियो। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरों पर जोर दिया कि वे ट्रैफिक निजाम आसान बनान और हादसात ना कट करने वास्ते हर मुमकिन इकदाम करें। ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी का मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR ते DTH पर भी सुन सकते। बुलंद पाया वली कामल ते कश्मीर मां बानी इस्लाम हजरत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह को 661वां उर्स मुबारक आज नहायती अकीदत ते एहतराम के नाल मनाई जा रही है। इस सिलसिला में उनकी ज़ियारतगाह वाका खानकाए मौला श्रीनगर मां दुरूद व अज़कार ते खत्मातुल मौज़ूमात की मजालस आरास्ता हुई।

0: احرام بدھ گئے پورے تیڑو منہ کا ٹینٹا میں گزاریں گا ناؤز الحج نہ نماز فجر تو بعد آزمین وقوف عرفات واسطے میدان عرفات روانہ ہو جائیں گا۔ اسلامک ریلیف ٹرسٹ کشمیر تے جموں کشمیر اردو کونسل کا اہتمام کے نال سری نگر ماں استقبالی عید الاضحیٰ کا سلسلہ ماں ایک تقریب منعقد ہوئی جس کی صدر ڈاکٹر سید شمس الرحمان نے کی، جبکہ جی این وار تے مولوی محمد اشرف نے مہمان حسوس کی حیثیت کے نال شرکت کی۔ اس موقع پر ظہیرۃ الملوک حضرت شاہ ہمدان کی تصنیف کردہ کتاب کی کشمیری ترجمہ کی رسم رونمائی بھی انجام دیتی گئی۔ یوں ترجمہ اسلامک ریلیف ٹرسٹ کشمیر کا چیئرمین ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورا نے مکمل کی ہوئے۔ اج شعبہ تعلیم سماج ماں ایک مثبت بدلاؤ آن ماں کلید رول ادا کر رہی ہے، تاہم وقت کی ضرورت ہے کہ شعبہ تعلیم نہ جدیدیت نال ہمکنار کرن کے نال نال اس نہ جدیدیت تقاضوں کے مطابق بدلاؤ آنے جا سکے۔ جموں کشمیر کا ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے یوٹی کا کالج ماں داخلہ کا خواہش مند افیدواروں تو کیا ہے کہ وہ داخلہ واسطے کالج آپشن کو زیادہ تو زیادہ استعمال کریں تاکہ انہیں کسی نہ کسی کالج ماں داخلہ مل سکے۔ جموں تے سری نگر کے بچکار چلن والی وندے بھارت ایکسپریس ریل گڈی جموں کشمیر کا سیاحتی تے اقتصادی منظرنامہ واسطے کلیدی اہمیت کی حامل ثابت ہو رہی ہے تے لوکاں نال سفر کے بہترین سہولیات دستیاب ہو رہی ہیں۔ ناردرن ریلوے کے جموں ڈویژن کا سینٹرل ڈویژن کمشنر نے کہو کہ پچھلے 22 تیڑنگ کے دوران اس ریل ذریعے کے تحت 1,00,000 تو زیادہ مسافروں نے سفر کیا ہے۔ اس کے نال ہی خبروں کو یو بلٹن مکتو آکاشوانی سری نگر تو اگلو بلٹن 6:05 پر سننا نہ بھولیوں۔ آمنا دیو اجازت، خدا حافظ۔
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग

0: 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर शबज 5 मिनट सपद सामिन पेश गर्मी बान हिंद खतर अजुक प्रोग्राम।

0: Akashvani Srinagar. अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के समय को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं 50,000 से ज्यादा नौजवानों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तकरीर नामे तकसीम किए। वजीर जिला तो बागबानी जावेद अहमद डार का ऐलान, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जल्द लागू की जाएगी। उर्स शाह हमदान के मौके पर तकारीब का एहतमाम। और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम फिर एक बार शोपियां पहुंची। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ,
4: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
5: 9018074333।
6: 9018074333।
7: आज आई मैंने मेडिकल रिपोर्ट, तो मैंने शरीर से विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस,
8: तो क्या शक्ल फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
7: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
8: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्रावने यवा, विटामिन ए छो साने इम्यूनिटी बढ़ावान, तो विटामिन डी छो अड़जे मजबूत करान, दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
7: मगर ये है आज सठा द्रो?
8: हाँ ना ना, सुई कम मत मज मुशक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
9: पनुन तो पन्ने आयाली जिंदगी बनाई सेहत मंत, प्लस एफ ऑफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयो बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसाइलन है जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in पर राइट।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
11: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
12: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना, पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
11: नहीं माँ, ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्ड

0: चिल्ड्रन आ रहे माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
1: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
0: माँ, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
1: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
0: माँ, अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
1: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
0: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
1: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
0: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
3: सरबीन ऐप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों में 51,000 से ज्यादा नौजवानों को तकरीरनामे तकसीम किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए मौसूफ ने कहा कि भारत के नौजवान 2047 तक विकसित भारत के ख्वाब को पूरा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों में सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। ये रोजगार मेला मुल्क भर के 47 मकामात पर मुनाकिद हुआ, जबकि हुकूमत के मुताबिक अब तक तकरीबन 12 लाख तकरीरनामे तकसीम किए जा चुके हैं। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का खैर मकदम करते हुए कहा कि भारत और अमरीका के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुसलसल मजबूत हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म मौसूफ ने अपने बयान में कहा कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के बीच दोतरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरतेहाल और आलमी अमन सलामती से मुतालिक अहम उमूरात पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका जमहूरी अकदार, इकतसादी तआवुन, दिफा, टेक्नोलॉजी, तजारत और आलमी इस्तेहकाम के मुश्तरक अहदाफ के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के बकौल, दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि बदलती हुई आलमी सूरतेहाल में बाहमी इश्तराक और करीबी राबिता निहायत जरूरी है। सेमिनार में जिला बागबानी के वजीर जावेद अहमद डार ने शिमाली कश्मीर के कई ऐसे इलाका जात का दौरा किया जो हालिया जालाबारी से नुकसान ज्यादा हुए। वजीर के रफियाबाद के मुतादिद देहात में परसों शाम और कल दिन में भारी जालाबारी के नतीजे में मेवे बागात और धान की पनीरी के साथ साथ सब्जियों की फसल को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। आज के दौरे के दौरान वजीर जिला बागबानी ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर सरकार अगले 1.5-2 माह के अंदर ही क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू करेगी। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू किए जाने का मुतालबा पिछले कई बरस से मुसलसल किया जाता रहा है ताकि खराब मौसमी सूरत हाल के नतीजे में किसानों को होने वाले नुकसान की माकूल भरपाई हो सके। एक रिपोर्ट के साथ करामत कयूम।
4: क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को 2 माह के अंदर अंदर यहाँ पर लागू किया जाएगा, जिसके लिए इस साल की बजट में हुकूमत मखसूस की गई है। इन ख्यालात का इजहार आज वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने हालिया दिनों जालाबारी से मुतासर रफियाबाद के कुछ देहात के दौरे के दौरान किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हुआ है और जून के महीने में इसकी ओपनिंग है और 1-1.5 महीने में ये मरहला पूरा होगा और यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू होगी। वजीर मौसूफ ने कहा इसके अलावा हुकूमत मरकजी सरकार के साथ मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम को यहाँ पर लागू करने के लिए मरकजी सरकार से राबिते में है, जिससे कि हमारे ग्रोवर्स को मेवे की अच्छी कीमत वसूल होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत की गई है कि वो जमीनी सतह पर जाकर हालिया तालाबारी से हुए नुकसान का जायजा लें ताकि जमींदारों को बर वक्त रिलीफ दिया जा सके।
5: कहना कि पिछले कई दिनों से जो ये जो मौसमी हालात बदल रहे हैं उसकी उसकी जद में जो है इस वक्त पूरा कश्मीर है और जम्मू के कुछ एरियाज भी है जहां रेगुलरली बारिशें हो रही है और बारिशों के साथ साथ जो है जालाबारी भी होती है और इससे काफी जो है हमारे फसल को डैमेज हुआ है, हॉर्टिकल्चर में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। और चूंकि हमारे पास अभी प्रोविजन जो होते हैं वो SDRF में होते हैं जिसके तहत लोगों को हम असिस्ट करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, रिलीफ देते हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट ने जो है वो कल से ही कोशिश करी है कि हर जगह जाने की और असेसमेंट देने की। जब वो फाइनल असेसमेंट हो जाएगी उसके बाद इनको रिलीफ दिया जाएगा। साथ साथ में हमारी कोशिश ये भी है कि हम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को हम लोग पाई तक भी

0: तक पहुंचा है। जैसे मैंने कहा कि 1 जून की उसकी बिडिंग की जो है ओपनिंग है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अगले 1-1.5 महीने के अंदर वो सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा इंश्योरेंस स्कीम का, और उसके बाद वो यहाँ लागू की जाएगी। उसके लिए हमने बजटरी प्रोविजन रखे हैं इस साल के लिए, जो प्रीमियम हमको भरना पड़ता है स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना भरेगा, हम स्टेट भरेंगे, और फिर फार्मर्स का भी शेयर कुछ रहेगा, जो अगले 1-1.5 महीने में वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद जो यहाँ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू होगी।
1: यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कल रफियाबाद के निसफ दर्जन से जायद देहात में शदीद तालाबारी हुई, जिससे मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुँचा, जिनमें हिप डांगरपोरा, लासर, चतलोरा, हदीपोरा, छिटहामा, माचेपोरा, सरीपारा, बुडन और दीगर इलाके शामिल हैं। पिछले एक हफ्ते से जिले बारामूला में टंगमर्ग, पट्टन, कैरी, संग्रामा, कंडी बारामूला, कस्बे बारामूला, सोपोर के इलाकों में भी शदीद तालाबारी से जहां सब्जी की क्यारियों, अखरोट की फसल को नुकसान पहुंचा, वहां मेवा बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस दौरे के दौरान वजीर मौसूफ के हमरा डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर भी थे। इधर मेंबर असेंबली सोपोर इरशाद गुलाम रसूल कार ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतल्लिका महकमों की टीमों को तालाबारी से मुतासरा इलाकों में नुकसान का तखमीना लगाने के लिए रवाना किया जाए, और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर किसानों को माकूल मुआवजा दिया जाए।
2: करामत कयूम की रिपोर्ट आपने सुनी। आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अख्ताम पर नशा मुक्त पद यात्रा की गई। तकरीब की सदारत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। गौरतलब है कि शोपियां जिले में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत मुनक़द की जाने वाली ये दूसरी तकरीब है। तकरीब से खिताब करते हुए एलजी मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर जिले में अवाम ने कस्त कर रखा है कि वो सांझी कोशिशों से नशे की बिद्दत को नेस्तनाबूद करके ही दम लेंगे। एक रिपोर्ट के साथ शोपियां से फयाज जवानी।
3: जिला शोपियां में बनिशात के खिलाफ जारी नशमुक्त अभियान आज एक अवामी तहरीक की सूरत इख्तियार कर गया, जब हजारों लोगों ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की कयादत में मुनक़दा अजीमुशान पद यात्रा में शिरकत करके मनिशात के खिलाफ मुतहिद होने का आजम दोहराया। बटपुरा बस स्टैंड से शुरू हुई इस तारीखी मेगा पद यात्रा में केवल सोसाइटी, तजारती उजमनों, सरकारी मुलाजमी, तालीमी इदारों के तलबा, मुख्तलिफ रजाकाराना तंजीमों और आम लोगों की गैर मामूली शिरकत ने इस बात का वाजिया पैगाम दिया कि शोपियान की आवाम मनिशात जैसी समाजी बुराई के खात्मे के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो चुकी है। वाजह है 14 मई को बटपुरा स्टेडियम में मुनक़दा एक अवामी रैली के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शोपियान के आवाम से अपील की थी कि वो 23 मई को मुनक़दा होने वाली पद यात्रा में भरपूर शिरकत करके इस मुहिम को कामयाब बनाए, और आज शोपियान की आवाम ने इस अपील का जबरदस्त जवाब देते हुए बड़ी तादाद में शिरकत की और नशमुक्त अभियान को एक मजबूत अवामी बेदारी मुहिम में तब्दील कर दिया। पद यात्रा बटपुरा बस स्टैंड से शुरू होकर जिले के मरकजी बाजारों और अहम शाहराओं से गुजरी, जहां लोगों ने इस मुहिम के हक में नारे बुलंद किए और मनिशात के खिलाफ मुतहिद होकर लड़ने की आजम का इजहार किया। कबाली तबकों से वाबस्ता अफराद ने डोल बजाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस्तकबाल किया, और यात्रा के दौरान पूरा जिला हेडक्वार्टर एक मुनफरद मंजर पेश कर रहा था, जबकि अवामी जोश खरोश काबिल दीद था। बटपुरा बस स्टैंड पर मुनक़दा एक बड़े और अजीमुशान अवामी इजतमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि आज से तकरीबन 43 दिन कबल 11 अप्रैल को शुरू की गई नशमुक्त अभियान मुहिम अब एक अवामी तहरीक बन चुकी है, और जम्मू कश्मीर के हर जिला, हर शहर और हर गाँव से मुख्तलिफ तबका फिक्र से वाबस्ता लोग उसके साथ जुड़ चुके हैं, ताकि जम्मू कश्मीर से मनशात और नार्को टेररिज्म का मुकम्मल खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मनिशात की लत नौजवानों को तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के रास्ते से भटका रही है, जबकि नशे के कारोबार से हासिल होने वाली रकम दहशतगर्दी के लिए हथियार खरीदने में इस्तेमाल होती रही है, और इन्हीं हथियारों से बेगुना कश्मीरियों का खून बहाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि स्मगलरों ने नौजवान नस्ल की जिंदगियां तबाह करके अपनी काली सल्तनत कायम की है, तहम इस काली सल्तनत को जमीन बोझ करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस काबिल सताइश कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नार्को टेररिज्म से वाबस्ता अनासिर बरसों से सरहद पार स्मगलिंग को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं, ताकि पूरे समाज को कमजोर किया जा सके। उनका कहना था कि एक तरफ मनिशात के पैसों से दहशतगर्दी को फरोग दिया गया, जबकि दूसरी जानब शहरों और देहात में सरगर्म स्मगलर और पेडलर्स माशरे की रूह को जख्मी कर रहे हैं। मैडम सुधा।

0: जम्मू कश्मीर के आवाम बिलखसूस नौजवानों खवातीन बुजुर्गों सिविल सोसाइटी समाजी कारकुनों और मजहबी
1: से ज्यादा नार्को पैलेसेस को मिट्टी में मिला दिया गया। 101 नार्को पैलेसेस को पुलिस ने अटैच कर लिया है। करोड़ों रुपए की अन्य मिल्कियत अटैच की गई है। 457 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। 116 ड्रग स्मगलर्स के पासपोर्ट कैंसिल करने की सिफारिश की गई है। 606 से ज्यादा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का काम पुलिस के रिकमेंडेशन पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। भारी मात्रा में ट्रक जब्त की गई है। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में मिलाकर लगभग 5641 ड्रग स्टोर्स की भी जांच की गई है और इनसे 268 ड्रग स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। 6 ड्रग स्टोर्स के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। ऐसे तमाम आंकड़े दर्शा रहे हैं कि ड्रग के सप्लाई चेन को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स की नीति अपनाकर हम सब काम कर रहे हैं। जिस तरह से लोग स्वतः स्फूर्त होकर के स्पॉन्टेनियस तरीके से इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं।
0: उस मौके पर शोपियां और जरदार के मेंबरान ने सफरी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ADGP सियाड़ी IG कश्मीर DIG बराई जनूबी कश्मीर डिप्टी कमिश्नर शोपियान और SSP शोपियान के अलावा सिविल व पुलिस निजाम के आला तरीन अफसर भी मौजूद थे। पूरे जिले में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे।
2: नशामुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत शोपियां में तकरीब का एहतमाम जिसकी क्यादत जिसकी सदारत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। फयाज वानी की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
3: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
4: सामीन, हम आपको बता दें कि ईद उल अजहा के सिलसिले में आज रात 9 बजे हमारा मकबूल आम प्रोग्राम पेश होगा हम सफर। मौजू है कुर्बानी के आदाब व अहकाम। आज आप इसकी दूसरी किस्त सुनेंगे। सामीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूह रवा हैं मौलाना फैयाज अहमद जरू साहब दामत बरकातहुम और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना ना भूलें प्रोग्राम हम सफर आज रात 9 बजे।
5: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल की जानिब से तालीमी साल 2026-2027 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले का ऐलान किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बराए पोस्ट ग्रेजुएशन 2026 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोग्रामों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि दाखिले के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। मजीद तफसीलात के लिए www.cukashmir.ac.in पर जाएं या दफ्तरी औकात में 9469847277 पर राबिता कायम करें।
6: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समय आज बुलंद पाया वली सूफी बुजुर्ग और कश्मीर में इस्लाम के बानी शाह हमदान हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कश्मीर के आवाम को मुशर्रफ ब इस्लाम करने के लिए जो खिदमात शाह हमदान ने अंजाम दी हैं वो हर एतबार से काबिल कद्र और गैरमामूली अहमियत के हामिल हैं। इसी के साथ साथ कश्मीर में मुतअद्दिद फनून को मुतारिफ कराने का सेहरा भी शाह हमदान के सर है। आज उर्स शाह हमदान के मौके पर वादी में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर की तारीखी खानकाह मौला में मुनक्किद हुई, जहां कल नमाज मगरिब के बाद से ही जायरीन की आमद शुरू हुई। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नायकू।
7: بلند پایا ولی کامل، محسن کشمیر، بانی اسلام فل کشمیر، حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی، المعروف حضرت شاہ حمدان رحمت

0: ከበርናም ወጣንት ኸዳ ሐፊዝ
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ महकमों में तैनात किए गए नौजवानों में 51,000 से ज़ायद तकर्रुरनामे किए तकसीम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान को मनशियात के खिलाफ एक ताकतवर तहरीक दिया करार। पिछले 43 दिनों के दौरान 797 FIR दर्ज, 894 ड्रग स्मगलर गिरफ्तार, 457 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द, 606 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मंसूख। और आज तुज़ एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है हजरत मीर सईद अली हमदानी का 661वां उर्स मुबारक। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ महकमों में तैनात किए गए नौजवानों में 51,000 से ज़ायद तकर्रुरनामे तकसीम किए। बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये नौजवान विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अहम रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत तरक्की के एक नए सफर पर गामजन है और पूरी दुनिया भारत के इस सफर में शामिल होने की मुतमनी है। उन्होंने इस मौके पर अपने 5 मुल्कों के गैर मुल्की दौरे की हुसूलियाबियों का जिक्र किया।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: इस रोजगार मेले के सिलसिले में कन्वेंशन सेंटर जम्मू में भी एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें डिविजनल रेलवे मैनेजर जम्मू विवेक कुमार मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। तकरीब में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जम्मू के चेयरमैन संजय त्यागी भी ने भी शिरकत की। इस दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 229 नौजवानों में तकर्रुरनामे तकसीम किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 43 रोज पहले जम्मू से शुरू किए गए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान अब जमीनी सतह पर एक ताकतवर तहरीक में तब्दील हो गया है और यूटी की हर गली और हर कोने से ये आवाज आ रही है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी ड्रग स्मगलर को न बख्शा जाए। हमारे शोपियां के नुमाइंदे जानिसार अहमद ने खबर दी है कि आज शोपियां में मुनशियात मुखालिफ पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद खिताब करते हुए LG ने कहा कि इंतजामिया के साथ साथ आम लोग भी जम्मू कश्मीर से टेररिज्म को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्यात हमारे नौजवान पोत को अंदर ही अंदर खोखला करके उन्हें तरक्की की पटरी से हटा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अभियान शुरू होने से अब तक 797 FIR दर्ज किए गए और 894 ड्रग्स स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 457 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए और 606 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की गई है।
2: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के अहद में 2 पुख्ता इरादे और जोड़ने हैं। नार्को टेररिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकने और उसके पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए हम सब तन मन धन से काम करेंगे और नशा तस्करों और उनके आकाओं को आवाम से खदेड़ कर ही दम लेंगे। सोपैया की मिट्टी से इस वादे के साथ आज हम दशकों की खामोशी भी तोड़ना चाहते हैं। भय और स्टिग्मा की वजह से वर्षों से चुप परिवार अब खुल करके कहने लगे हैं कि आतंकवादी पड़ोसी मुल्क की सब पर चलाए जा रहे जहर के इस कारोबार को कश्मीर घाटी में चलने नहीं दिया जाएगा।
0: जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमत से जारी हैं और मनुष्यात के ढांचे को खत्म करने नीज इस लत में फंसे नौजवानों की बाजाबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मनुष्यात से मुतलिक

0: जी मनुष्यहा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चलाचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस बिद्दत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के ताल्लुक से एक उस्ताद मंजीत सिंह गिल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: मेरी तरफ से बच्चों को यही पैगाम है कि नशा आवर चीजों से दूर रहें और अपने माशरे को बचाएं। नशा एक खतरनाक जहर है जो नौजवान नस्ल के ख्वाब, खानदानों का सुकून और माशरे का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। मेरी सब वालदेन, नौजवानों और समाज से पुरजोर अपील है कि इस बदतरीन आदत से दूर रहें, अपने बच्चों की सही रहनुमाई करें, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबल है। हमारा फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर नशा से पाक, महफूज और रोशन माशरा तामीर करें।
0: पुलिस ने मनुष्यात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए श्रीनगर जिले के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रग्स मजदूरों की 5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद को अटैच कर दिया है। पुलिस ने अवंतीपुरा, अनंतनाग और सोपोर में 4 ड्रग्स मजदूरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से काफी मिकदार में नशीली अद्वियात बरामद की है। पुलिस ने उचर मागाम हंदवाड़ा के बिलाल अहमद खटाना नामी ड्रग्स मजदूर की 15 लाख रुपए मालियत की जायदाद को अटैच कर दिया है। पुलिस ने पुलवामा और अनंतनाग में गैर कानूनी तौर काश की जा रही खशखाश को तबाह कर दिया है। जल शक्ति और कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राणा ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट की अमलावरी का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने इस मौके पर अफसरों को हिदायत दी कि वो इस एक्ट के साथ साथ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में कबायली तबके में जामे बेदारी पैदा करें। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के वजीर सतीश शर्मा ने आज बादामी बाग कंटोनमेंट श्रीनगर में जारी NCC के स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप 2026 में NCC कैडेटों के ANOs से खिताब किया, जिसमें मुल्क के 17 NCC डायरेक्टरेट से ताल्लुक रखने वाले 340 कैडेट शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने नौजवानों में नज्म व जब्त और हुबुल वतनी के जज्बे को फरोग देने में NCC के रोल को उजागर किया। सेहत और तबी तालीम की वजीर सकीना इतू ने आज सतराजन बंगी वार्ड कुलगाम में प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मयार तालीम में बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने आज रफियाबाद हलके में जालाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो मेवा बागात और फसलों को हुए नुकसान का तखमीना लगाए ताकि किसानों की बरवक्त मदद को यकीनी बनाया जा सके। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
3: मौसमी हालात बदल रहे हैं, रेगुलर भी बारिशें हो रही है, जालाबारी भी होती है और इससे काफी जो है हमारे फसल को डैमेज हुआ है, हॉर्टिकल्चर में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और चूंकि हमारे पास अभी प्रोविजन जो होते हैं वो SDRF में होते हैं, जिसके तहत लोगों को हम असिस्ट करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, रिलीफ देते हैं। उसके लिए डिपार्टमेंट ने जो है वो कल से ही कोशिश करी है कि हर जगह जाने की और असेसमेंट देने की। जब वो फाइनल असेसमेंट हो जाएगी उसके बाद इनको रिलीफ दिया जाएगा। साथ साथ में हमारी कोशिश ये भी है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को हम लोग पाई तकमील तक पहुंचाएं और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर वो सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा इंश्योरेंस स्कीम का और उसके बाद वो यहाँ लागू की जाएगी।
0: चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लों ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक निजामत में बेहतरी लाने और सड़क हादसात को कम करने के लिए इख्तियार की जा रही हिकमत अमली और सिफारिशात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरों पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक निजाम आसान बनाने, निजी हादसात को कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। बुलंदपाया वली कामिल और कश्मीर में बानी इस्लाम हजरत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह का 661वां उर्स मुबारक आज निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनकी ज़ियारतगाह वाका खानकाह मौला श्रीनगर में दुरूद व अज़कार और खत्मातुल मौज़मात की मजालिस आरास्ता हुईं।

0: एक तहजीब की जगह है, कश्मीर एक कहानी है। टूरिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये नेचुरल ब्यूटी अल्लाह की देन है, उसको हम लेके आ रहे हैं सामने, लेकिन कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लेगेसी को भी हम सामने लेके आए, ये भी हमारा ही कर्तव्य है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमें इस मुहिम में एक साथ जुड़ के शाना बशाना होके काम करना चाहिए, सो दैट वी कैन टेल पीपल व्हाट एक्चुअली कश्मीर इज।
1: राजौरी जिले से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद यासिर नामी नौजवान बॉक्सर, जिसने उज्बेकिस्तान में अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया, जम्मू कश्मीर के स्पोर्टिंग मंजरनामे में एक आइकन के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुसरत गुल ने कहा है कि इस नौजवान ने खेलो इंडिया सेंटर में तरबियत हासिल की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए मरकज की तरफ से साल 2021 से अब तक 100 खेलो इंडिया सेंटर कायम किए गए हैं, जिनसे नौजवान खिलाड़ी मुस्तफीद होकर कौमी और बैनुल अक्वामी सतह के खेल मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। दरियासना बॉक्सर मोहम्मद यासिर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: मैंने पहले भी नेशनल में गोल्ड मेडल लाया, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया था, और अभी मैंने इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और ये जहाँ पे मैंने एशियन चैंपियनशिप खेली थी ये उज्बेकिस्तान में हुई थी। ये मेरी इधर टोटल 4 फाइटें हुई थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं खेलूँ इंडिया सेंटर से निकल के अपने जम्मू कश्मीर और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म लाए और हमारे जैसे बच्चे खेलो इंडिया सेंटर में प्रैक्टिस करते हैं। मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ड्रग्स से दूर रहें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें।
1: जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने यूटी के कॉलेजों में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कहा है कि वो दाखिले के लिए कॉलेज ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि उन्हें किसी न किसी कॉलेज में दाखिला मिल सके। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:24 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:32 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।
3: सामईन आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। वादी कश्मीर की फितरी खूबसूरती इन दिनों जो बन पर है, हर सू नजर को तरावत बख्शने वाला सब्जा बिछा हुआ है, तरह तरह के फूल हर सू खिले हुए हैं। ऐसे में सियाहती सरगर्मियां बतदरीज बढ़ रही है। पिछले साल बायसरन पहलगाम में पेश आए दिलदोज वाके से सियाहती शोबे को जो जबरदस्त धचका लगा था, अब फिर से उभर रहा है। इन दिनों वादी आने वाले सयाहों की तादाद में बेहतरी दिखाई दे रही है और तवक्कु की जाती है कि इस साल बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह वादी आएंगे। इस ताल्लुक से कश्मीर के मुल्क के रेल निजाम से पूरी तरह जुड़ जाने से भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। सियाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार समेत तमाम शराकत दार अपनी तरफ से कोशिशों में लगे हुए हैं और ये कोशिशें किसी कदर बार आवर साबित हो रही हैं। यहाँ आने वाले सयाह हसब रिवायत यहाँ की फितरी खूबसूरती और मेहमान नवाजी से खासे महजूज और मुतासिर हो रहे हैं। सियाहत जम्मू कश्मीर की मईशत का कलीदी शोबा है। इस शोबे से बड़ी तादाद में यहाँ के लोगों को रोजगार हासिल होता है और यहाँ इस शोबे में वसी इम्कानात मौजूद हैं। ताहम इस सिलसिले में एक तवील मुद्दती जामिया हिकमत अमली नागुजीर है। इस तरह की हिकमत अमली के 3 बड़े पहलू है। पहला पहलू अमन व सलामती के माहौल को यकीनी बनाने का है, क्योंकि सियाहत बद अमनी में फरोग नहीं पा सकती। अवाम, सिविल सोसाइटी और सरकारी इदारों को अमन के फजा कायम रखने और मजीद उस्तवार करने के लिए चौकन्ना रहकर मुत्तहिदा तौर पर कोशिशें करना होंगी। दूसरा पहलू वादी की बेपनाह फितरी खूबसूरती को बरकरार रखने का है। हालिया दहाइयों में इस ताल्लुक से सभी मुतलकीन को कोताहियां और अदम तवज्जुही सामने आती रही है। तीसरा पहलू भाईचारे और मेहमान नवाजी की यहाँ की रिवायत को बरकरार रखने का है। इस ताल्लुक से सरकार से ज्यादा बड़ा रोल अवाम और सर्विस प्रोवाइडर्स का है। जाहिर बात है कि सियाहती शोबे की देर पर तरक्की के लिए इन तीनों पहलुओं का इहाता करने वाली मरबूत हिकमत अमली नागुजीर है। उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह की हिकमत अमली अपना कर जम्मू कश्मीर में सियाहती सेक्टर आने वाले बरसों में मजीद फरोग पाएगा और यहाँ की मईशत व माशरत में नुमाया रोल अदा करेगा। तबसरा खत्म हुआ। शब्बा खैर।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: वादे की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नष्ट होता है।

जी दोस्तों, ये पोस्ट कार्ड हमें मौसूल हुआ है बनियारी सोनावारी से। आप है मोहम्मद अशरफ डार, मंसूर अहमद डार, जान मोहम्मद डार, गुलाम अहमद मटानी और फारूक अहमद चौपान, सुरफा कंगन से लतीफ़ अहमद रैना, खालिदा जी, अफरोज़ा जी, फयाज़ अहमद, साहिल तनवीर और अब्दुरऊफ शेख। बनियारी सोनावारी से मोहम्मद अशरफ डार, मंसूर अहमद डार, जान मोहम्मद डार, गुलाम अहमद मटानी और फारूक अहमद चौपान। आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है। फिल्म का नाम है अदालत। इसी नगमे को सुनने के लिए आप सब दोस्तों ने मेल भेजे हैं। आप हैं मोहल्ला चंदूर बिस्वासी नारायण भाव, विठल राव, ललिता रानी, परी संजना, गणेश कार्तिक, ब्राउनी, उषा, सुवर्णा, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी, अम्बेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जामदाड़े, स्वराज स्वारीत, हिंगोली से शाजी बोड़के और सदाशिव, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने मेल भेजा है। गुरदर्शन लाल का मेल हमें मौसूल हुआ है कैरून से। आपके साथ हैं सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद, बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी और इसर राज सूर्यवंशी। आपने मेल भेजा है नया पारा बिरई से। जमशेदपुर झारखंड से कुमारी प्राची, साधना ठाकुर, राजकुमार ठाकुर और पप्पू ठाकुर, तेलंगाना बुंगेर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान, फरहान, सुमायरा और अजीम गुड़िया, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, नीलम पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, रमा और आरएस पुरी। सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म अदालत से नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़, और वादी की आवाज़ के आज के शुमारे में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद किए हुए नगमे। जी दोस्तों, ये मेल हमें मौसूल हुआ है श्री गंगानगर राजस्थान से। आप हैं मेहर अरोरा, ममता अरोरा, कृति और भूमिका। आपने किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में नगमा सुनना चाहा है। फिल्म का नाम है शालीमार। इसी नगमे को आप सब दोस्त भी सुनना चाहते हैं। आप हैं सल्लर, पहलगाम से पीरजादा मेराजुद्दीन, निज़ामुद्दीन और कैसरुद्दीन, नागचुन रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा, एमपी से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर और सियावल हक डावर, नसीमुल इस्लाम गनोरी ने मेल भेजा है बिहार कॉलोनी लूनी से। आपके साथ हैं प्रकाश वीर राजपूत और आपके बहुत सारे दोस्त। डोंडी लोहारा बालूद से कमलेश जयपुरिया, टाउनशिप पिल्लई से अनुश्री प्रदीप, रिंकी पिंकी प्रमिला प्रदीप, जेल रोड रायगढ़ से ये मेल हमें मौसूल हुआ है लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार मिश्रा की जानिब से। वलीउल्लाह अंसारी ने मेल भेजा है पुराना तालाब डुमराव से। आपके साथ हैं असमानाज अंसारी और सोनम। सारिमपुर बक्सर से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और मोहम्मद समी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी, छटिया पोखर डुमराव से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने मेल भेजा है, और छत्तीसगढ़ पथरिया बरेवा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश सिंगरोल, नेहा और वानिया ने मेल भेजा है। सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म शालीमार से नगमा किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में।

दोस्तों, अब पेश है महेंद्र कपूर की आवाज में नगमा। फिल्म का नाम है उपकार और इस गीत को सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, राजकोट से अजीता पॉल, प्रमीला, प्रियांशी शर्मा, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही और मेहराज जहां, राहुल नगर अमरावती से पोस्ट कार्ड हमें मौसूल हुआ है सिद्धार्थ गोंडाने की जानिब से। आपके साथ हैं अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, महेश, प्रतिभा और पद्माकर गोंडाने। बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से ये मेल हमें मौसूल हुआ है प्रेम सिंह बड़वाल की जानिब से। आपके साथ हैं सुखवीर बड़वाल, रानू, कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन रंगोली, निशान अनमोल, चटकू और मटकू और मजनू का टीला दिल्ली से ये मेल हमें मौसूल हुआ है कमल बलूजा और मधु बलूजा की जानिब से। सुनिए अपनी पसंद।

कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: कि हम इस रेड राइस के तहत इस एरिया को लाए हैं। पिछले साल हमने कुछ सक्सेस स्टोरियां भी बनाए हैं, शायद आपने देखी होगी, तो वहां पे लोग बहुत ही इस मामले में खुश हैं कि वो इसकी काश्त कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा भी इसमें ठीक ठाक है। हमारी एलोकेशन पिछले साल HADP में 2,37,00,000 के करीब हमारी थी, तो जो कि हमारा 100% हो गया।
1: तो बताइए HADP एक स्कीम, तो दूसरी जो मरकजी मामले वाली स्कीम है कौन कौन सी है?
0: JKSIP की जो स्कीम है, JKSIP में हमारे पास हमने पॉली हाउसेस बनाए और हमारे पास 200 कनाल के टारगेट थे वेजिटेबल एक्सपेंशन के लिए, जो हमने किए 100%, उसमें हमारे 13,50,000 की मावनत मिली थी, जो कि हमने 100% किया, फार्मर तक पहुंचाया। इन दोनों स्कीमों में हमारा कोई अमल दखल ये नहीं कि हम बेनिफिशरी को सिलेक्ट करें, क्योंकि इसमें बेनिफिशरी सिलेक्शन हो जाती है ऑनलाइन सिलेक्शन पे, उसमें बिल्कुल सीरियल के हिसाब से हम देखते हैं कि कौन कौन फार्मर, फिर हम उनकी फिजिबिलिटी देखते हैं, हाँ जी ये कर सकता है नहीं कर सकता है, उसी तरह से।
1: सॉइल हेल्थ कार्ड हमारी एक स्कीम है, तो किस तरह से ये जमीन की सेहत को बरकरार रखने में हमारी मदद करती है?
0: मरकज ने सेहत के हवाले से देखा कि हम किस तरह कर सकते, तो उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिसमें बाजाबता टारगेट्स मिलते हैं, पिछले साल हमें 1,259 फार्मर्स के फार्मर्स पे जाके हमने उनको सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए, जिसमें से 270 हमने जो नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जो कि हमारा यहाँ पे नागाम जोन में चल रहा है, उसमें वहाँ पे उतने कार्ड हमने इशू किए।
1: तो रावा माली साल के दौरान क्या टारगेट है आपका, क्या अभी तक एलोकेशन हुई है, तो आप क्या स्टार्ट किया है आपने वो खर्च?
0: फिलहाल टेंटेटिवली हमें HADP में, जो हमारे चीफ सर ने परसों हमें एक मीटिंग ली थी, उन्होंने कहा कि जो पिछले साल का ही टारगेट है फिलहाल आप उस पे काम कर दे, क्योंकि फिजिकली हमारे पास अभी फिजिकल टारगेट नहीं आए, तो अलबत्ता जो वहाँ पे मैसेज है हमारे डायरेक्टरेट से या हमारे सेक्रेटरेट से, तो फिलहाल पिछले साल की टारगेट हम इंशाल्लाह इस साल भी।
1: एक और स्कीम है हमारी PM किसान निधि, कितने रजिस्टर्ड फार्मर्स है हमारे, उनके आपको लगता है उनकी कुछ मावनत हो रही है इस स्कीम से?
0: जैसे कि आपने कुछ सक्सेस स्टोरी देखी होंगी, बिल्कुल ये फार्मर को मावनत करता है। हमारे यहाँ चाडोरा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 20,005 फार्मर्स रजिस्टर हैं, जिनमें से इस वक्त जो एक्टिव फार्मर्स हैं, इस वक्त हमारे जो एक्टिव है वो 18,799 फार्मर्स हैं, जो कि बिल्कुल हमसे ये बेनिफिट ले रहे हैं।
1: तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है PM किसान निधि?
0: PM किसान का बिल्कुल गाइडलाइन वहीं पे है, जहाँ पे वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और हमारे यहाँ जो CSS सेंटर्स हैं या हमारे ऑफिस पे जाके हमने बिल्कुल अपने एम्प्लॉयज को रखा है कि वो इनको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें यही है कि 2019 से पहले उनका इंतकाल होना चाहे या उनके अपने जमीन होनी चाहे, एक फैमिली को ये मिलता है, फैमिली में कम से कम एक मियां बीवी और उनका एक बच्चा, ये फैमिली मानी जाती है, इसमें को मिलता है। हमारा आलात कशावर्दी, जो हम मैकेनाइजेशन की रोबर से जो हम इनमें मशीनरी देते हैं, ये प्रोजेक्ट 9 में आता है हमें, उसमें भी चूंकि ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन में बिल्कुल एक क्यू बनता है किसने कौन से एम्प्लीमेंट के लिए अप्लाई किया है, उसको हम वो करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर टारगेट आए, हमें ट्रैक्टर 10 देने हैं, हमारे पास फिजिकल टारगेट 10 आया, हम उसी लिस्ट में से 10 उठाते हैं। हाँ, इनमें से कोई फिर मना करता है कि मुझे आज पोजिशन नहीं है, फिर हम अगले को उठा देते हैं, और इसी साल एंड तक इसमें पहले हमें 25% आता है, फिर 25%, फिर 50%, तो हम इसमें इसको
1: ऑनलाइन
0: फर्स्ट का फर्स्ट, बिल्कुल कोई ना इंसाफी नहीं। अगर 10 को हमने दे दिया ना, 10 में से जो पहले बिल आएगा हम उसको पेमेंट करते हैं, क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे पेमेंट करना, जो पहले एस्टेब्लिश करेगा यूनिट उसको हम डाल देते हैं। ऑनलाइन पोर्टल से तो बिल्कुल भी शफाफियत, और खासकर एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज हो गई, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे कोई पोर्टल नहीं था, बहुत शिकायतें हो रही थी, उसमें मुलाजिम बेचारे को भी परेशानी उठानी पड़, और आजकल हम बिल्कुल आजाद हैं, आराम से काम कर सकते हैं, फार्मर्स को कोई परेशानी नहीं। हमारे जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है, जैसे कि पोर्ट ड्रॉप मोर क्रॉप, उसमें ज्यादा पानी की जो सिंचाई के मुवाफिक लोगों को वहां पे बेनिफिट दिया जाता है, जैसे कहीं पे वाटर हार्वेस्टिंग टैंक खोदते हैं या ट्यूबवेल दे देते हैं, या हम स्प्रिंकलर है ड्रिप इरीगेशन, उस बारे में उनको दे देते हैं। एक मिड स्कीम है जिसमें हम वेजिटेबल ग्रोइंग के बारे में फार्मर्स को छोटे छोटे, अगर कोई बड़ा हाईटेक नहीं बना सकता है, कोई बड़ा पॉली हाउस नहीं बना, उसको छोटे ट्यूबवेलर उसमें दे देते हैं, उसको 10,000 तक हम मावनत कर लेते हैं। उसमें पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हमारी यही मैसेज है कि वो हमारे जो जोन्स हैं वहां पे हमारे AO साहिबान बैठे हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स बैठे, एक्सटेंशन असिस्टेंट बैठे हैं, उनके साथ कंटेक्ट कीजिए, उनसे मिलिए, उनके लिए बहुत सारी स्कीम है जिससे वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना रोजगार भी कमा सकते हैं। खासकर जिसके पास जमीन है, मुझे लगता है कि उसको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, एज ऑन डेट ऐसी स्कीमें हमारी भारत सरकार ने यहाँ लाई है।
2: और अब माइक एजाजा अख्तर के हवाले।
3: शुक्रिया तजमल। सामईन, महकमा एग्रीकल्चर कश्मीर ने पिछले चंद बरसों के

0: दौरान वादी के ज़िराअत के शोबे को तरक्की देने के ताल्लुक से कई तरह के इख्तिराई इकदामात किए। HADP और दीगर स्कीमों के तवस्सुत से महकमे ने जहां किसानों को आला मयार के बीज फराहम किए, वहीं आलात कशावर्जी से लेकर खादें और माहिराना मशवरे भी काश्तकारों को वक्त वक्त पर फराहम किए जाते हैं। हमारे नुमाइंदे शौकत शाह ने बड़गाम जिले के कुछ ऐसे नौजवानों से बात की जिन्होंने HADP और दीगर स्कीमों से मुस्तफीद होकर न सिर्फ ज़िराअत के जदीद तौर तरीके अपनाए हैं बल्कि अपनी आमदनी में भी खातिरख्वाह इजाफा किया है। इन नौजवानों ने इन फलाही स्कीमों की अमलावरी के ताल्लुक से अपने तासुरात यूं बयां किए।
1: जाड़ोरा एरिया से मेरा ताल्लुक है, मैं एक किसान हूं, तो हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनसे किसान इस्तेफादा करते भी हैं और कर भी सकते हैं कि अगर उनके पास पूरी जानकारी उन स्कीमों के हवाले से दी जाए तो बहुत हद तक किसान उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। मगर अभी हमारे खदशात भी बहुत है, अगर होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है या PM

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित

0: भारत जीराम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जीराम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

समिंतो यसु सुपांसठ प्रोग्राम भोजन हम सफर ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 9:15 हो रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन सुनते हैं।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का इरादा किया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अमेरिका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है। वज़ीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। मरकज़ ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी ज़मीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला कान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई। और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त और इलाकाई और आलमी अमन व सलामती से वाबस्ता मामलात पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने आज सपहर नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत और अमरीका आलमी सतह पर फलाह व बहबूद के लिए करीबी इश्तराक से काम करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मीटिंग के दौरान मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि जनाब मार्को रूबियो ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ्त से वाकिफ कराया। इनमें दिफा, कलीदी, टेक्नोलॉजी, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई की यकीनी फराहमी, कनेक्टिविटी, तालीम और आवाम से आवाम के रबते शामिल हैं। जनाब मोदी ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात का पुरअमन हल निकाले जाने की बात दोहराई और क़याम अमन की कोशिशों के तई भारत की लगातार हिमायत का इरादा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। वो इस महीने की 26 तारीख को क्वाड वज़रा ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब रूबियो आज सुबह कोलकाता पहुंचे थे, जहां वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी गए और मदर टेरेसा की विरासत को खराज अकीदत पेश किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि उनके इस दौरे से भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका किस अंदाज से भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अपनी हिकमत अमली इख्तियार करता है, इसमें भारत की मजबूत बुनियाद है। नई दिल्ली में अमरीकी सफारतखाने की एक ज़ेली इमारत का इफ्तिताह करते हुए जनाब रूबियो ने कहा कि अमरीका में भारतीय कंपनियों ने जो $20 अरब की सरमायाकारी की है और पैक्स सिलिका के लिए भारत ने जिस माहदे पर दस्तखत किए हैं, उससे इस बात की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यह एतमाद जाहिर किया कि भारत और अमरीका बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के बारे में कई और पुरजोश और नए ऐलानात करने वाले हैं। जनाब रूबियो ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को दो बहुत संजीदा रहनुमा करार दिया, जो तवील मुद्दती मनसूबों पर तवज्जो मरकूज रखते हैं।
1: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकारी मुलाजमतें लोगों के रहन सहन को बेहतर बनाने और इसमें सहूलत पैदा करने के अहम वसीले के तौर पर काम करती हैं। जनाब मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि

0: दुनिया भारत के तरक्की के सफर में शामिल होना चाहती है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ साझेदारी भी कायम कर रहा है, जिसका मकसद मुल्क के नौजवानों को मौके और रोजगार फराहम करना, नीज आलमी सतह पर उन्हें रोशनास कराना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: आज 19वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए भर्ती किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम किए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी में सावी विहीर सनती स्टेट में कायम तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। ये प्लांट 155 mm के तोपखाने के गोले तैयार करेगा और इसकी सलाहियत सालाना 5,00,000 गोले तैयार करने की है। गोले तैयार करने की पूरी टेक्नोलॉजी और खाम माल अंदरूनी मुल्क का ही होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि एक वक्त भारत को दिफाई साजो सामान की दरामदकार के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आइंदा बरसों में मुल्क दिफाई साजो सामान का एक अहम बरामदकार बनकर उभरेगा। जनाब सिंह ने इस बात को उजागर किया कि जंग का तरीक़ेकार तब्दील हो चुका है और जिन मुल्कों के पास इख्तरा साजो सामान तैयार करने की सलाहियत और मजबूत सनती बुनियादी ढांचा है, वही मुस्तकबिल तश्कील देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत मुस्तकबिल की जंगी सलाहियत के लिए खुद को तैयार कर रहा है और मेक इन इंडिया पहल के जरिए दिफाई साजो सामान की तैयारी के मामले में खुद कफील बन रहा है। महाराष्ट्र के वज़ीर-आला देवेंद्र फडणवीस और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की।
2: सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है, इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5,000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब से कहा है कि वो अगले महीने की 5 तारीख तक अपना अहाता हवाले कर दे। मरकज ने कहा है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के लिए जमीन की जरूरत है। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत के तहत अराजी और तरक्याती दफ्तर की जानिब से जारी किए गए एक हुक्मनामे में कहा गया है कि फौरी इदारा जाती जरूरियात पूरी करने, हुक्मरानी के बुनियादी ढांचे और मफाद आम्मा के प्रोजेक्ट के लिए यह जमीन जरूरी है। इसमें कहा गया है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को महफूज बनाने, नीज दीगर अहमियत के हामिल अवामी सिक्योरिटी मकासद के लिए दिल्ली के इंतहाई हसास और अहम इलाके में वाक़ इस ठिकाने की ज़रूरत है। मजकूरा हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि हुक्म की तामील न होने की सूरत में कानून के मुताबिक इसे कब्जे में लिया जाएगा। मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम इस साल जुलाई से शुरू हो जाएगी। वज़ीर-आला शुभेंदु अधिकारी ने मरकजी वजीर सेहत JP Nadda के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद कोलकाता में ये ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत मुस्तफीद होने वाले मौजूदा अफराद को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में अगले महीने नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वजीर JP Nadda ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ साथ सेहत माहरीन और तिब्बी पेशावर अफराद की तरबियत भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने आज नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में कौमी बोर्ड इम्तहानात इदारे की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर हिफ्जान सेहत निज़ाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करते हैं, जबकि बुनियादी ढांचा और दीगर सहूलियात मुल्क के हार्डवेयर के मानिंद काम करती हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हिफ्जान सेहत का शोबा और सेहतमंद भारत का नज़रिया

0: विकसित भारत मिशन के हुसूल में मरकजी रोल अदा करेंगे, लिहाजा तिब्बी पेशावर अफराद का रोल मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने वसीतर अवामी सलाह मशवरे के लिए विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाये किया है। दही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई शख्स, मुतल्लिका फरीक, तंजीम या इदारा जाब्तों के मसौदे के सिलसिले में गौर खोज के लिए इस माह की 21 तारीख तक एतराजात या मशवरे दाखिल कर सकता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: विकसित भारत जी राम जी एक्ट 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट MG मनरेगा 2005 की जगह लेगा। इस नए कानून का मकसद इस माली बरस में रोजगार की कानूनी गारंटी के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों का मुसवदा दफा 33 और कानून की दीगर मुतालिका दफात से मुताबिकत रखते हुए तैयार किया गया है। वजारत ने कहा है कि कौमी सतह की रहबर कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी कौंसिल के जाब्तों, इंतजामी अखराजात से मुतालिक जाब्तों और शिकायत के इजाले से मुतालिक जाब्तों को सलाह मशवरे के लिए अवाम के सामने रखा गया है। नए कानून में बरवक्त, शफाफ और जवाबदेह तरीक़ेकार के तहत उजरत की अदायगी पर जोर दिया गया है। इस कानून के तहत अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान रोजगार फराहम नहीं किया जाता तो बेरोजगारी भत्ते की भी सहूलत है। दिल्ली से अक्षित वैद्यन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: चीन के शांक्सी सूबे में कोयले की एक कान में हुए गैस के एक धमाके में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 90 हो गई है। गैस का यह धमाका कल हुआ था। सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि कान में काम करने वाले 201 कानकुनों को अब तक बचा लिया गया है, जबकि बचाव कार्रवाई जारी है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक जामे बचाव कार्रवाई और जख्मियों के इलाज के लिए हिदायत जारी की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी सूबे में कान में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के तई दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने भारतीय अवाम की जानिब से चीन के सदर शी जिनपिंग और चीन के लोगों से अपनी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने सभी बाकी लापता अफराद की जल्द और बाहिफाजत बाजियाबी की भी दुआ की और इस मुश्किल घड़ी में सोगवार कुंभों से यकजहती का इजहार किया। फ्रांस ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर एटामार बेन गवीर के फ्रांस में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। फ्रांस के वजीर खारजा जीन नोएल बेरोट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस इकदाम से गजा जाने वाले समुद्र फ्लोटिला में सवार सरगर्म कारकुनों के साथ रवा रखे गए बर्ताव के मामले पर बढ़ते हुए गम गुस्से की अक्कासी होती है। फ्रांस के वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन पर भी जोर दिया कि वो इसराइल के कौमी सलामती के वजीर पर पाबंदियां आयद करे। शुमाल मशरकी यूक्रेन के शहर सूमी के मजाफाती में रूस के ड्रोन हमले में आज एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हो गए। यूक्रेन के लुहानसिक खित्ते में रूस के कंट्रोल वाले इलाके में एक कॉलेज के रिहायशी इलाके पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जवाबी फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया था। आज वियतनाम के डेनेंग में भारत के कुश्ती खिलाड़ी सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप के मर्दों के ग्रेको रोमन जुमरों में चांदी के तमगे जीते हैं। 60 किलोग्राम के जुमरे में सूरज वशिष्ठ कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी से खिताबी मुकाबले में 4-0 से हार गए। वहीं 67 किलोग्राम के जुमरे में सागर सिंह को फाइनल में उज्बेकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी ने 9-0 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का इरादा किया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अमेरिका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है। वजीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला खान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। ये आकाशवाणी श्रीनगर है।

0: मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 MHz पर रात के 9:30 हुए हैं।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम पेशरफ्ता।

0: दोस्तों को कांटेक्ट किया, दोस्तों को आइडिया नहीं था, वेबसाइट्स पे देखा, बहुत अलग अलग जगहों से देखा, बहुत लोगों को कांटेक्ट किया, एंड फिर फाइनली मुझे समझ आया कि उसमें वो है एक हेक्साकॉप्टर था, उसमें तीन रोटर्स जो है वो क्लॉकवाइज होने चाहिए और तीन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होने चाहिए। मैंने क्या किया था, मैंने रैंडमली किया था, पता नहीं था मुझे न्यूटन थर्ड लॉ का था वो इशू, वो पता नहीं था मुझे उस टाइम। तो धीरे धीरे ऐसे रिसर्च करते करते पता चला कि चल रहे हैं लेकिन उड़ नहीं रहा है, फ्लिप हो रहा है, तो स्लोली वो हुआ एंड इट टुक इट्स फर्स्ट फ्लाइट आफ्टर 6-7 मंथ्स।
1: ये तजुर्बा कहाँ किया आपने?
0: ये मैं घर पे कर रहा था उस टाइम पे,
1: राइट
0: ये मैं घर पे कर रहा था उस टाइम पे, एंड साथ साथ में मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, टीचर से भी कुछ डाउट्स पूछे जा रहे थे, बट वही अगेन उस टाइम पे एक्सपीरियंस नहीं था, किसी को पता नहीं थी, ये इंडस्ट्री नई नई थी, ड्रोन इंडस्ट्री में इंडिया में भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, ये अराउंड 6 साल पुरानी बात है, 5 से 6 साल पुरानी बात है अराउंड। फिर स्लोली हमारा ये था कि अब हम एक कंपनी बनाएंगे जिसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे वाया ड्रोन्स।
1: ये आपका इनफरादी आइडिया था या इसमें आपके कुछ दूसरे लोग भी शामिल थे?
0: इसमें इसमें मेनली मेरे फादर शामिल थे जिन्होंने ये आइडिया
1: उनका
0: दिया
1: कुछ
0: कि
1: अपना बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग का?
0: उनका उनका बैकग्राउंड, उनका भी इंटरेस्ट सेम इंजीनियरिंग में ही है,
1: राइट
0: लेकिन मुझे नहीं पता या फिर उनने कभी बताया नहीं, वो उनने कॉमर्स परस्यू किया अपनी लाइफ में एंड इज एन इंटरमीडिएट सीए राइट नाउ, वो अपना इनकम टैक्स फाइलिंग जीएसटी वगैरह का काम करते हैं, उनकी भी अपनी कंपनी है। लेकिन फिर वही है, उनका आइडिया था कि नहीं चलो इसको लीगलाइज करते हैं क्योंकि ड्रोन्स है, अगर ड्रोन्स में इंटरेस्ट है और कश्मीर में आप काम कर रहे हो तो इसको लीगलाइज करना पड़ेगा, इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट देना पड़ेगा। तो प्रॉपर फॉर्मेट ऐसे दिया कि हमने कंपनी रजिस्टर की, मैंने अपना DGCA लाइसेंस लिया, फ्लाइंग लाइसेंस जो हम कह सकते हैं उसको, इंडिया में अराउंड 2022 में वो लॉन्च हुआ था, 2021 में, तो वो लाइसेंस मैंने लिया अपना, तो मेरे पास अभी करंटली फ्लाइंग लाइसेंस है, तो आई कैन फ्लाई एनी ड्रोन इन ग्रीन जोन। तो उसके बाद हमने कंपनी रजिस्टर की एंड फिर हमारा बेसिक जो हमारा स्टार्टअप का आइडिया था विच वाज हेल्पिंग जो लोग हमारे डिजास्टर में फंस जाए उनको हेल्प करना था, फ्लड्स में फंस जाए, अर्थक्वेक में फंस जाए, तो उसमें हमारा बेसिक आइडिया ये था कि आप मान लीजिए कहीं पे फ्लड आया एंड जैसे हमारा
1: 14 में
0: 2014 में फ्लड आया था, तो उस टाइम भी मुझे ये आइडिया आया था कि जैसे अभी हम हेलीकॉप्टर से रिलीफ सप्लाईज पहुंचाते हैं,
1: राइट
0: मेडिसन्स
1: राइट
0: हो
1: इट्स
0: गया,
1: वेरी
0: फूड हो
1: इंटरेस्टिंग।
0: गया,
1: हाँ
0: लोगों को लोकेट करना हो गया, लोगों को रेस्क्यू करना हो गया, क्यों ना हम वो ड्रोन से करें, क्योंकि स्टेट के पास कितने हेलीकॉप्टर है, कितने अफोर्ड कर सकते हैं, और ड्रोन्स कितने हम अफोर्ड कर सकते हैं, 4-5 लाख रुपए की चीज़ है, कहाँ करोड़ों का हेलीकॉप्टर। तो ड्रोन से वो चीज़ें ज़्यादा क्विकली और ज़्यादा एक्सेसिबल है, ज़्यादा हम क्वांटिटी में ड्रोन्स को प्रोक्योर करके ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं उसकी मदद से, तो वो हमारा एक आइडिया था। फिर धीरे धीरे हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमारे आमिर अली साहब थे उस टाइम डायरेक्टर, तो उनको हमने अप्रोच किया, उनके साथ डिस्कस किया एंड फिर हमने उनने हमें एक मॉक ड्रिल पे बुला लिया। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये मतलब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं उस बारे में है, तो उनने हमें बुला लिया फाइनली कि भाई आ जाओ, कल है आपका कल आपकी मॉक ड्रिल है, आप यहाँ पे डीसी साहब आएंगे, आप दिखाओ अपने ड्रोन से आप क्या कर सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो वो हमारा सबसे बड़ा मोमेंट था कि भाई अब ये देखेंगे, इनको पसंद आएगा तो ये दे विल परचेज। तो एक स्टार्टअप के लिए क्या रहता है, एक इनोवेटर के लिए क्या रहता है कि उसके आइडिया को अप्रिशिएट किया जाए एंड पीपल शुड अप्रिशिएट एंड फिर उसका सेल्स भी हो, तो तभी जाके वो एक्चुअल सक्सेस हो गए। तो नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली की, विंटर्स में यूजुअली दिल्ली जाते हैं, तो हमने कैंसिल की फ़्लाइट एंड रुक गए हम NIT गए टेस्टिंग करने। NIT के ग्राउंड में हमें परमिशन मिला था, हमारे सौद सर थे, डॉक्टर सौद परवेज़, वो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर के हेड है, तो वहाँ पे फिर सौद सर ने हमें परमिशन वगैरह दिलाई एंड हम फ्लाइट टेस्ट कर रहे थे। अब इसी फ्लाइट टेस्ट में क्या हुआ, ड्रोन क्रैश हो गया, हवा में पता नहीं क्या हुआ एंड ड्रोन क्रैश हो गया। एंड नेक्स्ट डे हमारा सबसे पहला वाला, जो हमारा पहला सबसे इवेंट था, सबसे पहला हम कह सकते हैं ब्रेक थ्रू हो सकता था, उस पर हमारा क्रैश हो गया एंड वो
1: तो
0: बहुत
1: यू वर डिसअपॉइंटेड अ बिट?
0: बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था।
1: ठीक
0: फिर हमने जो डायरेक्टर आमिर अली साहब है उनको फ़ोन किया, ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कोई नहीं आप जैसा है वैसा है, टूटा टूटा ले आओ बट एटलीस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ। तो फिर कहीं से कुछ करके हमने बाहर से एक ड्रोन रेंट कर लिया एंड बस एक वीडियो फीड वगैरह उनको दिखाया और अपना टूटा ड्रोन दिखाया एंड अपनी कैपेबिलिटीज़ एक्सप्लेन की। तो DC साहब जो है उनने काफ़ी अप्रिशिएट किया, ऑल दो हम दिखा नहीं पाए कि हम कैसे रोप को उधर से इधर लेके जाएंगे, हम कैसे थोड़ा बहुत मेडिसिन को पेड़ के उस पार या एक गड्ढे के उस पार लेके जाएंगे डिजास्टर में, इट वॉज़ ए POC प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, तो वो हम दिखा नहीं पाए बट स्टिल वो समझ गए कि हाँ पॉसिबल है। तो धीरे धीरे फिर हमारा NIT श्रीनगर में हम इंक्यूबेट हुए एंड NIT श्रीनगर से भी हमें फंड्स वगैरह मिले एंड सपोर्ट मिला।

0: से एंड हमारे प्रोटोटाइप के लिए. फिर अभी करंटली हम हमारा अभी
1: नहीं,
0: मेनली
1: ये फिर एनआईटी में दाखिला कर चुके, जो जो इनक्यूबेशन सेंटर है एनआईटी का,
0: तो
1: तो उन्होंने काफ़ी स्टार्टअप्स ने उनको उन्होंने जन्म दिया उस इनक्यूबेशन सेंटर ने. सो यू बिकेम ए पार्ट ऑफ इट.
0: हाँ, वी बिकेम ए पार्ट ऑफ इट एंड हम वहाँ पे अभी तक, मतलब हमारा 4 साल हो गए वहाँ पे. वी आर इनक्यूबेटेड देयर
1: वेरी गुड.
0: एंड उनकी तरफ से जो भी, मतलब एनआईटी के अंदर प्रोफेसर्स हैं, उनके पास जो नॉलेज है, जो एनआईटी के अंदर मशीन्स है, वो सब वी आर एक्सेसिबल टू दैट. हमें हमारे हमको उसकी सबकी एक्सेस है एंड हम उसको यूज़ कर सकते हैं टू आवर एडवांटेज. एंड वो सबसे बड़ी एक चीज़ है कि हाँ, मतलब आपको कोई
1: That
0: प्रोटोटाइप
1: means
0: बनाना है.
1: that

0: अच्छा, ये हर एक चीज़ में एक फाइनेंशियल पार्ट होता है। अगर ऐसे मामले हैं, आप नया कुछ कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल पार्ट में किसका रोल रहा आपका? मतलब गवर्नमेंट का कुछ थोड़ा सा, या कॉलेज का, या सिर्फ आपकी अपनी फंडिंग थी?
1: इनिशियली हमारी अपनी फंडिंग थी, फैमिली फंडेड था. एंड फिर अभी जो है, अभी मतलब उसके बाद जब हम एनआईटी में इनक्यूबेट हुए तो एनआईटी ने फंड किया हमें. हमारे पास एक प्रोजेक्ट था हाई एल्टीट्यूड ड्रोन के लिए, क्योंकि हमने कुछ डेमोज वगैरह दिए थे. हमारा क्या था, हमने मल्टीपल, क्योंकि हमारे पास शुरुआत में फंड्स नहीं थे, तो हमने मल्टीपल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके डेमोज देना शुरू किया. नॉर्दर्न नॉर्दर्न साइड में, लद्दाख साइड हो गया आपका, J&K में हो गया, जम्मू कश्मीर सब जगह पे, हिमाचल में हो गया. तो हमने मल्टीपल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके डेमोज देना शुरू किए अलग अलग जगह पे. फिर अभी धीरे धीरे जब कुछ डेमोज सक्सेसफुल हुए, तो उसके बाद एनआईटी में भी हमने एक प्रोजेक्ट ले लिया कि हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है. जब ये डेमोज दिए, हाई एल्टीट्यूड पे ड्रोन्स फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं लद्दाख वाले एरिया में, तो हमने क्या किया, हमने एक हाई एल्टीट्यूड वीटॉल का डिज़ाइन इनोवेट किया. एंड उसमें कुछ एयर, हमारा जो एयर फ्रेम है उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो कि हाई एल्टीट्यूड में फ्लाई कर सकते हैं.
0: फाइन।
1: तो उसके लिए हमने अपना पेटेंट भी, अभी फाइलिंग हमारा चल रहा है एनआईटी के साथ में. एंड उसी प्रोजेक्ट पे हमें एनआईटी श्रीनगर ने फंड किया. एंड अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है वो प्रोटोटाइप हमारा, एंड सून वी विल बी टेस्टिंग इट.
0: अच्छा, ये जो आपने आपने फिर एक एक कंसेप्ट खड़ा किया स्काई रोबो के नाम से,
1: स्काई रोबो ड्रोन्स प्राइवेट लिमिटेड,
0: हाँ,
1: तो
0: वो है क्या?
1: वो हमारी कंपनी है जिसके अंदर हम डिफेंस एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम सप्लाई करते हैं ड्रोन्स फॉर देयर मल्टीपल पर्पसेस. कोई स्पेसिफिक पर्पसेस नहीं है, किसी का पर्पस सर्वेलेंस है, कोई कार्गो सर्वेलेंस है, इवन हमारा मेडिकल में भी है. तो स्काई रोबो ड्रोन्स एक कंपनी है जिसके अंदर हम अपना ड्रोन्स एंड अदर जो हमारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है वो हम सेल करते हैं टू मेडिकल एंड डिफेंस.
0: अच्छा, वही है इम्पोर्टेंट चीज़। ये है कि जैसे 2014 में फ्लड आया, तो जो डिजास्टर रिलीफ है, इसमें आपका क्या रोल हो सकता है, या क्या रोल रहा है अभी तक?
1: अभी तक
0: 2014 में फ्लड आए, उसके बाद मतलब जब खुदा ना खासा अगर कल को जलजला आए या बाकी चीज़ें, व्हाट कैन बी योर रोल?
1: तो अभी हमारा रोल ये रह सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कहीं पे,
0: और ये कितना हेल्पफुल होगा? ये बड़ा
1: हाँ
0: इम्पोर्टेंट है,
1: हाँ
0: क्योंकि अगर खुदा ना खासा कोई डिजास्टर होता है तो एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाती है, कम हो
1: एग्जैक्टली
0: जाती है।
1: एग्जैक्टली
0: तो हाउ कैन यूर आई मीन इक्विपमेंट हेल्प
1: हाँ तो
0: द कॉमन
1: यही
0: मासेस?
1: हमारा आइडिया था जो आपने कहा एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाती है. यही हमारा आइडिया था कि बाय रोड तो एक्सेसिबिलिटी खत्म हो गई, और बाय एयर आपके पास में क्या ऑप्शन है, हेलीकॉप्टर है खाली ऑप्शन. तो हेलीकॉप्टर्स आर वेरी कॉस्टली, और फिर उनको ऑपरेट करने का अलग कॉस्ट हो गया, फिर वो हर एक को रिलीफ नहीं पहुंचा सकता. तो अभी हमारी कैपेबिलिटी ये है कि अब खुदा ना खास्ता कहीं पर फ्लड आ गया तो हम एटलीस्ट मेडिसिन पहुंचा सकते हैं. मेडिसिन से पहले एटलीस्ट हम लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन दे सकते हैं डिजास्टर रेस्क्यू टीम को. उनको पूरे फ्लड एरिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम उनको एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन देंगे कि इस घर में यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, इस घर में यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, तो एग्जैक्ट लोकेशन पर जाके उनको निकाल सकते हैं. पूरा उनको सर्च करने की जरूरत नहीं, उनको बस रेस्क्यू करना है. तो सर्च हमने कर लिया अपने ड्रोन से, विद इन विद इन हाफ एन आवर पूरा एरिया सर्च हो जाएगा. फिर उसके बाद में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, अब जब तक रेस्क्यू टीम आ रही है तब तक हम अपना मेडिसिन हो गया, मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं बाय ड्रोन. हमारे पास अलग अलग पेलोड के ड्रोन्स हैं, 1 kg से लेके 10 kg तक पेलोड है उनका. तो मेडिसिन कितना ही है, 1 kg का मेडिसिन है. फिर उसके बाद आप पानी दे सकते हो, आप अपना फूड एंड सप्लाई दे सकते हो. तो ये सारी चीज़ से वी कैन हेल्प पीपल.
0: एंड देयर इज अनदर पार्ट। सपोज एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन है, उसमें आप कैसे मदद कर सकते हो, या आपने कोई काम किया उस पे?
1: हाँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो J&K में और हिली एरियाज़ में, हिमाचल वगैरह साइड में भी काफ़ी एक मेजर प्रॉब्लम है. होता क्या है कि वाइल्ड एनिमल्स जो है वो शहरों में आ जाते हैं जंगलों से निकल के, जब खाना वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों को ख़तरा भी रहता है. एंड इसमें भी हमने एक प्रोजेक्ट किया था NIT श्रीनगर के साथ में ही, अगेन और दाचीगम जो आपका नेशनल रिजर्व है उसके साथ में. तो हमने क्या किया था, जो वो डार्ट, वो ट्रैंकुलाइजर गन जो उनके पास रहता है, वो फिजिकली बंदा जाता है और एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 100 मीटर से उसको वो शूट करना होता है. अब जब हम वहाँ गए, मैं आपको एक हंसी की बात बताना चाहूँगा. जब हम दाचीगाम गए, हमने वहाँ पे लोगों का मतलब इनपुट लिया जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे, जो वो गन चला रहे हैं ट्रैंकुलाइजर गन, बालू और लेपर्ड को जो ट्रैंकुलाइज कर रहे हैं उस गन से. उसने मेरे को कहा कि हम 3 लोग थे जो कि काम कर रहे थे, अब मैं अकेला हूँ. तो मैंने कहा क्यों बोल रहे हैं, कि 2 जख्मी हो गए बुरी तरीके से, अब वो काम नहीं कर सकते हैं. तो मैंने कहा

0: ऐसा क्या हुआ? तो उसने कहा कि 100 मीटर की डिस्टेंस से हम शूट करते हैं, अगर गलती से मिस हो गया, और इसमें इस गन में उतना प्रेशर रहता नहीं है, हो सकता है कभी कभी मिस हो सकता है, या बालू हिल गया अपनी जगह से, तो मिस हो गया तो उसको पता है गन शॉट कहाँ से है, एंड वो विद इन सेकेंड्स अटैक कर देता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि रेस्क्यू करने जाते हैं लोग उनके लिए। तो उसमें फिर हमने एक आइडिया ये लिया था कि वाई नॉट यूज़ ए ड्रोन, एक ड्रोन पे हम वो ट्रैंकुलाइजर गन लगा दें एंड वो बालू को फॉलो करेगा, एंड इंसान 1 किलोमीटर दूर से बैठ के या किसी
1: उसको
0: हाई
1: पता चलेगा
0: हाइट पे बैठ के, बिल्डिंग में बैठ के
1: जी।
0: उड़ा रहा है, एंड उसको जाके वो शूट कर रहा है ट्रैंकुलाइजर गन से। तो ट्रैंकुलाइजर गन ही ड्रोन के ऊपर माउंटेड था। तो इससे दो चीज़ें हो गई, एक तो क्विकली आप एनिमल को जाके ढूंढ के उसको ट्रैंकुलाइज कर सकते हो ताकि वो लोगों को कम से कम हर्ट करे। फिर जो बंदा ट्रैंकुलाइजर गन लेके जाता है उसकी जान जो खतरे में रहती है वो बच गई यहाँ पे, क्योंकि वो अब वो सेफ डिस्टेंस से फ्लाई कर सकता है, एक मान लो बंकर से फ्लाई कर सकता है वो, या एक हाई दो दो स्टोरी या 3 स्टोरी की बिल्डिंग पे बैठ के फ्लाई कर सकता है, तो वो चीज़ सेफ हो गई।
1: हाँ
0: तो ये एक और प्रोजेक्ट था जो हमने किया है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी काम करेगा इन फ्यूचर। अभी इस पर और भी काम चल रहे हैं इम्प्रूवमेंट्स में, तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी काम कर सकता है ये।
1: हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ, मतलब कैसी रिएक्शन थी जब आप इनक्यूबेशन सेंटर एनआईटी गए, कि उन्होंने कैसे अप्रिशिएट किया कि ये नया एक कंसेप्ट है, एक नया आइडिया है, एक छोटा लड़का है 16-17 साल का, इसने ऐसा किया, अभी तो 5-6 साल से आप इसमें हो, तो हाउ वाज द रिएक्शन?
0: तो इनिशियली जो सारे के सारे प्रोफेसर्स थे, जो भी कमेटी
1: डिड दे
0: थी,
1: बिलीव यू? आप में यकीन था उनको?
0: जो सारी कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी जो पूरी की पूरी थी, उसमें सबसे सबका ये सवाल था कि 12th के बाद आप इंजीनियरिंग क्यों नहीं करोगे, आपका अगर ऐसा प्लान है, ऐसा विजन है, वाई नॉट गो फॉर इंजीनियरिंग, सबका यही था। बट 1 साल 2 साल के बाद दे अंडरस्टूड कि नहीं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो अबान है वो अपने स्टार्टअप में क्या कर रहा है। इनिशियली तो काफ़ी रेजिस्टेंस मिली, बट अभी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, रेजिस्ट आप नया आइडिया कोई लाओगे, इनोवेटिव आइडिया लाओगे, आप मान लीजिए जो ट्रेडिशनल चीज़ें हमारी इंडिया में या कश्मीर में चल रही है, उससे अगर आप हट के कुछ करोगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 100%। बट अगर आपको यकीन है अपनी चीज़ पे, आपको भरोसा है कि नहीं हम कर लेंगे, जो हमने रास्ता लिया वो सही है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर यू विल बी अप्रिशिएटेड। तो रिएक्शन यही था कि स्टार्टिंग में भाई गो फॉर योर स्टडीज, कंप्लीट योर
1: आप
0: ग्रेजुएशन,
1: क्या करने
0: बीटेक
1: आए हो,
0: करो।
1: आप छोटे बच्चे हो,
0: हाँ,
1: ऐसा कहा होगा
0: तो
1: उन्होंने।
0: ऐसा, बट धीरे धीरे जब हमारा डिस्कशन हुआ, फिर जब प्रोजेक्ट्स हमने किए, तो वो समझ गए कि नहीं इसको ये करना
1: अच्छा
0: चाहिए।
1: अबाल, इसमें अभी तक कितने चैलेंजेस आए आपको?
0: अभी
1: क्योंकि
0: तक
1: ये जो नए कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें टाइम लगता है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल दैट, और कभी कभी इंसान डिस्करेज भी होता है, चाहे कोई भी हो, कि मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आ रहे हैं
0: हाँ,
1: 2 साल 3 साल, तो
0: सही।
1: चैलेंजेस क्या थे और आपने उन चैलेंज को कैसे उबूर किया, ओवरकम?
0: ऐसे कोई स्पेसिफिक चैलेंज नहीं है कि एक दो आए, इतने सारे चैलेंज है कि मतलब इंसान याद भी नहीं रख सकता, कुछ छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं, मल्टीपल चैलेंज है, टेक्निकल चैलेंज हो गए, फिर बिजनेस वाइज चैलेंज हो गए, ऑर्डर्स लाने में चैलेंज हो गए, फंडिंग वाइज चैलेंज हो गए, तो ये तो मतलब मल्टीपल आते रहते हैं लाइफ में। बट वही है कि सब चीज़ों का सोल्यूशन मिलता है पेशेंस एंड परसिस्टेंस के साथ में, कंटिन्यूसली आपको उसी चीज़ पे, अगर आप छोड़ रहे हो, आज आपको फेलियर मिला, आप बोल रहे हो कि अब मैं 4 साल से कर रहा हूँ, अभी भी सही नहीं हो रहा, से फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्निकल बोलूँ, तो अभी भी मेरा मान लीजिए अगर मैंने एक नया ड्रोन बनाया, कुछ नया हम प्रोटोटाइप बना रहे, तो मैं ये बोलूँगा कि 4 साल से मैं कर रहा हूँ बट ये सही से फ्लाई नहीं कर रहा, तो छोड़ देते हैं, बट वो सही रास्ता नहीं है। अगर हम 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लगाए, वो 4 साल की मेहनत हमारी उसमें शोकेस करेगी, फिर हाथ दिखाएगी कि नहीं मैं ये गलतियां कर रहा था एंड ये मैंने सही कर लिया, अब सही फ्लाई हो रहा है। तो पेशेंस मेन चीज़ है एंड परसिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
1: अच्छा, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ से योर फ्रेंड सर्कल, जो सोसाइटी के दूसरे लोग हैं, जो इदारे हैं, उनका क्या रिएक्शन रहा है अभी तक आपके काम के बारे में, या जो आपने अचीव किया है?
0: उनका रिएक्शन इज़ मिक्स्ड, ऐसा कुछ है नहीं किसी का सेम रिएक्शन नहीं है सबका, कुछ का रिएक्शन ये है कि मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कुछ लोगों को कि अभी भी क्या
1: सही है,
0: चल
1: बिकॉज
0: रहा
1: इट इज़ अ नॉवल
0: है, एंड
1: ये
0: कुछ लोग समझ
1: प्रोजेक्ट।
0: रहे हैं एंड दे आर अप्रिशिएटिंग, कुछ लोग जो नहीं समझ रहे हैं उनका ये रिएक्शन है कि भाई क्या है, फ्यूचर है, कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, एंड पढ़ाई नहीं की तो फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, ट्वेल्थ के बाद अगर आपने नहीं किया है कंप्लीट ग्रेजुएशन तो क्या फ्यूचर सिक्योर्ड है. बट जो लोग समझ रहे हैं उनको समझ आ रहा है कि अभी जो हमारा स्टडीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा, अभी जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है थ्रू आउट इंडिया, उसका इंडस्ट्री के साथ रेलेवेंस बिल्कुल नहीं है आजकल. ठीक है, वो बहुत ऑब्सलीट और बहुत पुराना सिस्टम है जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है. एंड जब भी कोई बंदा ग्रेजुएशन करके निकलता है, ठीक है, से एम टेक, बी टेक या कोई भी डिग्री, तो ऑन ग्राउंड जब वो किसी कंपनी में काम करता है या बिजनेस करता है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम जो उसको स्कूल में सिखाया गया होगा या कॉलेज में सिखाया गया होगा. तो यही मैंने रियलाइज़ किया था एंड दिस इज़ वाई आई ड्रॉप्ड ऑफ आउट ऑफ कॉलेज.
1: व्हाट नेक्स्ट? आप आपकी मतलब अगले 4 सालों में, 5 सालों में, अगर आप अपने आप को कहाँ देखते हो और इस प्रोजेक्ट को कहाँ देखते हो?
0: अगले 4-5 सालों
1: यू आर
0: में
1: स्टक टू इट नाउ. आप चाहते हैं कि मैंने एक परसू किया, एक ड्रीम परसू किया है, आप इसको आगे ले जाना चाहते हो.
0: सही, तो अगले 4-5 सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि एक बड़ी कंपनी हम फॉर्मेट करें जिसमें हमारे पास में मल्टीपल ऑर्डर्स हो एंड हमारे पास में
1: बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़
0: बहुत
1: जाएं.
0: सारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो जिनको मतलब विद इन कश्मीर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें. एंड इस आइडिया को जो कि आपका एजुकेशन सिस्टम है उसको बदलने का, या फिर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि
1: हाँ
0: ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि या तो सही कोर्स लो आप जो आपकी पढ़ाई में है, जो कि एक्चुअल आपको अब लाइफ में काम आएगा. कोई भी शॉर्ट कोर्सेज, जैसे अभी कोडिंग वगैरह के शॉर्ट कोर्सेज, उसमें कोई ग्रेजुएशन ऑनर्स बी टेक एम टेक करने की ज़रूरत नहीं है. उसमें कोई भी शॉर्ट कोर्स जो कि पर्टिकुलर गोल है आपका, वो अगर आप कर सकते हो विदाउट ग्रेजुएशन तो उसमें आप बेहतर रहेगा, वो करिए. एंड यही एम है हमारा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें इस चीज़ के लिए.
1: अबान, आपको लगता है कि जो कन्वेंशनल कोर्सेज हम लेते थे, हमारे बच्चे, हमारे जूनियर्स जो लेते थे, सपोज नॉर्मली MSc, MA, बाकी चीज़ें जो कन्वेंशनल कोर्सेज, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, व्हाटएवर, तो ज़माना बदल गया है. यू एग्री?
0: काफ़ी लोगों को ये चीज़ बुरा लगेगा, खासकर जो लोग कर रहे हैं या मेरे फ्रेंड्स में से भी जो लोग कर रहे
1: हाँ
0: हैं ये सब, उनको लगेगा कि हाँ हम तो सही कर रहे हैं या फिर अबान क्यों ऐसा बोल रहा है. बट यही सच्चाई है और ये सच्चाई तब रियलाइज़ होगी जब आप जाके कहीं पे जॉब करोगे या आप कहीं पे जाके बिजनेस स्टार्ट करोगे. तो ये आपको तब पता चलेगा कि अगर आपने खाली खाली लाइफ में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपना जो डिग्री है वो छोड़ दे. ठीक है, हो सकता है कोई बंदा डिग्री के साथ साथ में अपना स्किल्स पे भी काम कर रहा हो तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट जो बंदा सिर्फ और सिर्फ अपनी डिग्री के बेसिस पे सोच रहा है कि मैं 4 साल डिग्री करने के बाद बाहर वेट कर रहे हैं, मेरा लोग जॉब के लिए मेरा ही वेट कर रहे हैं, मैं कब कंप्लीट करूँ, तो वो सही चीज़ नहीं है. अगर आप अपने स्किल्स पे काम नहीं करेंगे तो कोई आपका वेट नहीं कर रहा है. वही है मेजर अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न, यही है इंडिया में, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है, लोगों को पता ही नहीं कैसे जॉब करना है, कैसे क्या करना है. क्योंकि अब मुझे कैसे पता है, मैंने खुद 2 साल जॉब किया है, 4 कंपनीज मैंने 2 साल में बदली है, 6-6 महीने मैंने काम किया हर एक कंपनी में. एंड मैं समझा हूँ कि जॉब करने में क्या स्किल्स चाहिए. और मैंने जॉब जॉब किया था 12th के बाद ही.
1: जी
0: एंड मैं हायर्ड था एज ए सीनियर सिस्टम इंजीनियर इन माई फर्स्ट कंपनी. एंड जो मैंने अभी लेटेस्ट छोड़ी फिर तो वो था एज ए टीम लीड. तो वहाँ पे मेरे से ज़्यादा, मेरे अंडर जो काम कर रहे थे वो मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड थे, एमटेक लोग थे, एरोस्पेस इंजीनियर्स थे.
1: बट यू यू वर देयर बॉस.
0: आई वॉज देयर बॉस. तो यही यही यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है विद रियल लाइफ स्किल्स एंड जो हमारा पुराना सिस्टम है एजुकेशन का उसमें.
1: यू वॉन्ट, आई मीन, ऐसी ये सिचुएशन चेंज हो जाए, एज ए यंग एंटरप्रेन्योर, एज ए यंग इनोवेटर, ये सिचुएशन चेंज होनी चाहिए.
0: ये सिचुएशन चेंज होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है. कब तक हम लोग मतलब ऐसा अपने, मतलब मेरे हिसाब से तो हर किसी इंसान के 4 साल अगर ज़ाया हो रहे हैं उससे बेहतर है कि मैंने अगर 4 साल अपने बिजनेस में लगाए तो ठीक है, पिछले 2 साल से हम प्रॉफिटेबल हैं. अब 4-5 साल लगाने के बाद, अब वहीं जाके जो बंदा अभी एम टेक बी टेक कर रहा है, अब उसने 4 साल उसमें लगाया, अब उसको और 4 साल या तो बिजनेस में लगाने हैं 4-5 साल, या फिर और
1: या
0: चार
1: फिर
0: पाँच साल
1: पढ़ाई में लगाने हैं, PhD करना है या MPhil करना है, ऐसी
0: वो करने के बाद भी उसको 4-5 साल. अब आप बोल रहे हैं कि पढ़ाई में वो 10 साल लगा रहा है, ठीक है, मैं तो 4 साल गिन रहा था, अब 10 साल वो पढ़ाई में लगा रहा है अपना PhD करने के बाद, अब उसके बाद और 4 साल उसको लगाने हैं जॉब में, जहाँ पे फिर वो इस लेवल पे पहुंचेगा कि वो अपना ठीक ठाक उसको सैलरी मिले, या बिजनेस में उसको अगेन 5 साल लगाने हैं जहाँ पे वो अपना प्रॉफिटेबल बना पाएगा कंपनी को. तो उससे अच्छा ये है कि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा हो कि 11th 12th में ही हमारे स्टूडेंट्स को स्किल्स सिखाई जाए एंड वो 11th 12th के बाद ही जॉब या तो बिजनेस करने के लायक हो जाए तो वो सबसे बेहतर रहेगा।
1: आपकी मिसाल देते होंगे सपोज इनक्यूबेशन सेंटर वाले कि बाकी बच्चों को भी कहते होंगे कि देखिए जी अबान हबीब ने छोटी उम्र में ऐसा कारनामा अंजाम दिया, तो कैसा लगता है उस वक्त?
0: तो उस वक्त तो ऐसा लगता है कि हाँ मतलब गाइड करना चाहिए लोगों को। काफ़ी सारे लोग आते हैं हमारे पास कि गाइडेंस के लिए कि कैसे करें हम।

0: अगर हम छोड़ दें घर वालों को कैसे समझाए। तो उस टाइम पे हम गाइड करते हैं लोगों को, अच्छा भी लगता है कि ठीक है, मतलब जो रास्ता चूज़ किया था वो सक्सेसफुल रहा, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बस यही मैं कहूँगा कि सब मतलब सोचे कि अगर आप कर रहे हैं अपना कोई भी डिग्री कर रहे हैं, साथ साथ में अपना स्किल्स पे भी काम करें।
1: इसके बगैर कोई आइडिया जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं इन फ्यूचर,
0: इसके बगैर जैसे कि
1: जैसे कोई भी आइडिया, जैसे आपने ये एक रोबो वाला जो है,
0: हाँ
1: जो कि जो मैं पढ़ रहा था कि मतलब जो डिजास्टर रिलीफ में कितना काम आ सकता है, क्या आइडिया है, लाइफ सेविंग मेडिकल ट्रांसपोर्ट में कितना ये
0: हाँ
1: काम आ सकता है, इसके
0: हाँ
1: बगैर इन एडिशन टू
0: इसके इसके
1: दिस।
0: बगैर
1: हाँ
0: डिफेंस डिफेंस में भी है, काफ़ी पोटेंशियल है डिफेंस में भी। एंड थोड़ा बहुत काम हम भी कर रहे हैं, कुछ ड्रोन्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। मेडिकल में काफ़ी, मतलब मेडिकल के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, उसमें हमने ये प्रोजेक्ट किया था कि हमारा हिमाचल प्रदेश में जैसे श्रीनगर जैसा टेरेन तो नहीं है, वहाँ ज़्यादा पहाड़ है, ठीक है। श्रीनगर तो हमारी वैली है, बट हिमाचल प्रदेश में पूरा का पूरा, मतलब जो गांव विलेज सिटी सब कुछ पहाड़ों पे ही बेस्ड है। तो वहाँ पे अराउंड 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर ट्रैवल करने में 6 से 7 घंटे का टाइम लगता है
1: जी
0: ड्यू टू हिल्स। वहाँ पे हमने क्या एक प्रोजेक्ट किया था, हम 100 ब्लड सैंपल्स लेके जाते थे गाँव वाले हॉस्पिटल से, एंड उसको हम ट्रांसपोर्ट करते थे शहर के हॉस्पिटल में,
1: जी
0: फ्रॉम अर्बन टू रूरल, ठीक है। वो बाई रोड डिस्टेंस था, 7 घंटे का ट्रैवल टाइम था उसका, 150 किलोमीटर था वो अराउंड। जब हम रेकी करने जाते थे तो हम बस से या कैब से जाते थे, तो वही 6 7 घंटे लगते थे। एंड हम ये 100 ब्लड सैंपल्स जो है ड्रोन के थ्रू भेज रहे थे फिर,
1: हाँ
0: एंड ड्रोन में 45 मिनट्स का टाइम लग रहा था वो 100 सैंपल लेके जाने में हमें, जहाँ पे बाई रोड 7 घंटे लगते थे। मतलब अगर आज आपने 12 बजे के अराउंड
1: देखो, ये तो
0: टेस्ट
1: एक
0: सैंपल दिया गाँव में, तो आपका नेक्स्ट डे ही रिपोर्ट आएगा। मतलब अगर आपका इमरजेंसी है
1: यानी
0: तो आपका रिपोर्ट नहीं आएगा।
1: ये तो आप अब बहुत सा टाइम बचता।
0: 45 मिनट्स आपने अभी
1: हाँ
0: सैंपल दिया, 1 घंटे में आपका रिपोर्ट आ गया।
1: राइट
0: मतलब अगर आपकी इमरजेंसी है तो हम इमरजेंसी फ्लाइट निकालेंगे, मतलब अभी आपने सैंपल दिया, ऑपरेशन है किसी का उस हॉस्पिटल में, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विद इन 45 मिनट्स।
1: वंडरफुल। अच्छा अब आखिरी मैसेज क्या होगी अपने जो हमारे सुनने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी तशहीर का जरिया भी है कि आपने जो कारनामा अंजाम दिया है, वंडरफुल सक्सेस स्टोरी, क्या मैसेज रहेगी आखिर पर?
0: मेरा यही है कि लोग लाइफ में अपनी रिस्क ले, ठीक है। सेफ खेलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास जब तक हम यंग है तब तक हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास फैमिली का प्रेशर नहीं है, मतलब हमारी शादी नहीं हुई है तो हमारे पास कमाने का प्रेशर नहीं है। तो हमारे पास, मतलब बुढ़े होके जो लोग बिजनेस करते हैं शादी करने के बाद, उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है। बट अभी हम यंग है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो स्टार्ट डूइंग बिजनेस, स्टार्ट गेनिंग स्किल्स, एंड रिस्क लेना स्टार्ट
1: थैंक यू
0: करें। कन्वेंशनल से
1: अबान,
0: बाहर निकले हम।
1: थैंक यू
0: थैंक यू सो
1: अबान,
0: मच।
1: आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो सामईन हैं, सुनने वाले हैं, उनको भी अच्छा लगेगा, और ख़ास तौर से जो नौजवान हैं जो ये प्रोग्राम सुनेंगे तो उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि आपने एट दिस एज 23 साल की उम्र में इतना जो आपने हासिल किया है कि उनके लिए भी एक मशाल राह साबित होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सामीन इसी के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।

0: अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम पेशरफ्त, पेशकश वसीम फारूक।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर, मीडियम वेव 78.8 मीटर ते एफएम 2 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, रात संज 10 बजे। समय पेश छु कशरन बतन पर अपनी प्रोग्राम तुहस फरमाइश।

हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर के अलावा FM 2 103.5 MHz पर। शब के 11 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन समाप्त करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर

0: समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्युआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतुकोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह 8:45 पर। एक और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जेके बैंक डायरी ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 9:45 पर रेडियो साथी। ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आप सुनेंगे सुबह 10 बजे। मकामी अखबारात की सुर्खियां पेश होंगी सुबह 9 बजे। बच्चे अपना मनपसंद प्रोग्राम हुनहर सुनेंगे सुबह 10:30 पर। सुबह 11 बजे सोमनाथ साधु का लिखा कश्मीरी ड्रामा नश होगा चपात। दिन में 1:10 पर मगरबी मौसीकी का हफ्तावार प्रोग्राम पेश होगा संडे रिक्वेस्ट शो। हमारी शोबा खबर का तैयार करदा प्रोग्राम नई मंजिलें ब्रॉडकास्ट होगा दिन में 2:30 पर। पहाड़ी प्रोग्राम 4 बजे पेश होगा। पंजाबी प्रोग्राम नश होगा 4:30 पर। गोजरी प्रोग्राम शाम 5 बजे पेश होता है। शाम 6:05 पर गैमी बाइन हिंद खतर प्रोग्राम में मामूल के अलावा मोहम्मद असलम खान के साथ गुफ्तगू होगी। मौजू है मार्च वबदाउन रोजगार को वसीला। शहरबीन नश्र होगा शाम 7 बजे। वादी की आवाज़ प्रोग्राम रात 8 बजे और रात 9 बजे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हम सफर पेश होगा। कल के प्रोग्राम का मौजू है कुर्बानी के आदाब व अहकाम। मुकर्रर है मौलाना फयाज अहमद जरू। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है सलीम एजाज कपरा। समीन ये इस गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा होगा। ये थी तफसील हमारे कल नश्र होने वाले चंद प्रोग्रामों की। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन की आवाज़ है। शब के 11:13:20 हुए हैं। हमारी आज की नशरियात अब यहीं पर बर्खास्त होती है। मामूल की नशरियात लेकर कल सुबह 6:28 पर हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शब खैर। जय हिंद।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है गीत मेरे मन मीत का, और इसमें हम सुनवाते हैं आपको गोल्डन एरा के गाने बिना रुके।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये सफर है गीत मेरे मनमीत का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी आप सभी के साथ। और गीत मेरे मनमीत में हम और आप सुनते हैं गोल्डन एरा के गीत, और वो भी बिना रुके।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। इसी के साथ दीजिए माधुरी को इजाजत गीत मेरे मनमीत से। आप बने रहे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।

0: सृष्टि की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने नई दिल्ली में साकुरा साइंस प्रोग्राम 2026 में भाग लेने वाले छात्रों के एक दल को रवाना किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी स्कूलों के 56 छात्र, जिनमें 24 लड़के और 32 लड़कियां शामिल हैं, 4 पर्यवेक्षकों के साथ इस महीने की 30 तारीख तक जापान यात्रा पर रहेंगे। इस कार्यक्रम में घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभागियों के साथ हिस्सा ले रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये सभी छात्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। भारत अप्रैल 2016 से इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। चीन के शांसकी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूवान काउंटी की लियूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार तथा दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग के अंतर्गत 5वें उप कार्य समूह भूमि की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क महानिदेशालय ADGPI ने कहा कि यह बैठक भारतीय सेना और रूसी थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 196 रन बनाए। 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Teerth in New Delhi. Mr. Modi said in a social media post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jay Shankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a 4-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. Defence Minister Rajnath Singh has inaugurated the artillery shell manufacturing plant established at the Savli Vihir Industrial Estate in Shirdi, Maharashtra yesterday. The project developed by Naib Limited will manufacture 155mm artillery shells and has the capacity to produce 5 lakh shells annually. Speaking on the occasion, the Defence Minister said that India is preparing itself for future warfare and becoming self-reliant in defence manufacturing through the Make in India initiative.
3: सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई

गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पर लिखी एक और कहानी, गुमराह। जी हाँ, मुझे भी याद आ रही है ऐसी एक कहानी जिसे याद करके कभी दिल तो कभी आंखें भर जाती हैं। निशा उस दिन कॉलेज से लौटकर चेंज ही करने जा रही थी कि अचानक डोरबेल बजी। कौन हो सकता है इस समय? माँ तो अभी अभी सब्जी लेने गई हैं। यही सोचती सोचती निशा ने दरवाजा खोला। सामने माँ खड़ी थी, लहूलुहान, अस्त व्यस्त, बदहवास, घबराई हुई। क्या हुआ माँ? माँ को इस हालत में देखकर निशा घबरा गई। बेटा, वो अभी मैं जाहिर

थी कि अचानक पीछे से दो लड़के बाइक पर सवार होकर आए और मेरी चेन खींचकर भाग गए। बोलते बोलते माँ रो पड़ी। कोई नहीं माँ, आप तो ठीक हो ना? निशा ने माँ को सहारा दिया, लेकिन वो घबराई हुई थी। बोली, बेटा वो चेन तेरे पापा की आखिरी निशानी थी। ये कहकर माँ फबक पड़ी। माँ के कपड़े मिट्टी में सने थे, गिरने से घुटने छिल गए थे, गले में खरोंचे आई थी जिससे खून बह रहा था। निशा माँ को लेकर पहले डॉक्टर के पास और फिर पुलिस स्टेशन गई और कंप्लेंट लिखा आई। वो सोच रही थी कैसे भटके हुए ये लड़के हैं, जरा भी संवेदना नहीं, माँ जैसी महिलाओं से इस तरह की क्रूरता। उसे एक पुराना गीत याद आने लगा था।

अगले दिन पुलिस स्टेशन से फोन आया। कुछ लड़कों को पकड़ा था उन्होंने। निशा की माँ को शिनाख्त के लिए बुलाया था। निशा माँ को लेकर पुलिस स्टेशन गई। कुछ लड़कों को उनके सामने लाया गया। उनमें से एक को देखकर माँ बोली, हाँ हाँ यही है वो इंस्पेक्टर साहब। निशा जो अभी तक कुछ कागजी कार्रवाई में व्यस्त थी, माँ की आवाज सुनकर नजर उठाई तो देखा कि वो लड़का लगातार निशा को ही देखे जा रहा था। निशा को उसकी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगी। निशा ने याद करने की कोशिश की, कहाँ देखा है इसे, कहाँ देखा है। फिर हाँ, अचानक ख्याल आया, अरे ये तो उसका क्लासमेट है, प्रेम। निशा के होश उड़ गए। सामने प्रेम खड़ा था। उसे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हुआ। प्रेम आज एक अपराधी, एक चेन स्नैचर के रूप में उसके सामने खड़ा था।

आज सालों बाद प्रेम को देखकर निशा की आंखों में कॉलेज के पहले दिन से लेकर अभी तक की एक एक घटना किसी चलचित्र की भांति घूमने लगी। दिल्ली में वो उसके कॉलेज का पहला दिन था। मेरठ में अपने घर के नजदीक के स्कूल से 12वीं पास आउट करने के बाद उसने दिल्ली के एक कॉलेज से LLB करने की सोची और फिर आ गई दिल्ली। साथ में माँ ने भी बेटी की पढ़ाई को तरजीह दी और कुछ दिनों के बाद दिल्ली के मॉडल टाउन में आकर किराए पर रहने लगी। निशा के लिए ये एक अनजान जगह थी, न कोई सहेली, न कोई मित्र और न ही किसी से कोई जान पहचान। घर में उसकी माँ के सिवा उसका कोई और ना था। पिता आर्मी में थे और जब निशा छोटी थी तभी एक ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। बचपन से माँ ने उसे अकेले ही पाला था, जिसका निशा को पल पल एहसास था। और अब वो कानून की पढ़ाई करना चाहती थी ताकि एक ऊंचा मकाम हासिल कर अपनी माँ को वो सारी सुख दे सके जो उन्हें नहीं मिला। निशा का लक्ष्य उसका करियर था।

0: रहे।
1: निशा पूरे मन से पढ़ाई में अपना ध्यान लगा रही थी। उन्हीं दिनों एक लड़का अक्सर निशा का पीछा करता हुआ दिखाई देता। निशा उसे लगातार इग्नोर कर रही थी। एक दिन हद तो तब हो गई जब उस लड़के ने सामने से आकर निशा को प्रपोज कर दिया। निशा रुको। निशा रुक गई। जी बोलिए। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुनकर निशा सन्न रह गई। लेकिन मैं आपको नहीं जानती, आप कौन है? जान जाओगी धीरे धीरे, वो लड़का लापरवाही से बोला। वैसे प्रेम नाम है मेरा, याद रखना, प्रेम जो चाहता है वो हासिल करके रहता है। ये कहता हुआ प्रेम चला गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि किसी भी लड़की का पीछा करना, उसे परेशान करना, उस लड़की को कितना मानसिक तनाव देता है। उसे नहीं पता था कि स्टॉकिंग एक अपराध है। प्रेम की बातें सुनकर निशा बहुत डर गई। घर आकर उसने माँ को सारी बातें बताई। माँ ने उसे समझाया और निडरता से अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने को कहा। निशा वास्तव में इधर उधर की बातों में अपना समय नहीं गंवाना चाहती थी, लेकिन जितना जितना वो प्रेम से दूर भागती थी, प्रेम कहीं ना कहीं उसका पीछा करता हुआ दिखाई दे ही जाता था। प्रेम लगातार निशा का पीछा कर रहा था और निशा सहमी हुई थी।
2: अरे वही तो है।

साथियों, आप सुन रहे हैं कहानी गुमराह। इस कहानी में निशा, जो कि एक कॉलेज गर्ल है, वो अपनी पढ़ाई पूरी तन्मयता से कर रही है। एक दिन उसकी माँ कुछ चेन स्नेचर का शिकार हो जाती हैं और पुलिस स्टेशन में माँ बेटी उन स्नेचर्स के शिनाख्त के लिए जाती हैं। तो निशा याद करती है कि उनमें से एक लड़का उसका पहले का क्लासमेट है, जो उसका पीछा किया करता था। अब आगे की कहानी। निशा को पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सोचता था और प्रेम को निशा के सिवा। लेकिन निशा इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ थी कि प्रेम के दिल में दरअसल क्या चल रहा है और वो किस हद तक जा सकता है। और फिर जब वैभव से जान पहचान हुई तो निशा को ध्यान ही नहीं रहा कि प्रेम जैसा कोई इस कॉलेज में है भी। वैभव जहां पढ़ने में बहुत तेज था, तो वहीं एक संपन्न घराने से भी ताल्लुक रखता था। दोनों के विचार और करियर का लक्ष्य भी एक ही था, इसलिए निशा और वैभव में दोस्ती होते देर न लगी।

उधर प्रेम को निशा का वैभव से बात करना नागवार लग रहा था। उसे लगने लगा कि निशा वैभव की दौलत देखकर उसकी ओर खींच रही है। उसके अंदर हीन भावना पनपने लगी और वो वैभव से चिढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि निशा ने दौलत की खातिर उसका प्यार ठुकरा कर वैभव से दोस्ती की है। एक तरफा प्यार में तड़पते प्रेम को दिल का टूटना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो निशा को अमीर बन के दिखाएगा, ढेर सारी दौलत कमा कर दिखाएगा। अब वो भटकने लगा, उसके कदम आवारा होने लगे। वो उस रास्ते पर बढ़ने लगा जहां कोई रिश्ता नहीं जाता, सारे रिश्ते छोड़ जाते हैं और इंसान अकेला रह जाता है।

प्रेम बिना मेहनत किए ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाना चाहता था, सो वो कुछ आवारा और अपराधी टाइप के लड़कों के संपर्क में आ गया। धीरे धीरे चोरी, रहजनी, स्नैचिंग उसका पेशा बनता चला गया। उसने दौलत तो हासिल की, मगर उसका जमीर मर गया। उसने खुद अपने ही हाथों अपनी संवेदना और इंसानियत का गला घोट दिया। निशा से प्रेम के दावे करने वाला प्रेम आज निशा का ही अपराधी बनकर निशा के सामने खड़ा था।

निशा जी, आप घर जा सकती हैं। कोई जरूरत पड़ी तो आपको बुला लिया जाएगा। इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर निशा की तंद्रा भंग हुई और वो ख्यालों की दुनिया से वापस लौटी। उसने माँ को कैब में बिठाकर घर जाने को कहा और कुछ काम का बहाना कर वापस पुलिस स्टेशन लौट आई। हजारों प्रश्न आंखों में लिए वो प्रेम के सामने खड़ी थी और प्रेम के रंग बिरंगे सपनों का महल एकाएक भरभरा कर गिर पड़ा। जोशो जुनों में उसने जो गलत रास्ता इख्तियार किया था उसकी असलियत सामने आ गई थी। मगर इंसान इतनी आसानी से खुद को गुनहगार कहां मानता है।

वो अपना गुनाह छिपाने के लिए अपना दोष दूसरों पर मट देता है, और यही प्रेम ने भी किया। उसे लगने लगा कि इस सब की जिम्मेदार निशा है। ना वो वैभव की ओर आकर्षित होती और ना ही वो इस हाल में होता। उसका कमजोर मन निशा को ही दोष दिए जा रहा था।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी और आज की कहानी गुमराह आपको सुना रही है कुसुमलता। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है इसको हमें बताना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldaiardelhi@gmail.com। आपकी ईमेल का हमें इंतजार रहेगा और अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आप रोज सुनते हैं, मैं फिर बता देती हूँ, 9868868653 9868868653। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल आईडी मैं आपको बता चुकी हूँ fmgoldaiardelhi@gmail.com। तो आइए इस कहानी को जारी रखते हैं। सुना रही हैं आपकी कुसुमलता।

निशा को सामने देख प्रेम मानो फट पड़ा। मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो निशा, सिर्फ तुम। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुम मुझे छोड़कर उस वैभव के पास चली गई। मैंने तुम्हारे

दौलत कमाने का ये रास्ता अपनाया। अगर मैं दोषी हूं तो तुम भी बराबर की जिम्मेदार हो। कान खोल कर सुन लो, सजा मुझे ही नहीं तुम्हें भी मिलनी चाहिए। और इस तरह से प्रेम सारा दोष निशा पर मढ़े जा रहा था।

निशा जो अब तक चुप थी, प्रेम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बोली, प्रेम हम कॉलेज में प्यार करने के लिए आते हैं या अपना करियर बनाने, अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देने, अपनी जिंदगी को

निशा जो अब तक चुप थी प्रेम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बोली, प्रेम हम कॉलेज में प्यार करने के लिए आते हैं या अपना करियर बनाने, अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देने, अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देने। मुझे तो उसी वक्त तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए थी जब तुमने मुझे रास्ते में रोककर परेशान किया था। रही बात प्रेम की, तो तुम किसी से क्या प्रेम करोगे प्रेम, जब जन्म देने वाले माँ बाप से ही तुम प्रेम नहीं कर पाए, उनकी उम्मीदों पर ही खरे नहीं उतरे। आखिर जिसने तुम्हें जन्म दिया उनके प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी थी, उन्होंने बड़े अरमानों से तुम्हें कॉलेज भेजा और तुम यहाँ अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देने के बजाय प्रेम का बहाना कर आवारा गर्दी करने लगे। तुम कहते हो तुम दौलत कमाने के लिए मेरी वजह से गलत रास्ते पर गए। क्या दौलत सिर्फ गलत रास्ते पर ही चलकर कमाई जा सकती है? सही रास्ते पर चलकर भी तो खुद की काबिलियत को निखारा जा सकता है। और हर इंसान को भगवान इतनी तो समझ देता है प्रेम कि वो अच्छे और बुरे रास्ते की पहचान कर सके।

अग सिखाता है, दूसरों का भला करना सिखाता है, लूटना नहीं। तुम खुदगर्ज और स्वार्थी इंसान हो प्रेम, प्यार ने तुम्हें छुआ तक नहीं है। जिस दिन तुम्हें वाकई प्रेम करना आ जाएगा ना प्रेम, उस दिन तुम मेरा तो क्या, किसी का भी अहित ना कर सकोगे। लेकिन अगर तुम्हें प्यार करना आ गया तो

निशा की बातें अब भी प्रेम की समझ में नहीं आ रही थी। वो बोला, निशा मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मेरे प्यार की कद्र ना की। प्रेम निशा को ही दोष दिए जा रहा था। निशा एक व्यंगात्मक हंसी हंसकर बोली, प्यार की बात तुम करते हो प्रेम, तुम प्यार के बारे में जानते भी हो? प्यार

ये कहकर निशा पलटी तो देखा कि सामने प्रेम की मां खड़ी थी। उन्होंने निशा और प्रेम की सारी बातें सुन ली थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मानो वो बिना कहे ही अपने बेटे की करतूतों की माफी मांग रही थी। प्रेम ने मां को देखा तो उसकी भी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी इस रास्ते पर नहीं चलूंगा, बस मुझे इस पुलिस स्टेशन से बाहर ले चलो। प्रेम की मां निशा की ओर देखने लगी और याचना भरे लहजे में बोली, माफ कर दो बेटी, मैं जिम्मेदारी लेती हूं कि ये अब ऐसा कभी नहीं करेगा। काश कि आपने जिम्मेदारी ली होती आंटी, काश कि सच में आपने अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाया होता तो प्रेम यहां नहीं होता। इनफैक्ट अगर सभी माएं बचपन से ही अपने बेटों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाएं, उन्हें अच्छे से संस्कार दें, लड़कियों का सम्मान करना सिखाएं, उनकी भावनाओं उनकी इच्छाओं का मान रखना सिखाएं, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि कोई भी लड़का कम से कम इस तरह के अपराध तो नहीं करेगा। आंटी, हम अपने घरों में लड़कियों को तो हमेशा से सिखाते रहे हैं ना कि बेटा सही से कपड़े पहनो, देर रात तक घर से बाहर मत रहो, बड़ों का सम्मान करो। आखिर ये सब हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते, आखिर क्यों नहीं सिखाते? तुम ठीक कहती हो बेटी, अगर हम अपने लड़कों का भला चाहते हैं तो अब उन्हें ही सिखाने की बारी है। लेकिन अभी अभी प्रेम को माफ कर दो प्लीज। ठीक है आंटी, आपके लिए, क्योंकि आप भी मेरी माँ की तरह एक माँ हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी भी माँ को पीड़ा पहुंचे, इसलिए मैं इतना कर सकती हूँ कि प्रेम की बेल हो जाए। बस अब प्रेम से कहना कि वो सही रास्ते पर चले।

साथियों, तो ये थी आज की कहानी गुमराह। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का निर्देशन और प्रस्तुतिकरण किया रश्मि कुकरेती ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।

0: इस दौरान भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने नई दिल्ली में साकुर साइंस प्रोग्राम 2026 में भाग लेने वाले छात्रों के एक दल को रवाना किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 56 छात्र, जिनमें 24 लड़के और 32 लड़कियां शामिल हैं, चार पर्यवेक्षकों के साथ इस महीने की 30 तारीख तक जापान यात्रा पर रहेंगे। भारत इस कार्यक्रम में घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभागियों के साथ हिस्सा ले रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये सभी छात्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। भारत अप्रैल 2016 से इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। चीन के शांशकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूआन काउंटी के लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। रूस ने कहा है कि परमाणु अप्रसार संधि NPT के समीक्षा सम्मेलन में अंतिम दस्तावेज को मंजूरी नहीं मिल सकी, क्योंकि कुछ मुद्दों पर अमेरिका के कड़े रुख के कारण सहमति नहीं बन पाई। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राजदूत डो हुंग वियत के प्रयासों और अन्य जिम्मेदार देशों के समर्थन से कई समझौते किए गए तथा सहमति के करीब एक मसौदा अंतिम दस्तावेज के लिए तैयार किया गया। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 196 रन बनाए, जिस लक्ष्य को पंजाब ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to the regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi yesterday. Mr. Modi said in a social media about that post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a 4-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific, inaugurating the U.S. Embassy support and its building in New Delhi. Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for PAC Silica.
2: We've expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
1: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing. In the 19th edition of the Rozgar Mela, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations were distributed.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं सुरभि आपके साथ। कभी कभी लगता है जैसे तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं बिना कहे। उसमें अपनापन भी है, शरारत भी और एक एहसास भी जो दिल को तुम्हारे पास खींच लाता है बार बार। शायद मोहब्बत का एहसास ऐसा ही होता होगा जब किसी के ना होने के बावजूद दिन खूबसूरत लगने लगे और उसकी मुस्कुराहट जब भी याद आए दुनिया खिल जाए। बहुत खूब कहा है किसी ने कि वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनास नहीं, मेरे इलाज मेरे चारागर के पास नहीं। वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनास नहीं।

रात की खामोशी में एक चेहरा ऐसा भी होता है जो याद बनकर दिल में समा जाता है, और फिर उनकी एक मुस्कान ऐसा असर करती है जैसे चेहरे पर बिजली गिर पड़ी हो, और ये दिल बस मुस्कुराता रह जाता है।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सौरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूब कहा किसी ने कि हुस्न को दिल में छुपाकर देखो, हुस्न को दिल में छुपाकर देखो, ध्यान की शमा जलाकर देखो, फाख्ता चुप है बड़ी देर से क्यों, सरों की शाख हिलाकर देखो, दिल में बेताब है क्या क्या मंजर, दिल में बेताब है क्या क्या मंजर, कभी इस शहर में आकर देखो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के

0: हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं सुरभि। बहुत खूब कहा किसी ने कि करता उसे बेकरार कुछ देर, करता उसे बेकरार कुछ देर, होता अगर इख्तियार कुछ देर। आंखों में कटी पहाड़ सी रात, आंखों में कटी पहाड़ सी रात, सोजा दिले बेकरार कुछ देर। ए शहरे तरप को जाने वालो, ए शहरे तरप को जाने वालो, करना मेरा इंतजार कुछ देर, करता उसे बेकरार कुछ देर, होता अगर इख्तियार कुछ देर।

और इस गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। हमारी मुलाकात होगी रात सुरमई प्रोग्राम में। और अब सुरभि को दीजिए अनुमति, आप कुछ ही देर में सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार यह अभियान खौनी पालवा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस बेहद खूबसूरत गीत के साथ। फिल्म है कलाकार

कभी यूं मिले कोई मसलेहत, कोई खौफ दिल में जरा ना हो, मुझे अपनी कोई खबर ना हो, तुझे अपना कोई पता ना हो, वो फिराक हो या विसाल हो, तेरी याद महकेगी एक दिन, वो गुलाब बनके खिलेगा क्या जो चिराग बनके जला ना हो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात आंखों में ढली पलकों पे जुगनू आए, रात आंखों पे ढली पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए, रात आंखों में ढली पलकों पे जुगनू आए। उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया है, उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया है, मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए, किस तकल्लुफ से गले मिलने का मौसम आया, किस तकल्लुफ से गले मिलने का मौसम आया, कुछ कागज के फूल लिए कांच के बाजू आए। उन फकीरों को गजल अपनी सुनाते रहियो, उन फकीरों को गजल अपनी सुनाते रहियो, जिनकी आवाज में दरगाहों की खुशबू आए। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी खुशबू, कोई खुशबू मैं लगाऊं तो तेरी खुशबू आए।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। खुदा से रोज तुमको मांगता हूं, मेरी चाहत इबादत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। वो चेहरा चांद है आंखें सितारे, वो चेहरा चांद है आंखें सितारे, जमी फूलों की जन्नत हो गई है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, चले भी आओ मुद्दत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है।

हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। वो चेहरा चांद है आंखें सितारे, वो चेहरा चांद है आंखें सितारे, जमी फूलों की जन्नत हो गई है। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, चले भी आओ मुद्दत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है।

और सौदागर फिल्म के इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण भी साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए एक तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजेरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये अभियान खोनी पालवा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन म्यूजो जिलराई पावल MZP ने मुख्यमंत्री लाल दुहोमा पर राजनीतिक धोखे और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की विवादित पुनर्नियुक्ति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी कर लाल रोहिंगड़ी को पुनर्नियुक्त करने को मंजूरी दी थी। वे 23 अप्रैल को वाणिज्य और उद्योग तथा भू विज्ञान और खनन विभाग में

अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रही थी और 1 मई से उन्हें पुनः सेवा में लिया गया। अमेरिका के सांसदों और आवर्जन अधिकारी कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की कड़ी आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने गृह देश से ही आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमरीकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि ये छूट H-1B वीजा पर काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों पर भी लागू होती है या नहीं। फिलहाल USCIS ने कहा है कि देश के भीतर रह रहे लोगों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 197 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। पंजाब किंग्स की ओर से श्रेयस अय्यर ने नाबाद शत की पारी खेली, उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत है आप सभी का इस रात और सुबह के बीच के खूबसूरत सफर पर। ये शांति और सन्नाटा, जब आधी दुनिया मीठी नींद सो रही है और आधी दुनिया अपनी आंखों में नए ख्वाब लेकर जाग रही है। जी हाँ, आप अकेले नहीं हैं, हम हैं आपके साथ इस शांत से सन्नाटे में, आपकी तन्हाई को सुरों से सजाने के लिए। समय हुआ है 3:11 और 41 सेकंड। आप हैं हमराही कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं आप ही के पसंदीदा चैनल, आपके अपने चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। हमराही कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। नमस्कार।

इस गहरे और खूबसूरत सन्नाटे में जब रेडियो पर कोई युगल गीत बजता है, यानी दो आवाजों की जब जुगलबंदी गूंजती है, तो लगता है जैसे दिल को किसी का इसी तरह से खूबसूरत सा साथ मिल गया है। जी हाँ, हम हैं आपके साथ हमराही कार्यक्रम में और आप इसे सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। फिल्म महल का ये गीत आप सभी के लिए किशोर कुमार साहब की आवाज में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नब्बे वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
2: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
1: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
2: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल, आपका अपना चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 3:28 और 6 सेकंड। आप हैं हमराही कार्यक्रम में अपनी ही दोस्त रूपा के साथ। साथियों कहते हैं कि अकेले चलना आसान हो सकता है, लेकिन असली सफर का मजा तो तब आता है साथ हो, चाहे वो जिंदगी का सफर हो या फिर सुरों का। और ये खूबसूरत रिश्ता बंधा होता है एक रिश्ते की

इस खामोश रात में हवाएं भी कुछ कह रही हैं। दिल की धड़कनें अब काबू में कहां रह रही है। जरा धीरे से मुस्कुराकर कह दो उसे जो कहना है। जरा धीरे से मुस्कुराकर कह दो उसे जो कहना है। हमारी और आपकी सांसें बह रही हैं।

अब तो ये जिंदगी तेरे बिना एक पल भी चलती नहीं, अब तो ये जिंदगी तेरे बिना एक पल भी चलती नहीं। तेरा साथ इतना सुहाना लगे जैसे रेशम की डोरी नहीं। कभी कभी साथ इतना अच्छा लगता है कि दिल चाहता है कि कोई भी पल आपस में जुदाई का सबब ना बने, लेकिन वक्त के हाथों सभी मजबूर हैं। कभी ना कभी तो जुदाई का सबब आता ही है। फिलहाल आप हैं हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 3:40 और 39 सेकंड। आप हैं हमराही कार्यक्रम में के साथ। आइए सुनते हैं फिल्म रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से ये गीत किशोर कुमार साहब और लता जी की आवाजों में।

वक्त की रेत हाथों से इस कदर फिसल जाती है, वक्त की रेत हाथों से इस कदर फिसल जाती है, कुछ यादें उम्र भर के लिए दिल में ठहर जाती हैं। क्या पता कल ये रात, ये समा, ये साथ हो या ना हो, चलो आज इस पल को जी लें, क्या पता फिर ऐसी सुबह आती है या नहीं आती है। लेकिन जनाब, हम तो बिल्कुल वादे के पक्के हैं, जब समय होता है आपसे मुलाकात का तो बस झटपट से चले आते हैं आकाशवाणी के पास और जो राहें मिलवाती हैं हमें आपसे। फिलहाल समय हुआ है 3:46 और 14 सेकंड। सुनते हैं एक और मधुर सा युगल गीत जिसे हमने शामिल किया है आया सावन झूम के फिल्म से, लता जी और रफी साहब के स्वर में।

हमराही के सफर पर आप हैं रूपा के साथ, और फिलहाल जो गीत आपको सुना रहे हैं वो है जॉनी मेरा राम फिल्म से किशोर साहब और आशा जी की आवाजों में आज की आखिरी पेशकश।

0: अरुणिमा के सफर पर आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल रूपा को विदा दीजिए हमराही की कार्यक्रम से। आप सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण भी साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की अध्यक्षता में 21 और 22 मई को नई दिल्ली में 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह CTWG की पूर्ण बैठक और उप समूहों की बैठकें आयोजित की गई। ये बैठकें CTWG की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने उद्घाटन दिवस पर मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों के महत्व पर बल दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजेरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान खोनी पलावा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध ढंग से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन म्यूजो जिलराई पावल MZP ने मुख्यमंत्री लाल दुहोमा पर राजनीतिक धोखे और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की विवादित पुनर्नियुक्ति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी कर आर लाल रोडिंगी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी। वे 30 अप्रैल को वाणिज्य और उद्योग तथा भू विज्ञान और खनन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रही थी और 1 मई से उन्हें पुनः सेवा में लाया गया। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। यह विस्फोट क्यूआन काउंटी के लियूसेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी

नमस्कार प्रणाम, आप हैं अपने ही चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह की 4:11 और 30 सेकंड। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ।

अरुणिमा यानी वो सुबह की लालिमा जो दिन हमारे जीवन में एक नई उम्मीद और आशा का सवेरा लेकर आती है। तैयार रहें हर पल हर क्षण, क्योंकि आपकी जो उम्मीद है और आशा है उसी से ही आपके जीवन का सफर और भी आसान हो सकता है। तो इस आशा की किरण को अपने हाथों से फिसलने ना दीजिए, अपने दिल को काबू में रखिए और जोश को और भी ज्यादा बनाकर रखिए, क्योंकि ये जिंदगी तारों से भरी हुई है। तो लाखों तारे भी हमारे पास हैं जो हमारे गमों को, गम की काली रातों को दूर करने में सहायता करेंगे। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रूपा है आपके साथ, अरुणिमा लेकर।

एक अंधेरा लाख सितारे। जी हाँ, अंधेरा महज कुछ पल का, कुछ क्षण का होता है। जब उस गम को हटाकर लाखों सितारे यानी हमारी जिंदगी को रोशन करने के लिए अगर हम देखें तो एक छोटी सी खुशी भी बहुत महत्व रखती है। एक छोटी सी बात जो हमारे दिल को एक नया जोश दे, एक नई हिम्मत दे। हम सभी के पास एक सुपर पावर है, एक ऐसी शक्ति जिसका इस्तेमाल करना हम सब भूल जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सकारात्मक सोच की, विचारों की। बातें होंगी और भी बहुत सारी, पर इस गीत के बाद।

घबराना कैसा, जी हाँ दिल को थोड़ा करना कैसा। गर्दिश में चाहे कितने भी तारे हों, लेकिन हमें हमेशा हिम्मत से ही काम लेना होगा। किसी ने खूब कहा है, जैसा हमारा विचार होता है वैसा ही हमारा संसार होता है। हमारे दिमाग में रोज हजारों विचार आते हैं, लेकिन विजेता जो बनता है ना, वो सिर्फ सकारात्मक सोच और विचारों को अपने दिल में घर करने के लिए रुकने की इजाजत देता है और गम की सोच को हमेशा परे करता है। जब मरना ही है सभी ने, तो जीने को जो खुशी है, जीने की जो उम्मीद है, आशा है, हम उसको क्यों धूमिल होने लगे। अगर हम उसे ही धूमिल करने लगेंगे तो जीने की आशा हमारे दिल में क्या रहेगी। तो जनाब, हमेशा जोश खरोश के साथ आगे बढ़ते रहिए, हिम्मत से काम लीजिए। माना कि रास्ते पर चलते हुए कुछ कठिनाइयां आ ही जाती हैं, यही तो जीवन है। अगर जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो कैसा जीवन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा के सफर पर आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के

0: सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा में आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। बातें कर रहे हैं हम सकारात्मक सोच की और विचारों की। जी हाँ, सकारात्मक सोच ऐसी सोच जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और इसी सोच को हमें हमेशा से दिल में बनाए रखना है। कभी भी अपने दिल को इतना कमजोर ना बनाएं कि हर दुख की घड़ी में हम घबरा जाएं। सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो आपके अपनों को सही राह दिखाने में कामयाब रहता है और उनका हौसला बढ़ाने में आगे ही आगे चलने का सबब देता है।

भाई हम तो इतना ही कहेंगे, हर दिन अगर चुनौती लेकर आता है उसके साथ साथ अपने साथ सकारात्मकता भी लेकर आता है। बस हमें उस लम्हे को थामना है, देखना है कि उस मुश्किल में, उस परेशानी में ही तो उसका हल छुपा है। बस हमें थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। इसी कोशिश का नाम है जिंदगी। जी हाँ, ऐसी जिंदगी जिसे हम चाहें तो उसे विभिन्न रंगों से भर सकते हैं, और अगर ना चाहें, गोया कि यूं माना जा सकता है कि जो कुछ भी है वो ऊपर वाले के हाथ में तो है ही, पर हमारे हाथ में भी थोड़ा कुछ तो है। जीते रहिए इसी उम्मीद के साथ। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और किसी ने खूब कहा है, वो जीवन ही क्या जीवन जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हो। अगर जीना है तो सबके लिए जीकर देखो, फिर आपको इस जीने का अंदाज ही बदला हुआ लगेगा।

अरुणिमा सुन रहे हैं आप आपके अपने चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज की अरुणिमा के साथ मैं हूं रूपा धवन, आप ही की अपनी दोस्त। तो जनाब, जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं सकारात्मक सोच की और विचारों की, तो यकीन मानिए जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे आसपास की परिस्थितियां भी अच्छी होने लगती हैं। वैसे मुश्किलों का जिंदगी में आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन उन मुश्किलों को पार करके मुस्कुरा लेना और मुस्कुराकर जीना ही, खासकर तब जब आपके हर पल में आपके अपने साथ देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि खुशी के लम्हों को थामने के लिए हमें थोड़ी सी देरी हो जाती है। जी हाँ, जब तक खुशियां हमारे पास पहुंचती हैं हम कहते हैं, ओह कितने समय बाद हमारे जीवन में ये खुशी आई। तो कुछ ऐसी ही देरी का इजहार करता है ये गीत, जिसे आपको सुना रहे हैं दुनियादारी फिल्म से अमित कुमार और आशा जी की आवाज़ में।

0: नहीं आएगी तो क्या करोगे?
1: उसकी चौखट पे जाके मरूंगा।
0: ना ना ना ना, तुम मरोगे तो मेरा क्या होगा?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट इनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और ज्यादा प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की अध्यक्षता में 21 और 22 मई को नई दिल्ली में 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह CTWG की पूर्ण बैठक और उपसमूहों की बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें CTWG की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने कार्यक्रम का मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों के महत्व पर भी बल दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजीरिया के नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार ये अभियान खोनी पलाव क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में अवैध रूप से रह रहे हैं। चीन के शांसक्सकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। यह विस्फोट क्युआन क्वांटी के शियुल्यू शेनू में कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 लोगों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बांग्लादेश में कल खसरा और खसरा जैसे लक्षणों से 13 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पुष्टि और संदिग्ध मौतों की कुल संख्या बढ़कर 512 हो गई है। बांग्लादेश के एक प्रमुख समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक खसरे से पुष्टि मौतों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है, जबकि संदिग्ध मौतों की संख्या 426 तक पहुंच गई है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में जीत हासिल की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वृक्षों की डालियां लहराकर झूम रही हैं, वृक्षों की डालियां लहराकर झूम रही हैं, पक्षियों की चहचहाहट कानों में रस घोल रही है। क्षितिज पर सूरज की लालिमा ने बसेरा डाला है, क्षितिज पर सूरज की लालिमा ने बसेरा डाला है। कायनात का प्यारा तोहफा ये भोर सुहानी लाया है। स्वागत कर रही है ये ताजगी भरी सुबह आज की नव किरणों की रोशनी में, सारी दुनिया को एक नई ताजगी से, खुशियों से सराबोर कर रही है। हम भी आपके साथ वक्त की रफ्तार के साथ आपका साथ निभा रहे हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड के माध्यम से भोर सुहानी लेकर हाजिर हूँ मैं आप ही की सेवा में, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। सुप्रभात, प्यार भरा मेरा नमस्कार। ये सवेरे का सूरज हम सबके लिए है।

नई रोशनी से प्रकाशित करता सवेरे का सूरज दुनिया का हर कोना अपनी लालिमा से भिगोए हुए है। धीरे धीरे ये लालिमा आसमान से लेकर दुनिया के हर कोने तक छा जाएगी और इस सवेरे के सूरज का आज के नए दिन का स्वागत करने में कोई भी कोर कसर छोड़ नहीं रहा। जी हाँ, वृक्षों की डालियां लहराकर झूम रही हैं, पक्षियों की चहचहाहट भी हो रही है। आज की सुबह की स्वागत की तैयारियों में सब लगे हुए हैं। ये ताजगी भरी सुबह आज और कौन सी खुशियां लेकर आएगी हमारे लिए, ये अभी तक एक रहस्य है। जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बीतेगा, हम अपनी अपनी खुशियों की ओर रवाना हो जाएंगे। राह में नई चुनौतियों को पार करके एक खुशियों भरा रास्ता चुनेंगे। पत्तों पर बिखरी ओस की बूंदें, ठंडी हवा, ये सब इस बात का सबूत है कि कायनात ने हमें आज का दिन एक और तोहफे के रूप में दिया है। और कौन कौन इसकी स्वागत की तैयारी कर रहा है या कैसे स्वागत कर रहा है, सुनते हैं इस गीत के माध्यम से।